हर जेठ जोड़न दा लोड़िया जिस अगे सब निवान हर सज्जन दावन लग्या किसे ना देई बन माणक मोती नाम प्रभ उन लगे नाही सन रंग सबे नारायण जेते मन पावन जो हर लोड़े सो करे सोई जी करन जो प्रभ कीते अपने से ही कहिए तन अपन लिया जे मिले विछड़ क्यों रोवन साधु संग प्राप्ते नानक रंग माणन हर जेठ रंगीला तिस धनी जिसकै भाग मथन आषाढ़ तपंदा तिस लगे हर ना हो ना जिन्ना पास जग जीवन पुरख त्याग कै मानस संदियास दोया पाए विगुची है गल पई सो जम की फास जिहा बीजै सोलुणै मथै जो लिखियास रैण विहानी पछताणी उठ चली गई निरास जिन कौ साधु भेटिया सो दरगह होए खलास कर किरपा प्रभ अपनी तेरे दर्शन होए प्यास प्रभ तुद बिन दूजा को नहीं नानक की अरदास आषाढ़ सुहंदा तिस लगै जिस मन हर चरण निवास सावन सरसी कामणी चरण कमल स्यों प्यार मन तन रत्ता सच रंग इको नाम आधार बिखिया रंग कूड़ा व्या दिसन सबे शार हर अमृत बूंद सुहावनी मिल साधु पीवन हार वन तिण प्रभ संग मौलिया समर्थ पुरखिया पार हर मिलने नो मन लोचदा करम मिलावन हार जिनी सखिए प्रभ पाया हो तिनकै सबर हार नानक हर जी माया कर शब्द सवारन हार सावन तिना सुहागनी।

लख सिंगार बनाया कार्ज नाही केत, जित दिन देह बिन ससी तित वेला कहसन प्रेत, पकड़ चला इन दूत जम किसे ना देनी भेत, छड़ खड़ोते खिने माहे जिनस्यों लगा हेत, हथ मरोड़ै तन कपे स्याहो होवा सेत, जिहा बीजै सो लुणै करमा संदड़ा खेत, नानक प्रभ शरणागति चरण बोइथ प्रभ देत, से पादोए नरक ना पाईऐ गुर रखण वाला हेत, असन प्रेम उमाड़ा क्यों मिलिए हर जाए, मन तन प्यास दर्शन कणी कोई आन मिलावे माए, संत सहाई प्रेम के हौतन कै लागा पाए, विण प्रभ क्यों सुख पाई है दूजी नाही जाए, जिनी चाखिया प्रेम रस से तृप्त रहे या गाए, आप त्याग बिनती करे लेहो प्रभु लड़ लाए, जो हर कंत मिलाइया से विछड़ कत ना जाए, प्रवण दूजा को नहीं नानक हर शरण आए, असु सुखी वसंदियां

नानक मंगे दर्शदान कृपा करो हरे। माज महला पंजवां दिन रहन एक ओंकार सतगुर प्रसाद सेवी सतगुर अपना हर सिमरी दिन सब रहन आप त्याग सरनी पवां मुख बोली मिठड़े वैण जन्म जन्म का विछड़िया हर मेलो सज्जन सैन जो जी हरते विछड़े से सुख न वसन पैण हर पिर बिन चैन न पाईए खोज डिठे सब गैण आप कमाण विछड़ी दोस न काहू देण कर कृपा प्रभ राख लेहो होर नाही करन करेण हर तुद बिन खाकू रूलना कहिए किथे वैण नानक की बेनतिया हर सुरजन देखा नैण जी की बिरथा सो सुने हर समर्थ पुरख अपार मरण जीवन आराधना सबना काया धार ससरे पई है तिसकंत की वड्डा जिस परवार ऊंचा अगम्या गाद बोध किशंतना पारावार सेवा सा तिस पावसी संता की हुए शार दीना ना दयाल देव पत ते उदाहरण हार आज जुगादी रखदा सच नाम करतार कीमत कोई न जाने को नाही तोलन हार मंत्र अंतर वस रहे नानक नहीं सुमार दिन रहन जे प्रभ को सेव दे तिन कै सत बलिहार संत आराधन सद सदा सबना का बख्शेंद जियो पिंड जिन साजिया कर कृपा दिती निजिंद गुरसबदी आराधी है जपिए निर्मल मंत कीमत कहन ना जाइए परमेश्वर बेअंत जिस मन वसै नारायण सो कहिए भगवंत जी की लोचा पूरी है मिलै स्वामी कंत नानक जीवै जप हरी दोख सबे ही हंत दिन रहन जिस ना विसरै सो हरिया होवै जंत सर्व कला प्रभ पूर्णो मन ने मानी थाओ हरे ओट गही मन अंदरे जब जब जीवान आओ कर कृपा प्रभ अपनी जंतूड़ी संग समाओ जो तू राख्या त्यो रहा तेरा दिता पैना खाओ उद्म सोई कराए प्रभ मिल साधु गुण गाओ दूजी जाए न सुजई किथे कूकण जाओ अज्ञान बिनासन तम हरण ऊंचे अगम्या माओ मन विछड़िया हर मेली है नानक हो सुवाओ सर्व कल्याणा तित देनो हर परसी गुर के पाओ वार माज की तथा श्लोक महला पहला मालिक मुरीद तथा चंद्रहड़ा सुहिया की तुनी गावनी एक ओंकार सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद श्लोक महला पहला गुरदाता गुर हेवै कर गुरदीपक तेह लोए अमर पदार्थ नानका मन माने सुख होए महला पहला।

पंजवें खान पीण की तात, छिवें कामना पुछे जात, सतवें संझ किया करवास, अठवें क्रोध हुआ तन्नास, नावें तौले उबेसा, दसवें ददा हुआ सोआ, गए से कीत पुकारिता, उड्या हंस दसायरा, आया गया मुयाना, पिछे पतल सद्यो का, नानक मनमुख अंध प्यार, बाजगुरु डुबा संसार, महला पहला। दस बाल तन बीस रवण तीसा।

तू आपे खेल करे सब करते कै दूजा अख बखानी है जिचर तेरी जोत तिचर ज्योति बिच तू बोलै वेण ज्योति कोई किश करो दिखा सियाणी है नानक गुरमुख नदरी आया हर इको सूट सुजानी है पौड़ी।

तै भुखा तिहाया, सह सायो संसार है मर जमै आया जाया। बिर सतगुर मोह न टुटई, सब थके कर्म कमाया। गुरमती नाम ते आई है सुख रजा जा तुद पाया। कुल उधारे अपना तन जने दी माया, सोभा सुरत सुहावनी जन हर सेती चित लाया। श्लोक महला दूजा। अखी बाजो वेखना मन कन्ना सुनना, पैरा बाजो चलना मन हथा करना। जीबै बाजो बोलना ओ जीवत मरना, नानक हुक्म पछाण कै तौ खसमै मिलना। महला दूजा। दिसै सुनिया जानिया सौ ना पाया जाए, रोहला टुंडा अंदला क्यों गल गै तहाए। पै के चरण कर भाव के लोइन सुरत करे, नानक है सियाणिए एवकंत मिलावा होए पौड़ी। सदा सदा तू एक है तो दूजा खिल रचाया, हम मैं गुरु ब्यो पाए कै लोभ अंतर जनता पाया। ज्यो पावे त्यो रख तू सब करे तेरा कराया, इकना बख्शै मेल लै गुरमति तुदै लाया। एक खड़े करै तेरी चाकरी, विणना मैं होर ना पाया। होर कार वेकार है एक सच्ची कर लाया, पुत कलत कुटुंब है एक अलिप्त रहे जो तुद पाया। ओहे अंदरो बारो निर्मले सच्चै नहि समाया। श्लोक महला पहला। सोइने कै पर्वत गुफा करी, कै पानी पै आल, कै विच धरती कै आकाशी उर द्रहां सिर पार। पुर कर काया कपड़ पहरा, तोवा सदाकार, बग्गा रत्ता पियला काला बेदा करी पुकार। होए कुचील रहा मलतारी, दुरमत मत विकार। ना हो ना मैं ना होवा, नानक शब्द विचार। महला पहला। वस्त्र पखाल पखाले काया, आपे संयम होवै। अंतर मैल लगी नहीं जाने, बारो मलमल तोवै। अंधा फूल पया जम जाले, वस्त्र पराई अपनी कर जाने। हम मैं विच दुख काले, नानक गुरमुख हम मैं टुटै। ता हर हर नाम ते आवै, नाम जपे नाम वारा दे, नामे सुख समावै पवड़ी। काया हंस संजोग, मेल मिलाया तिन्ही किया विजोग। जिन उपाया मूर्ख भोगे भोग, दुख सबाया सुख उठे रोग। पाप कमाया हर खो सोग, विजोगो पायख पाया। मूर्ख गणत गणाए झगड़ा पाया, सतगुर हथ नबेड़ झगड़ चुकाया। करता करे सोहोग, न चले चलाया।

क्या पैदा होए जाम नाही सच्चा सोए, क्या मेवा क्या क्यों गुड़ मिठा, क्या मैदा क्या मास, क्या कपड़ क्या से सुखाली की जय भोग बिलास, क्या लश्कर क्या नेवखवासी आवे महली वास, नानक सच्चे नाम विण सबे टोल विनाश पवड़ी, जाति रह क्या हाथ सच परखी है, मवरा होवे हाथ मरिय चखी है, सच्चे की सरकार जुग जुग जानी है, हुक्म ने सरदार दर दीवाणी है, फुरमानी है कार खसम पठाया, तबल बाज विचार शब्द सुनाया, एक होए असवार एक ना साखती, एक नी बदे पार एक ना ताकती, श्लोक महला पहला, जा पक्का ता कटिया रही सो पलरवाड़, सन की सारा चिथिया कर लया तन झाड़, दोए पुड़ चक्की जोड़ के पीसने आए बैठ, जो दर रहे सो बरे, नानक अजब डेठ महला पहला, वेख जे मिठा कटिया कट कुट बदा पाए, खुंडा अंदर रख के दिन सो मल सजाए, रस कस टटर पाइए तपै तैवल लाए, पीसो फूक समालिए दिचै विजा लाए, नानक मिठै पतरिए वेखो लोका आए, पवड़ी एक ना मरना चेत आस घनेरिया, मर मर जमै नित किसै ना केरिया, आपन रै मन चेत कहन चंगेरिया, जबरा जै नित नित मन मुख हेरिया, मन मुख लून हराम क्या ना जानिया, बदे करन सलाम खसम ना पाणिया, सच मिलै मुख नाम साहिब पावसी, करसन तख्त सलाम लिखिया पावसी।

कुती तात बोला जे समझाइए पढ़िया समर्थ पाठ अंधा चानन रखिए दीवे बले पचास चौने सोय ना पाइए चुन चुन खावे कास लोहा मारन पाइए टह ना होए कपास नानक मूर्ख एह गुण बोले सदा विनाश महला पहला कहा कंचन तुटे सार अग्नि गंड पाए लोहार गोरी सेती तुटे पतार पुत्ती गंड पवे संसार राजा मंगे दिते गंड पाए भुखिया गंड पवे जा खाए काला गंड नदियां मीह चोल गंड प्रीति मिठे बोल बेदा गंड बोले सच कोए मोया गंड नेकी सत होए एत गंड वरते संसार मूर्ख गंड पवे मोह मार नानक आखे हो बिचार सिफती गंड पवे दरबार पौड़ी आपे कुदरत साज कै आपे करे बिचार एक खोटे एक खरे आपे परखणहार खरे खजाने पाईए खोटे सटिए बार वार खोटे सच्ची दरगह सुटिए किस आग्या करे पुकार सतगुर पिछे भज पवे एहा करनी सार सतगुर खोट्यो खरे करे शब्द सवारन हार सच्ची दरगह मनियान गुर कै प्रेम प्यार गणत तिना दी को क्या करे जो आप बख्शे करतार सलोक महला पहला हम जेर जिमी दुनिया पीरा मसाए कर आया मेर वद बादशाह अफजू खुदाए एक तू ही महला पहला ना देव दानवा नरा ना सिद्ध साध का तरा अस्त एक जिगर कुई एक तू ही महला पहला ना दादे देहांद आदमी ना सबत जेर जिमी अस्त एक जिगर कोई एक तू ही महला पहला ना सूर सस मंडलो ना सपत दीप नह जलो अन पौन थिर ना कोई एक तू ही महला पहला ना रिजक दस्त आकसे हमारा एक आस वसे अस्त एक जिगर कोई एक तू ही महला पहला परंदे ना ग्रह जर दरख्त आव्यास कर देहंद सुई एक तुई महला पहला नानक ललार लिखिया सोए मेटना सके कोए कला तरह हरै सु

एक तुई पौड़ी सच्चा तेरा हुक्म गुरमुख जानिया गुरमती आप गवाए सच पछाणिया। सच तेरा दरबार शब्द निसाणिया सच्चा शब्द विचार सच समाणिया। मनमुख सदा कूड़ियार परम भुलाणिया विष्टा अंदर वास साधना जानिया। मिण नावें दुख पाए आवन जानिया नानक पारख आप जिन खोटा खरा पछाणिया। सलोक महला पहला सिंह बाजा चरगा कुहियां इन्हां

दुए भौकिया खादा हुए सुहा पी खाने स्यों दोस्ती चौथे आई ऊंग अखी मीट पवार गया पी उठ रचियोन वाद सैवरिया की पिड़ बदी सबे वेला वक्त सब जे अठी पौ होए नानक साहिब मन वसै सच्चा नावन होए महला दूजा से पूरे साहा जिनी पूरा पाया अठी वे परवाह रहन एक तैरंग दर्शन रूपया था विरले पाई है कर्म पूरा पूरा गुरु पूरा जाका बोल नानक पूरा जे करे कटे नाही तोल पौड़ी जा तू ता क्या होर मैं सच सुनाई है मुठी तंदे चोर महल ना पाई है इना चित कठोर सेव गवाई है जित घट सच ना पाए सो भन कढ़ाई है क्यों कर पूरे वट तोल तुलाई है कोई ना आखे घट हों मैं जाई है लियन खरे परख दर भी नाई है सौदा एक तहट पूरे गुर पाई है श्लोक महला दूजा अठी पहरी अठ खंड नावा खंड शरीर तिस विच नौ निध नाम एक पाले गुणी गहीर कर्मवंती साला हया नानक कर गुरपीर चौथे पैर सबाह कै सुरत्या उपजै चाओ तिन्ना दरियावां स्यों दोस्ती मन मुख सच्चा नाओ ओथे अमृत वंडी है करमी होए पसाओ कंचन काया कसी है वन्नी चढ़ै चढ़ाओ जे होवै नदर सराफ की बहुना पाई ताओ सत्ती पहरी सत भलिया सत्ती पहरी सत भला बहिया पढ़िया पास ओथे पापुन बिचारी है कूड़े कट्टे रास ओथे खोटे सकती है खरे कीचे सा बास बोलन फादल नानका दुख सुख खसमै पास महला दूजा पौन गुरु पानी पिता माता तरत महत दिन सरात दोए दाई दाया खेले सगल जगत चंगियाईया बुरियाईया वाचे तरम हदूर करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर जिनी नाम ते आया गए मसकत काल नानक ते मुख उजले होर केती छुट्टी नाल पौड़ी सच्चा पोजन पाओ सतगुर दस्या सच्चे ही पति आए सच विगस्या सच्चे कोट गिराए निज कर वसया सतगुर तुठे नाओ प्रेम रहस्या सच्चे दै दी बाण कूण ना जाइए झूठो झूठ वखाण सो महल खुवाई है सच्चा शब्द निशान ठाक ना पाइए ससुण बुझ वखाण महल बुलाइए श्लोक महला पहला पहरा अग्न हवै कर बादा भोजन सार कराई सगले दुख पानी कर पीवा धरती हाग चलाई तारता राजी अंबर तोली पिछे टंग चढ़ाई एवड वदा मावा नाही सबसा नथ चलाई एता तान होवै मन अंदर करी पे आख कराई जेवड़ साहेब तेवड़ दाती दे दे करे रजाई नानक नदर करे जिस उपर सच नाम वड्याई महला दूजा आखने आख न रजिया सुन न रजे कन अखी देख न रजिया गुण गाह के कवन भुखिया भुख न उतरे गली भुख ना जाए नानक भुखा ता रजे जा गुण कै गुणी समाए पौड़ी विण सच्चे सब कूड़ कूड़ कमाई है विण सच्चे कूड़ यार बन चलाई है विण सच्चे तन शार शार लाई है विण सच्चे सब भुख जे पै जै खाई है विण सच्चे दरबार कूड़ ना पाई है कूड़े लालच लग मैल खुवाई है सब जग ठगे ओ ठग आई है जाई है तन मैं तृष्णा अग शब्द बुझाई है श्लोक महला पहला नानक गुर संतोख रुख धर्म फुल फल ज्ञान रस रसिया हरिया सदा पक्के कर्म ध्यान पत के साध खांदा लह दाना कै सिरदान महला पहला
सोने का बिरख पत परवाला, फुल जवेहर लाल, तित फल रतन लगे मुख पाखत, हृदय हृदय निहाल। नानक कर्म होवै मुख मस्तक, लिखिया होवै लेख, आठ सठ तीर्थ गुर की चरणी, पूजै सदा वसेख। हंस हेत लोभ कोप, चारे नदियां अग, पवै दजै नानका, तरियै कर्मी लग पौड़ी। जीवन दया मर मार न पछो ताई है, झूठा है संसार किन समझाई है, सच ना तरे प्यार तंदे ताई है। काल बुरा खै काल, सिर दुनियाई है, हुक्मी सरजनदार मारे दाई है, आपे दे प्यार मन वसाई है। मोहत ना चसा विलम, परिये पाई है, गुरप्रसादी भोज सच समाई है। श्लोक महला पहला। तुम्मी तुम्मा विस, आकत तूरा निम फल, मन मुख वसै तिस, जिस तू चेतना आवही। नानक कहियै किसो, हंडन करमा बाहरे महला पहला। मत पंखेरू किरत साथ, कब उत्तम कब नीच, कब चंदन कब अक डाल, कब उच्ची परीत, नानक हुक्म चलाई है, साहिब लगी रीत पौड़ी। केते कह वखाण कह कह जावना, वेद कह वखियाण अंत ना पावना, पढ़िया नाही भेद बुझे पावना। खड़ दर्शन कह भेख, किसे सच समावना, सच्चा पुरख्या लख शब्द सुहावना। मन्ने नाम बिसंख, दरगे पावना, खालक कहो आदेश ढाडी गावना। नानक जुग जुग एक मन वसावना, श्लोक महला दूजा। मंत्री होए अठू हिया, नांगी लगे जाए, अपन हथी अपने दे कूचा आपे लाए। हुक्म पया तुर खसम का, अति हूं तका खाए, गुरमुख स्यो मनमुख अड़े, डुबे हक न्याए। दुहा सिरिया आपे खसम, वेखे कर व्यो पाए, नानक ए वै जानिए, सब कित सहर जाए। महला दूजा। नानक परखे आप कहो, ता पारख जान, रोग दारू दोवै बुझै, ता वैद सुजान, वाट ना करी मामला, जाने मेहमान। मूल जान गल्ला करे, हान लाए हान, लब ना चली सच रह, सो विष्ट परवान, सर संदे आगास कहो, क्यों पहुंचे बाण, अगे यो आगम है, वाहे दड़ जान पौड़ी। नारी पुरख प्यार प्रेम सिंगारिया, करण भगत दिन रात ना रहनी वारिया, महिला मंज निवास शब्द सवारिया, सच कहन अरदास से वेचारिया, सोहन खसमै पास हुक्म सिधारिया, सखी कहन अरदास मनो प्यारिया। बिन नावै त्रिगवास, फिट सो जीविया, शब्द सवारी आस अमृत पीविया। श्लोक महला पहला। मारू मिह ना त्रिपत्या, अगी लह ना भुख, राजा राज ना त्रिपत्या, सायर परे किसको, नानक सचे नाम की। केती पुछा पुछ, महला दूजा। नेह फलंग तस जनमस, जावद ब्रह्म ना बिंदते, सागरंग संसारस गुरप्रसादी तरह के, कारण कारण समर्थ है, कहो नानक विचार, कारण करते वस है। जिन कल रखी तार पौड़ी, खसमै कै दरबार ढाडी वसया, सचा खसम कलाण कमल विगसया। खसमो पूरा पाए मनो रहस्या, दुश्मन कड्डे मार सज्जन सरसया, सच्चा सतगुर सेवनो सच्चा मार्ग दसया। सच्चा शब्द विचार काल विधंसया, ढाडी कथया काथो शब्द सवारया, नानक गुण गहरास हर जियो मिले प्यारया। श्लोक महला पहला। खतियो जम्मे खते कार,
नित खतियां विच पाहे धोते मूल ना उतरै जे सौ धोवन पाहे नानक बख्शे बख्शीऐ नाहे ता पाही पाहे महला पहला नानक बोलन चखना दुख छड मंगिया सुख सुख दुख दोए दर कपड़े पहरे जाए मनुख जिथे बोलन हारी है तिथे चंगी चुप पौड़ी चारे कुंडा देख अंदर पालिया सच्चे पुरख्या लख सिर जनिहालिया उजड़ पुले राह गुर वेखा लिया सतगुर सच्चे वाहो सच समालिया पाया रतन कराहो दीवा बालिया सच्चे शब्द सलाहे सुखिए सच वालिया ने डरिया डर लग गर्भ से गालिया नावो पुला जग फिर बेता लिया श्लोक महला तीजा पै विच जमै पै मरै पी पौ मन मै होए नानक पै विच जे मरै सहला आया सोए महला तीजा पैवन जीवै बहुत बहुत खुशियां खुशी कमाए नानक पैवन जे मरै मोहे काले उठ जाए पौड़ी सतगुर होए दयाल ता सरदा पूरी है सतगुर होए दयाल ना कबहू चूरी है सतगुर होए दयाल ता दुख ना जानी है सतगुर होए दयाल ता हर रंग माणी है सतगुर होए दयाल ता जम का डर केहा सतगुर होए दयाल ता सद ही सुख देहा सतगुर होए दयाल ता नव निद पाईऐ सतगुर होए दयाल ता सच समाईऐ श्लोक महला पहला सिर खोहाए पीऐ मलवाणी जूठा मंग मंग खाही फूल फदीहत मोह लैन पढ़ासा पानी देख सगाही भेडा वांगी सिर खोहाए न भरियन हथ सवाही माऊ पिऊ किरत गवाए नो टब्बर रोवन ताही ओना पिंड ना पतल किरिया ना दीवा मोए कथा उपाही अड़सठ तीर्थ देन ना ढोई ब्राह्मण अन्न ना खाही सदा कुचील रह दिन राती मथे टिके नाही चुंडी पाए बहन नित मरना दर्दी बाण ना जाही लकी कासे हथी फुमन अगो पिछी जाही ना ओए जोगी ना ओए जंगम ना ओए काजी मुल्ला दैव गोए फिरे विगुते फिटा वत्ता ए गला जिया मारजी वाले सोई अवर ना कोई रखे दानो तै स्नानो मंजे पस पई सिर खुथे पानी विचों रतने पन्ने मेर की आमा दानी अठ सठ तीर्थ देवी थापे पुरबी लगे बाणी नायन वाजा नाते पूजा नावनो सदा सुजानी मुया जीवदियां गत होवे जां सिर पाईए पानी नानक सिर खुथे सैतानी एना गल ना पानी वुठै होया होए बिलावल जिया जुगत समाणी वुठै अनक मादक पाहा सब सह पड़दा होवै वुठै कहो चरै नित सुरही सातन दही विलोवै तित के होम जग सद पूजा पै कार्ज सो है गुरु समुंद नदी सब सिखी नाते जित वडे आई नानक जे सिर खुथे नावन नाही ता सत चटे सिर शाई महला दूजा अग्गी पाला के करे सूरज के ही रात चांदा नेरा के करे पौन पानी क्या जात धरती चीजी के करे जिस विच सब किश होए नानक ता पत जानिए जा पत रखे सोए पौड़ी तुद सच्चे सुभान सदा कलाणिया तू सच्चा दीबान हो रिया मन जानिया सच जे मंगे दान से तुदे जे हया सच तेरा फुरमान सब दे सोहया
ਮੰਨਿਆ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਤੁਦੈ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਕਰਮ ਪਵੈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਾ ਚਲੈ ਚਲਾਇਆ। ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਦਾਤਾਰ ਨਿਤ ਦੇਵੈ ਚੜੈ ਸਵਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ ਦਾਨ ਜੋ ਤੁਦ ਪਾਇਆ। ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ। ਦੇਖਿਆ ਆਖ ਬੁਝਾਇਆ, ਸਿਫਤੀ ਸੱਚ ਸਮੇਓ, ਤਿਨ ਕਉ ਕਿਆ ਉਪਦੇਸੀਐ ਜਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਓ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਆਪ ਬੁਝਾਏ ਸੋਈ ਬੂਝੈ, ਜਿਸ ਆਪ ਸੁਝਾਏ ਤੇ ਸਭ ਕੇ ਸੂਝੈ, ਕਹਿ ਕਹਿ ਕਥਨਾ ਮਾਇਆ ਲੂਝੈ, ਹੁਕਮੀ ਸਗਲ ਕਰੇ ਆਕਾਰ, ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਸਰਬ ਵਿਚਾਰ। ਅੱਖਰ ਨਾਨਕ ਅਖਿਓ ਆਪ, ਲਹਿ ਪ੍ਰਾਤ ਹੋਵੈ ਜਿਸ ਦਾਤ ਪੌੜੀ। ਹਉ ਟਾਡੀ ਵੇਕਾਰ, ਕਾਰੈ ਲਾਇਆ ਰਾਧ ਹੈ ਕੈ ਵਾਰ, ਤੁਰੋਂ ਫੁਰਮਾਇਆ ਟਾਡੀ ਸੱਚੈ ਮਹਿਲ, ਖਸਮ ਬੁਲਾਇਆ ਸੱਚੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ, ਕੱਪੜਾ ਪਾਇਆ ਸੱਚਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਭੋਜਨ ਆਇਆ, ਗੁਰਮਤੀ ਖਾਦਾ ਰੱਜ ਤਿਨ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਢਾਡੀ ਕਰੇ ਪਸਾਉ ਸ਼ਬਦ ਵਜਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਸਾ ਲਾਹੇ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ਸੁਧ। ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਚੌਪਦੇ ਦੋ ਪਦੇ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ, ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ, ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸਹਿ ਭੰਗ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਭਉ ਮੁਚ ਭਾਰਾ ਵੱਡਾ ਤੋਲ, ਮਨ ਮਤ ਹੌਲੀ ਬੋਲੇ ਬੋਲ, ਸਿਰ ਤਰ ਚੱਲੀਐ ਸਹੀਐ ਭਾਰ, ਨਦਰੀ ਕਰਮੀ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ, ਭੈ ਬਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਲੰਘ ਸਪਾਰ, ਭੈ ਭਉ ਰਾਖਿਆ ਪਾਏ ਸਵਾਰ, ਰਹਾਉ ਭੈ ਤਨ ਅਗਨ ਪੱਖੈ ਭੈ ਨਾਲ, ਭੈ ਭਉ ਕੜੀਐ ਸ਼ਬਦ ਸਵਾਰ, ਭੈ ਬਿਨ ਕਾੜਤ ਕੱਚਨ ਕੱਚ, ਅੰਧਾ ਸੱਚਾ ਅੰਧੀ ਸੱਟ, ਬੁੱਧੀ ਬਾਜੀ ਉਪਜੈ ਚਾਓ, ਸਹਿ ਸਿਆਣਪ ਪਵੈ ਨਾ ਤਾਓ, ਨਾਨਕ ਮਨਮੁਖ ਬੋਲਣ ਵਾਓ, ਅੰਧਾ ਅੱਖਰ ਵਾਓ ਦਵਾਓ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਡਰ ਘਰ ਘਰ ਡਰ।

जय कारण तट तीर्थ जाही रतन पदार्थ कट ही माही पड़ पट पंडित बाद वखाण है भीतर होंदी वस्त न जाण है हो ना मुआ मेरी मुई बलाए ओह ना मुआ जो रया सुमाए कहो नानक गुर

नानक मेरी बात ना पुछे कोई रहाओ। ताजी तुरकी सोना रूपा कपड़ केरे पारा किसी नाल न चले नानक चढ़ चढ़ पे गवारा। कूजा मेवा मैं सब किस चाखिया एक अमृत नाम तुम्हारा दें दे नीम दिवालो सारी पस मंदिर की टेरी। संचे संचना देई किस ही अंध जाने सब मेरी सोइन लंका सोइन माड़ी संपै किसे न केरी। सुन मूर्ख मान्या जाना होग तिसै का पाना रहाओ। शाओ हमारा ठाकर पारा हम तिसके वन जारे जियो पिंड सब रात तिसै की मारे आपे जी वाले। गौड़ी चेती महला पहला अवर पंच हम एक जना क्यों राखो कर बार मना मारे लूटे नीत नीत किसे आगे करी पुकार जना। श्री राम नामा उचिर मना आगे जम दर बिखम कना रहाओ। उसार मडोली राखे द्वारा पीतर बैठी साधना अमृत केल करे नित कामनो अवर लुटेन सो पंच जना। टाहे मडोली लूटिया देहरा सा तन पकड़ी एक जना जम डंडा गल संगल पड़िया भाग गए से पंच जना। कामड़ लोड़े सोइना रूपा मित्र लोड़ेन सोखा दाता नानक पाप करे तन कारण जासी जमपुर बादाता। गौड़ी चेती महला पहला मुंद्रा ते कट पीतर मुंद्रा काया की जय खिंचता था पंच चेले वस की जय रावल एहो मन की जय डंडा था। जोग जुगते पावस्ता एक शब्द दूजा होर नास्त कंद मूल मन लावस्ता रहाओ। मूंड मुडाया जे गुर पाईए हम गुर कीनी गंगा ता त्रिपवन तारण हर स्वामी एक ना चेत संदाता। कर पटंब गली मन लावस संसा मूल ना जावस्ता एक चरणी जे चित लावै लब लोभ की तावस्ता। जपस निरंजन रचस मना काहे बोले जोगी कपट कना रहाओ। काया कमली हंस याना मेरी मेरी करत बिहानी ता प्रणवत नानक नांगी दाजै फिर पाछा पिछतानी ता। गौड़ी चेती महला पहला औखद मंत्र मूल मन एक जे कर दृढ़ चित की जय रे जन्म जन्म के पाप कर्म के काटन हारा ली जय रे। मन एको साहिब पाई रे तेरे तीन गुना संसार समावे लखना लखना जाई रे रहाओ। सकर खंड माया तन मीठी हम तो पंडो चाई रे रात अनेरी सूज सनाही लज टूक समूसा पाई रे। मनमुख करे तेता दुख लागे गुरमुख मिले वडाई रे जोतन किया सोई होवा कीर्तना मेटिया जाई रे। सुबर परे ना होवे ऊने जोरा तेरंग लाई रे तिन की पंख होवे जे नानक तौ मूड़ा किश पाई रे। गौड़ी चेती महला पहला कत की माई बाप कत केरा कि दू थाम हम आए अगन बिंब जल पीतर निप जाए काहे काम उपाए। मेरे साहेबा कौन जाने गुण तेरे कहे न जानी अवगुण मेरे रहाओ। केते रुख बिरख हम चीने केते पशु उपाए केते नागकुली में आए केते पंख उड़ाए। हट पटन बिज मंदर पन्ने कर चोरी करे आवे अगो देखे पिछो देखे तू ते कहां छपावे। तट तीर्थाम नवखंड देखे हट पटन बाजारा लैके तकड़ी तोलन लागा कठी मैं मनजारा। जेता समुंद

बिन बूझे तन मन फीका होए, बिन नामे दुखिया चलिया रोए। रसना हरस चाखिया सह सुभाए, गुर कृपा ते सच समाए। साचे राती गुर

आप भुला के प्रभ आप भुलाया, एहो जियो वडाणी चाकरी लाया, महा दुख हटे बिरथा जन्म गवाया, किरपा कर सतगुरु मिलाए, को नाम चेते विचों भरम चुकाए, नानक नाम जपे नाव नौ निद पाए, गौड़ी गुआरे री महला तीजा, जिन्ना गुरमुख ते आया तिन पूछो जाए, गुर सेवा ते मन पति आए, से धनवंत हर नाम कमाए, पूरे गुर ते सोजी पाए, हर हर नाम जपो मेरे पाई, गुरमुख सेवा हर काल थाए पाई रहाओ, आप पछाणे मन निर्मल होए, जीवन मुक्त हर पावे सोए, हर गुण गावे मत उत्तम होए, सहजे सही समावे सोए, दूजे पाए ना सेव्या जाए, हमें माया महा बिख खाए, पुत कुटुंब गृह मोया माए, मन मुखियंदा आवै जाए, हर हर नाम देवे जन सोए, अंदन भगत गुर सबदी होए, गुरमत विरला बूझै कोए, नानक नाम समावै सोए, गौड़ी गुआरे री महला तीजा, गुर सेवा जुग चारे होई, पूरा जनकार कमावे कोई, अखुट नाम तन हर तोट ना होई, ऐथे सदा सुख दर सोभा होई, ए मन मेरे परम ना कीजै, गुरमुख सेवा अमृत रस पीजै रहाओ, सतगुर सेवै से महापुरख संसारे, आप उदरे कुल सगल निस्तारे, हर का नाम रखे और तारे, नाम रते भौजन उतरे पारे, सतगुर सेवै सदा मन दासा, हमै मार कमल प्रगासा, अनहद वाजै निकर वासा, नाम रते कर माहे उदासा, सतगुर सेवै तिन की सच्ची बाणी, जुग जुग भक्ति आख वखाणी, आन दिन जपै हर सारंग पाणी, नानक नाम रते नेह केवल निर्बाणी, गौड़ी गुआरे री महला तीजा, सतगुर मिलै वडभाग संजोग, हृदय नाम नित हर रस भोग, गुरमुख प्राणी नाम हर त्याए, जन्म जीत लाहा नाम पाए रहाओ, ज्ञान ध्यान गुर शब्द है मीठा, गुर कृपा ते किने विरलै चख डीठा, कर्म कांड बहु करे आचार, बिन नामै त्रिग त्रिग हंकार, बंदर बांधे हो माया फास, जन नानक छूटै गुर प्रगास, महला तीजा गौड़ी बैरागण, जैसी धरती उपर मेघला बरसत है, क्या धरती मध्य पानी नाही, जैसे धरती मध्य पानी परगासिया, बिन पग्गा वरसत फिराही, बाबा तू ऐसे परम चुकाही, जो किश करत है सोई कोई है रे, तैसे जाय समाही रहाओ, स्त्री पुरख होए कै क्या वे कर्म कमाही, नाना रूप सदा है तेरे, तुझी मैं समाही, इतने जन्म भूल परे से, जा पाया ता भूले नाही, जा का कार्ज सोई पर जाने, जे गुर कै शब्द समाही, तेरा शब्द तू है आपे परम कहाही, नानक तत् तत् सो मिलिया, पुनरप जन्म ना आही, गौड़ी बैरागण महला तीजा,

पेवकड़ा गुण संभल साहुरै वास पाया गुरमुख सहज समाणिया हर हर मन पाया ससरै पेये पिर वसै कहो किद बिद पाइय आप निरंजन अलख है आपे में लाइय रहाओ आपे ही प्रभ देहे मातु हर नाम ते आई है वडभागी सतगुर मिले मुखी अमृत पाई है हो मैं दुबदा बिन सजाए सहजे सुख समाइए सब आपे आवरदा आपे नाए लाइए मनमुख गर्भ ना पायो अज्ञान आने सतगुर सेवा ना करे फिर पछताने गर्भ जोनी वास पाए दे गर्भे गर जाने मेरे करते एवै भामदा मनमुख प्रमाणे मेरा हर प्रभ लेख लिखाया तुरमस्तक पूरा हर हर नाम ते आया भेटिया गुरसूरा मेरा पिता माता हर नाम है हर बंधु बीरा हर हर बख्श मिलाए प्रभ जन नानक कीरा गौड़ी बैरागण महला तीजा सतगुर ते ज्ञान पाया हर तत् बिचारा मत मलीन प्रगट भई जपना मुरारा सेव सकत मिटाइया चूका दियारा तुरमस्तक जिन कौ लिखिया तिन हर नाम प्यारा हर कित बिद पाइय संत जना जिस देख हो जीवा हर बिन चसा ना जीवती गुर मिल्यो हर रस पीवा रहाओ हाँ हर गुण गावा नित हर सुनी हर हर गत कीनी हर रस गुर ते पाया मेरा मन तन लीनी तन तन गुर सतपुरख है जिन भगत हर दीनी जिस गुर ते हर पाया सो गुर हम कीनी गुण दाता हर राय है

बाद पंडित शास्त्र सिमरत पढ़िया, जोगी गोरख गोरख करिया, मैं मूर्ख हर हर जब पढ़िया, ना जाना क्या गत राम हमारी, हर भजमन मेरे तार पौजल तू तारी रहाओ। सन्यासी विपूत लाए देह सवारी, पर तेरे त्याग करी ब्रह्मचारी, मैं मूर्ख हरियास तुम्हारी, खत्री कर्म करे सूरतन पावै, सूद वैस पर किरत कमावै, मैं मूर्ख हर नाम छड़ावै, सब तेरी सृष्ट तू आप रहा समाई, गुरमुख नानक देवड़े आई, मैं अंदले हर टिक टिकाई, गौड़ी गुआरे री महला चौथा, निर्गुण कथा कथा है हर की, भज मिल साधु संगत जन की, तार पौजल अकथ कथा सुन हर की, गोविंद सतसंगत में लाए, हर रस रसना राम गुण गाए रहाओ। जो जन त्यावै हर हर नामा, तिन दास संदास करो हमरा मां, जन की सेवा उत्तम कामा, जो हर की हर कथा सुनावै, सो जन हमरे मन चित पावै, जन पग रेण वडभागी पावै, संत जना स्यो प्रीत बने आई, जिनको लिखत लिखिया तुर पाई, ते जन नानक नाम समाई, गौड़ी गुआरे री महला चौथा, माता प्रीत करे पुत खाए, मीने प्रीत भई जल नाए, सतगुर प्रीत गुरसिख मुख पाए, ते हर जन हर मिलो हम प्यारे, जिन मिलिया दुख जाए हमारे रहाओ। जो मिल बछरे गौ प्रीत लगावै, कामन प्रीत जा पिर करे आवै, हर जन प्रीत जा हर जस गावै, सारंग प्रीत बसै जल तारा, नारपत प्रीत माया देख पसारा, हर जन प्रीत

जब गुर मिलिया तब मन वस आया, तावत पंच रहे हर त्याया, अंदर नगरी हर गुण गाया। सतगुर पग तूर जिन्ना मुख लाई, तन कूड ते आगे हर लिवलाई, ते हर दरगह मुखी उजल पाई। गुर सेवा आप हर पावै, कृष्ण बल भद्र गुर पग लग त्यावै, नानक गुरमुख हर आप तरावै।

सारी। ऐसा मेरा राम रहया परपूर, निकट वसै नाही हर दूर रहाओ। हरे आपे शब्द सुरत धुन आपे, हरे आपे वेखै विकसै आपे, हरे आप जपाए आपे हर जापे। हरे आपे सारंग अमृत तारा, हर अमृत आपी आवनहारा, हरे आप करे आपे निस्तारा। हरे आपे बेड़ी तुलहा तारा, हरे आपे गुरमति निस्तारा, हरे आपे नानक पावे पारा, गौड़ी बैरागण महला चौथा। साओ हमारा तू तनी, जैसी तू रास दे तैसी हमले, हर नाम जय रंग स्यों जे आप दयाल होए दे। हमन जारे राम के हर वणज करावे, दे रास रे रहाओ। लहा हर भगतन खटिया, हर सच्चे सा मन पाया, हर जप हर वखर लद्या, जम जा गाती नेड़ ना आया। होर वणज करै वापारिये, अनंत तरंगी दुख माया, ओए जिहै वणज हर लाया, फल तेहा तिन पाया।

हर हर नाम जब जंतार्यो अग्न सागर गुर पर उतार्यो रहाओ। कर कीर्तन मन शीतल भये जन्म जन्म के किलवख गए। सर्व निदान पेखे मन माहे अब टूंडन काहे कौ जाए। प्रभ अपने जपय दयाल पूर्ण होई सेव काल। बंधन काट किए अपने दास सिमर सिमर सिमर गुणतास। एको मन एको सब ठाए पूर्ण पूरे ओ सब जाए। गुर पूरे सब परम चुकाया हर सिमर तो नानक सुख पाया। गौड़ी गुआरे री महला पंजवा। अगले मोए से पाछे परे जो उबरे से बंद लक खरे। जे तंदे मैं ओए लपटाए उनते दुगड़ दिड़ी उनमाए। ओह बेला का चीत न आवे बिनस जाए ताहू लपटावे रहाओ। आशा बंदी मूर्ख देहे काम क्रोध लपटे वसनेहे। सिर ऊपर ठंडो धर्म राए मीठी कर कर बिख्या खाए। हों बंदा हों साधो बैर हमरी भूम कौन काले पैर। हों पंडित हों चतर सियाणा करने हर न बुझै बिगाना। अपनी गत में ते आपे जाने क्या को कह क्या आख बखान। जित जित लावे ते तित लगना अपना भला सब काहू मंगना। सब किश तेरा तू करने हार अंत नाही किश पारावार। दास अपने कौ दी जैदान कबू ना विसरे नानक नाम। गौड़ी गुआरे री महला पंजवा। आनक जतन नहीं होत छुटारा बहु सियाण पे अगल पारा। हर की सेवा निर्मल हेत प्रभ की दरगह सोभा सेत। मन मेरे गहो हर नाम का उला तुझे ना लागे ताता झोला रहाओ। जो बोहित पैसा गरमाहे अंधकार दीपक दीपाहे। अग्न सीत का लास दुख नाम जपत मन हो सुख। उतर जाए तेरे मन की प्यास पूर्ण होवे सगली आस। डोले नाही तुमरा चीत अमृत नाम जप गुरमुख मीत। नाम औखद सोई जन पावे कर कृपा जस आप देवावे। हर हर नाम जाके हृदय वसै दुख दर्द तेह नानक नसै। गौड़ी गुआरे री महला पंजवा। बहुत दर्ब कर माना या गाना अनक रूप देखने पतियाना। पुत्र कलत्र उर ज्यो जान मेरी ओ बिनसे ओ पसमै टेहरी। बिन हर भजन देखो बिल्लाते त्रिगतन त्रिगतन माया संग्राते रहाओ। ज्यो बिगारी कैसर दी जय दाम ओए खसमै कै ग्रह उन दुख सहाम। ज्यो सुपने होए बैस्त राजा नेत्र पसारे तन निरार्थ काजा। ज्यो राखा खेत उपर पराए खेत खसम का राखा उठ जाए। उस खेत कारण राखा कड़े तिसके पल कछु ना पड़े। जिसका राज तिसे का सुपना जिन माया दीनी तिन लाई तृष्णा। आप बिनाहे

साध संकै नाही नेर, लख चौरासी ब्रह्मता फेर, एकै जल फहाए पंखी, रस रस को करै बोरंगी। कहो नानक जिस पय कृपाल, गुरपुरै ताके काटे जाल, गौड़ी गुआरे री महला पंजवा। तौ कृपा ते मार्ग पाई है, प्रभ कृपा ते नाम ते आई है, प्रभ कृपा ते बंधन छुट है, तौ कृपा ते हम मैं तुट है। तुम लावाओ तौ लागै सेव, हम ते कछु न होवै देव रहाओ। तुद भावै ता गावा बाणी, तुद भावै ता सच वखाणी, तुद भावै ता सतगुर मया, सर्व सुखां प्रभ तेरी दया। जो तुद भावै सो निर्मल कर्मा, जो तुद भावै सो सच धर्मा, सर्व निधान।

संचारे खोजत खोजत नहीं कर पाया अमोल रतन साच दिखलाया कर कृपा जा मिले साहे कहो नानक गुर कै वे साहे गौड़ी महला पंजवा ग्वारेरी रैन दिन सो रह करंगा प्रभ को जाने सधी संगा ठाकर नाम कियो उन वर्तन तृप्ता गावन हर कै दर्शन हर संग्राते

तुम राखो तिव ही रहना, जो तुम कहो सोई मोहे करना, जह पेखो तहां तुम बसना, निरपो नाम जपो तेरा रसना। तू मेरी नवनिध तू पंडार, रंग रसा तू मन आधार, तू मेरी शोभा तुम संगरचिया, तू मेरी ओट तू है मेरा तकिया। मन तन अंतर तू ही ते आया, मर्म तुम्हारा गुर ते पाया, सतगुर ते दृढ़ केक, नानक दास हर हर हर टेक, गौड़ी ग्वारेरी महला पंजवा। व्यापत हरक सोग विस्तार, व्यापत स्वर्ग नरक अवतार, व्यापत धन निरतर पेक शोभा, मूल व्याधि व्याप सलोभा। माया व्याप्त बहु प्रकारी, संत जीव प्रभु उड़ तुम्हारी रहाओ, व्यापत अहम बुद्ध का माता, व्यापत पुत्र कलत्र संग्राता। व्यापत हस्त घोड़े अर बस्ता, व्यापत रूप जोबन मद मस्ता, व्यापत भूम रंग कर रंगा, व्याप्त गीत ना सुन संगा, व्याप्त सेज मैल सिंगार, पाई दूध व्याप्त अंधियार। व्यापत कर्म करे हो फासा, व्याप्त ग्रस्त व्याप्त उदासा, आचार व्यवहार व्याप्त हिजात, सब किश व्याप्त बिन हर रंग रात। संतन के बंधन काटे हर राय, ताको कहां व्याप माए, कहो नानक जन तूर संत पाई, ताका निकटना आवे माई, गौड़ी ग्वारेरी महला पंजवा। नैनो नींद पर दृष्ट विकार, सरवण सोए सुन निंद विचार, रसना सोई लो मीठा साध, मन सोया माया बिस्माद, इस ग्रे में कोई जागत रह, सावत वस्तु अपनी लह रहाओ। सगल सहेली अपने रस माती, ग्रह अपने की खबर ना जाती, मुसनहार पंच बटवारे, सुने नगर परे ठगहारे। उनते राखे बाप ना माई, उनते राखे मीत ना पाई, दर्भ से अणप ना होए रहते, साह संगो दुष्ट वस होते। कर कृपा मोहे सारिंग पाण, संतन तूर सर्व निधान, सावत पूंजी सतगुर संग, नानक जागे पार ब्रह्म कै रंग। सो जागे जिस प्रभ कृपाल, एह पूंजी सब तन माल, रहाओ दूजा गौड़ी ग्वारेरी महला पंजवा। जा कै वस खान सुल्तान, जा कै वस है सगल जहान, जा का किया सब किश होए, तिसते बाहर नाही कोए। कहो बेनंती अपने सतगुर पाहे, काज तुम्हारे दे निवाहे रहाओ। सब ते ऊच जा का दरबार, सगल भगत जा का नाम आधार, सर्व व्यापत पूर्ण धनी, जाकी शोभा कड़कड़ बनी। जिस सिमरत दुख डेराट है, जिस सिमरत जम किशु ना कह, जिस सिमरत होत सूके हरे, जिस सिमरत डूबत पाहन तरे। संत सभा को सदा जयकार, हर हर नाम जन प्राण आधार, कहो नानक मेरी सुनी अरदास, संत प्रसाद मोको नाम निवास। गौड़ी ग्वारेरी महला पंजवा। सतगुर दर्शन यज्ञ निवारी, सतगुर पेड़ हो मैं मारी, सतगुर संग नाही मंडोले, अमृत बाणी गुरमुख बोले। सब जग साचा जा सच मैं राते, शीतल सांत गुरते प्रभ जाते रहाओ। संत प्रसाद जपै हर नाओ, संत प्रसाद हर कीर्तन गाओ, संत प्रसाद सगल दुख मिटे, संत प्रसाद बंधन ते छुटे। संत कृपा ते मिटे मोह भरम, साध रेण।

रहाओ झूठ बात सा सच कर जाती, सत होवन मन लगे ना राती। बावे मार्ग टेढ़ा चलना, सीधा छोड़ा पूठा बुनना। दुहां सरिया का खसम प्रभ सोई, जिस मेले नानक सो मुक्ता होई। गौड़ी गुआरे री महला पंजवां, कल युग में मिले आए संजोग। जिचर आ गया तिचर पोगे भोग, जलै ना पाइए राम स्नेही। किरत संजोग सती उठ होई। रहाओ देखा देखी मन हट जल जाइए, प्रे संग ना पावे बहु जोन पवाइए। सील संजम प्रया गया मन, तिस नारी कहो दुख ना जमान। कहो नानक जिन प्रयो परमेसर कर जानिया, तन सती दरगह परवानिया। गौड़ी गुआरे री महला पंजवां, हाव तन मन तो पालक सच नाए। हर गुण गावे सही सुभाए। रहाओ पियू दादे का खोल डिठा खजाना, ता मेरा मन पया निधाना। अर्तन लाल जा का कछु ना मोल, परे पंडारा खूटा तोल। खावे खर्चे राल मिल पाई, तोट ना आवे वद दो जाई। कहो नानक जिस मस्तक लेख लिखाए, सो एत खजाने लिया रलाए। गौड़ी महला पंजवां, डर डर मरते जब जानिए दूर। डर चुका देखिया भरपूर।

हम दासे तुम ठाकर मेरे मान महत नानक प्रभ तेरे गौड़ी महला पंजवा जा को तुम पै समर्थ अंगा ताको कछ नाही का लंगा माधो जा को है आस तुम्हारी ताको कछ नाही संसारी रहाओ जा कै हृदय ठाकर होए ताको सहसा नाही कोए जा को तुम दीनी प्रभ धीर ताकै निकट न आवै पीर कहो नानक मैं सो गुर पाया पार ब्रह्म पूर्ण देखाया गौड़ी महला पंजवा दुलभ देह पाई वडभागी नाम न जपै ते आत्म घाती मर ना जाही जिन्ना बिसरत राम नाम बिहुन जीवन कौन काम रहाओ खात पीत खेल तो हस्त विस्थार कवन अर्थ मृतक सिंगार जो ना सुने जस परमानंदा पस पंखी त्रिगद जोन ते मंदा कहो नानक गुर मंत्र दृढ़ाया केवल नाम रिद महे समाया गौड़ी महला पंजवा काकी माई काको बाप नाम तारीक झूठे सब साक काहे को मूर्ख पखलाया मिल संजोग हुक्म तू आया रहाओ एका माटी एका जोत एको पवन कहां कौन रोत मेरा मेरा कर बिल्ला ही मरण हारे जियरा नाही कौ नानक गुर खोले कपाट मुक्त पै बिन से ब्रह्म थाट गौड़ी।

मन माहे नाम सिमर चिंता सब जाहे, बिन भगवंत नाही अनकोए, मारा राखै एको सोए रहाओ। गुर के चरण हृदय उरतार, अग्न सागर जप उतरै पार। गुरमूर्त स्यों लाए ध्यान, इहां उहां पावै मान। सगल त्याग गुरसरनी आया, मिटया देसे नानक सुख पाया। गौड़ी महला पंजवां, जिस सिमरत दुख सब जाए, नाम रतन वसै मन आए। जप मन मेरे गोविंद की बाणी, साधु जन राम रसन वखाणी रहाओ। इकस बिन नाही दूजा कोए, जाकी दृष्ट सदा सुख होए। साजन मीत सखा कर एक, हर हर अखर मन मैं लेख। रभ रहे आ सरबत स्वामी, गुण गावे नानके अंतर जामी। गौड़ी महला पंजवा, पै मैं रचियो सब संसारा, तिस पौ नाही जिस नाम आधारा। पौ ना व्यापै तेरी सरना, जो तुद पावै सोई करना रहाओ। सोग अर्ख मैं आवन जाना, तिन सुख पाया जो प्रपाणा। अग्न सागर महाव्यापै माया, से शीतल जिन सतगुर पाया। राख ले प्रभ राखण हारा, कहो नानक्या जंत विचारा। गौड़ी महला पंजवा, तुमरी कृपा ते जपिए ना, तुमरी कृपा ते दर गै था। तुझ बिन पार ब्रह्म नहीं कोए, तुमरी कृपा।

पार ब्रह्म अपरम्पर स्वामी सगल कटाके अंतरजामी करो अरदास अपने सतगुर पास नानक नाम मिले सच रास गौड़ी महला पंजवा कण बिना जैसे थोथर तुखा ना बिहून सुने से मुखा हर हर नाम जपो नित प्राणी ना बिहून त्रिगदेह बेगानी रहाओ ना बिना नाही मुख भाग परत बिहून कहां सोहाग नाम बिसार लगे अनसवाए ताकि आसना पूजै काए कर किरपा प्रभ अपनी दात नानक नाम जपै दिन रात गौड़ी महला पंजवा तू समर्थ तू है मेरा स्वामी सब किस तुम ते तू अंतरजामी पार ब्रह्म पूर्ण जन ओट तेरी शरण उधरै जन कोट रहाओ जेते जी ते सब तेरे तुमरी कृपा ते सुख नेरे जो किश वरतै सब तेरा पाणा हुक्म बूझै सो सच समाणा कर कृपा दीजै प्रभदान नानक सिमरै नाम निधान गौड़ी महला पंजवा ताका दर्श पाईऐ वडभागी जां की राम नाम लिव लागी जां कै हर वसिया मन माही ताको दुख सुपने पी नाही रहाओ सर्व निधान राखे जन्माहे ताकै संग किलविख दुख जाए जन की महिमा कथी न जाए पार ब्रह्म जन रया समाए कर कृपा प्रभ बिनो सुनिजै दास की धूर नानक कहो दीजै गौड़ी महला पंजवा हर सिमरत तेरी जाए बलाए सर्व कल्याण वसै मन आए पज मन मेरे को नाम जी तेरे कै आवै काम रहाओ रैन दिनस गुण गाओ अनंता गुरपूरे का निर्मल मंता छोड़ उपाव एक टेक राख महापदार्थ अमृत रस चाख बिखम सागर तेई जनतरे नानक जा कौन दर करे गौड़ी महला पंजवा हृदय चरण कमल प्रभ तारे पूरे सदगुर मिल सतारे

हर सिमरत पूर्ण पद पाया, साह संग पै परम मिटाया, जात कत देखो तत रहया सुमाए, नानक दास।

संतै संग बैस गुण गाए ताका रंग न उतरै जाए। बिन हर सिमरन सुख नहीं पाया आन रंग फीके सब माया। गुर रंगे से पए निहाल कहो नानक गुर पए है दयाल। गौड़ी महला पंजवा सिमरत स्वामी किल विखनासे सुख सहज आनंद निवासे। राम जना कौ राम भरोसा नाम जपत सब मिट्यो अंदेसा रहाओ। साध संग कश

कहो नानक मन भई परतीत, निर्मल जस पी वै जननीत। गौड़ी महला पंजवा, हर चरणी जा का मन लागा, दुख दर्द प्रमता का भागा। हर धन को व्यापारी पूरा, जसै नवाजे सो जन सूरा। रहाओ जा को भय कृपाल गुसाई, से जन लागे गुर की पाई। सुख सहज सांत आनंदा, जब जब जीवे परमानंदा। नाम रास साध संखाटी, कहो नानक प्रभ अपदा काटी। गौड़ी महला पंजवा, हर सिमरत संभट कलेस, चरण कमल मन में प्रवेश। उचरो राम नाम लखबारी, अमृत रस पीओ प्रप्यारी। रहाओ सुख

कर कृपा प्रभ दीन दयाला, नानक दीजै सादर वाला। गौड़ी महला पंजवां, जिसका दिया पहना खाए, तिस्यो वालस क्यों बने माए। खसम बिसार आन कम लागे, कौडी बदले रतन त्यागे। रहाओ प्रभु त्याग लागत अनलोभा, दास सलाम करत कत सोभा। अमृत रस खावे खान पान, जिन दिए तसै न जाने सुवान।

प्रभ के चरण मन माहे ध्यान, सगल तीर्थ मजन इशनान, हर दिन हर सिमरन मेरे भाई, कोट जन्म की मन लै जाई रहाओ, हर की कथा रिद माहे बसाई, मन बाहित सगले फल पाई, जीवन मरण जन्म परवान, जा कर दे वसै भगवान, कहो नानक सही जन्म।

साधु संग करो सबको, ए सदा कल्याण फिर दुख ना होए। प्रेम भगत पज गुणी निधान, नानक दरगह पाइए मान। गौड़ी महला पंजवा, जल थल महियल पूर्ण हरमीत। प्रांबिन से गाए गुणनीत, उठत सोवत हर संग पहरुआ। जाका सिमरन जमने डरुआ, रहाओ चरण कमल प्रभु दया निवास।

गौड़ी महला पंजवा नित प्रत नावन राम सर की जय। चोल महारस हरे अमृत पी जय रहाओ। निर्मल उदक गोविंद का नाम, मज्जन करत पूर्ण सब काम। संत संग तै गोष्ट होए, कोट जन्म के किलविख खोए। सिमरै साध करै आनंद, मंत्र रविया परमानंद। जिसै प्राप्त हर चरण निधान, नानक दास तिसै कुर्बान। गौड़ी महला पंजवा, सो किछ कर जित मैल ना लागै। हर कीर्तन में एहो मन जागै, रहाओ

गई ब्याद उभरे जनमीत मन बच कर्म प्रभ अपना त्याई नानक दास तेरी सरनाई। गौड़ी महला पंजवा नेत्र प्रगास किया गुरुदेव परम गए पूर्ण पई सेव रहाओ शीतलाते रखिया बिहारी पार ब्रह्म प्रभ कृपा तहारी नानक नाम जपै सो जीवै साध संग हर अमृत पीवै। गौड़ी महला पंजवा तन ओ मस्तक तन तेरे नेत तन ओए भगत जिन तुम संग हेत नाम बिना कैसे सुख लईऐ रसना राम नाम जस कहियै रहाओ तेनी उपर जाइयै कुर्बान नानक जिन जपया निर्वाण। गौड़ी महला पंजवा तू है मसलत तू है नाल तू है राखै सार समाल ऐसा राम दीन दुनी सहाई दास की पैज रखै मेरे भाई रहाओ आगे आप एहो थान वस जाकै आठ पैर मन हर को जापै पत प्रवान सच निशान जाको आप करै फुरमान आपे दाता या प्रतपाल नित नित नानक।

मन की मत मोहे सगल त्यागी, जो प्रभु की हर कथा सुनावै आन दिन फिराओ तिस पिछे वैरागी, पूर्व कर्म अंकुर जब प्रगटे भेट्यो पुरख रसक बैरागी, मिट्यो अंधेर मिलत हर नानक, जन्म जन्म की सोई जागी, गौड़ी महला पंजवा निकसरे पंखी सिमर हर पांख, मिल साधु शरण गहो पूर्ण, राम रतन हियरे संग्राख, रहाओ भ्रम की कुई तृष्णा रस पंकजो, आतीखण मोकी फास काटनहार, जगत गुरु गोविंदो चरण कमल ताके करो निवास, कर कृपा गोविंद प्रप्रीतम दीना ना सुनो अरदास, कर गै लेहो नानके स्वामी जियो पिण सब तुमरी रास, गौड़ी महला पंजवा हर पेखन को सिमरत मन मेरा, आस प्यासी चितवो दिन रहनी, है कोई संत मिलावे नेरा, रहाओ सेवा करो दास दासन की, अनक पांतिस करो निहोरा, तुला तार तोले सुख सगले, बिन हर दर्स सबो ही थोरा, संत प्रसाद गाय गुण सागर, जन्म जन्म को जात बहोरा, आनंद सुख पेट हर नानक, जन्म कृतार्थ सबल सवेरा, राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा, एको ओंकार सतगुर प्रसाद, किन विद मिलै गुसाई मेरे राम राय, कोई ऐसा संत सह सुखदाता मोहे मार्ग दे बताई, रहाओ अंतर अलख न जाई लखिया, विच पड़दा हूं मैं पाई, माया मोहे सबो जग सोया, एहो परम कहो क्यों जाई,

शरण परयो ठाकुर वजीरा, तिना देख मेरा मन तीरा। एक टेक एको आधारा, जन नानक हर की लागा कारा। गौड़ी महला पंजवा, है कोई ऐसा हो मैं तोरे, इस मीठी ते हो मन हो रै रहाओ। अज्ञानी मानख पाया, जो नाही सो लो रै। रैन अंधारी कारिया, कवन जुगत जित पोरे। प्रम तो हारिया, अनक विधि कर टोरे। कहो नानक कृपा पई, साध संगत निध मोरे। गौड़ी महला पंजवा, चिंता मन करना मैं रहाओ। दीन दयाला पार ब्रह्म, जा कै सिमरन सुख पए। अकाल पुरख अगाध बोध, सुनत जसो कोट अग खए। कृपा नित प्रमया तार, नानक हर हर नाम ले। गौड़ी पूर्वी महला पंजवा, मेरे मन शरण प्रभु सुख पाए। जा दिन बिसरे प्राण सुखदाता, सो दिन जात आ जाए रहाओ। एक रैन के पाहुन तुम आए, बोजुग आस बधाए। गृह मंदिर संपै जो दिसे, जो तरवर की शाए। तन मेरा संपै सब मेरी, बाग मिलक सब जाए। देवनहारा बिसरो ठाकरो, खिर मैं होत पर आए। पहरे बागा कर इशनाना, चोवा चंदन लाए। निरपो निरंकार नहीं चीनिया, ज्यो हस्ती ना वाए। जौ होए कृपाल, ता सतगुर मिले, सब सुख हर के नाए। मुक्त पाया बंधन गुर खोले, जन नानक हर गुण गाए। गौड़ी पूर्वी महला पंजवा, मेरे मन गुर गुर गुर सद करिए। रतन जन्म सफल गुर किया, दर्शन को बलिहारिए रहाओ। जेते सास ग्रास मान लेता, तेते ही गुण गाइए। जा होए दयाल सतगुर अपना, ताए मत बुद्ध पाइए। मेरे मन नाम लय जम बनते छूटे, सर्व सुखा सुख पाइए। सेव स्वामी सतगुर दाता, मन वंचित फल आइए। नाम इष्ट मीत सुत करता, मन संग तुहारे चाले। कर सेवा सदगुर अपने की, गुरते पाइये पाले। गुर कृपाल कृपा प्रभ तारी, बिन से सर्ब अंदेसा। नानक सुख पाया हर कीर्तन, मिट्यो सगल कलेसा। राग गौड़ी महला पंजवा, एक ओंकार सदगुर प्रसाद। तृष्णा बिरले ही की बुझी है रहाओ। कोट जोरे लाख करोरे, मन ना हो रे। परे परे ही कौलुजी है। सुंदर नारी अनक प्रकारी, पर गृह बेकारी। बुरा पला नहीं सुजी है, अनक बंधन माया। परमत परमाया, गुण निध नहीं गाया। मन बिखै ही मैं लुजी है। जा कौरे कृपा करे, जीवत सोई मरे। साध संग माया तरे, नानक सो जन दर हर सिजी है। गौड़ी महला पंजवा, सब हूं।

पत पुनीत दीन बंद हर शरण ताहे तुम आवो। गज को त्रास मिट्यो जे सिमरत तुम काहे बिसरावो। तज अब महान मोह माया फुन भजन राम चित लावो। नानक कहत मुक्त पंथ एहो गुरमुख होए तुम पावो। गौड़ी महला नावा को माई भूल्यो मन समझावै। वेद पुराण साध मग सुन करो निमख ना हर गुण गावै रहाओ। दुर्लभ देह पाए मानस की वृथा जन्म सिरावै। माया मोह महासंकट बानो तासो रुच उपजावै। अंतर बाहर सदा संग प्रभु तासो नेहो ना लावै। नानक मुक्ताहि तुम मानो जेकट राम समावै। गौड़ी महला नावा साधो राम सरन बिसरामा। वेद पुराण पढ़े को एहो गुण सिमरे हर को नामा। रहाओ लोभ मोह माया ममता फोन औ बिखियन की सेवा। हरख सोग परसै जेह नहन सो मूर्त है देवा। स्वर्ग नरक अमृत बिख ए सब त्यों कंचन अर पैसा। उस्तत निंदा ए समझा कै लोभ मोह फुन तैसा। दुख सुख ए दे जे नाहन तेह तुम जानो ज्ञानी। नानक मुगता है तुम मानो ए बिद को जो प्राणी। गौड़ी महला नावा मन रे कहां पयो तै बौरा। अहन से औद कटै नहीं जाने पयो लोभ संग हौरा। रहाओ जो तन तय अपनो कर मान्यो अर सुंदर गृह नारी। इन मैं कछ तेरो रे नाहन देखो सोच बिचारी। रतन जन्म अपनो तै हारियो गोविंद गत नहीं जानी। निमख ना लीन पयो चरणन स्यो बिरथा औद सिरानी। कहो नानक सोई नर सुखिया राम नाम गुण गावै। और सगल जग माया मोहया निरपै पद नहीं पावै। गौड़ी महला नावा नर अचेत पाप ते डर रे। दीन दयाल सगल पै भंजन शरण ताहे तुम पर रे। रहाओ वेद पुराण जास गुण गावत ताको नाम ही है मो धर रे। पावन नाम जगत मैं हर को सिमर सिमर कसमल सब हर रे। मानस देह बहुर नह पावै कछु उपाओ मूत का कर रे। नानक कहत गाए करना मैं पव सागर कै पार उतर रे। राग गौड़ी अष्टपदिया महला पहला गौड़ी गुआरेरी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद। निद सद निर्मल नाम विचार पूर्ण पूर रहा बिखमार। त्रिकुटी छूटी बिमल बजार गुर की मत जी आई कार। इन बेद राम रमत मन मानिया ज्ञान अंजन गुर शब्द पछानिया। रहाओ एक सुख मानिया सहज मिलाया निर्मल बाणी परम चुकाया। लाल पय सूहा रंग माया नदर पई बिगठाक रहाया। उल्ट पई जीवित मर जा गया शब्द रवै मन हास्यों ला गया। रस संग्रह बिख पर हर त्या गया। पाए बसे जमका पौ भाग्या साध रहे बादम अहंकारा। चित हर स्यों राता हुक्म अपारा जात रहे पथ के आचारा। दृष्ट पई सुख आत्म धारा तुझ बिन कोय न देखो मीत। किस सेवो किस देव चीत किस पूछो किस लागो पाए किस उपदेश रहा लिवलाए। गुर सेवी गुर लागो पाए भगत करी रचो हरनाए। सिख्या दीख्या भोजन पाओ हुक्म संजोगी निज कर जाओ। गर्भ गतं सुख आत्म ध्याना जोत पई ज्योति महे समाना। लिखत मिटै नहीं शब्द निशाना करता करना करता जाना। नह पंडित नह चतर सियाना नह पूलो नह परम भुलाना। कथो न कथनी हुक्म पछाना नानक गुरमत सह समाना। गौड़ी गुआरेरी महला पहला मन कुंचर काया उद्यान। गुर अंकस सच शब्द निशान राज द्वारे शोभ सो मान। चतराई नह

नील अनिल अग्न इकठाई, जल निवरी गुर बुझ बुझाई, मन दे लिया रहस गुण गाई। जैसा घर बाहर सो तैसा, बैस गुफा मैं आखो कैसा, सागर डूगर निरपो वैसा। मुवे कहो कहो मारे कौन, निडरे कहो कैसा डर कवन, शब्द पछाने तिने पौन। जिन कहया तिन कहन वखानिया, जिन बुझया तिन सहज पछानिया, देख विचार मेरा मन मानिया। कीरत सूरत मुक्त एक नाई, तही निरंजन रया समाई, निजकर व्याप रया निठाई। औसत कर है केते मुन प्रीत, तन मन सूचे साच सोचीत, नानक हर पज नीता नीत। गौड़ी गुआरे री महला पहला, ना मन मरे ना कार्ज होए, मन वस दूता दुरमत दोए, मन मन गुरते एक होए। निर्गुण राम गुणे वस होए, आप निवार बिचारे सोए रहाओ। मन भूलो बहुचित विकार, मन भूलो सिर आवै भार, मन मन हर एक अंकार। मन भूलो माया कर जाए, काम विरुद्धो रह ना ठाए, हर पज प्राणी रसन रसाए। गैवर हैवर कंचन सुतनारी, बहु चिंता पड़ चल हारी, जुए खेलन काची सारी, संपो संची पए विकार, हरक सोक उबे दरबार। सुख सहजे जपरद मुरार, नगर करे ता मेल मिलाए, गुण संग्रह अवगुण शब्द जलाए, गुरमुख नाम पदार्थ पाए। बिन नाम सब दुख निवास, मनमुख मूड़ माया चितवास, गुरमुख ज्ञान तुर कर्म लिखियास। मन चंचल तावत फुन तावे, साचे सूचे मैल न पावे, नानक हर गुण गावे। गौड़ी गुआरे री महला पहला, हौ मैं करत्या ने सुख होए, मन मत झूठी सच्चा सोए, सगल बिभूते पावै दोए, सो कमावै तुर लिखिया होए। ऐसा जग देखिया जुआरी, सब सुख मांगै नाम विसारी रहाओ। अदिष्ट दिसै ता कहया जाए, बिन देखे कहने बिरथा जाए, गुरमुख दिसै सहि सुभाए, सेवा सुरत एक लिवलाए। सुख मांगत

हर नाग चले नखो विधासा, दैत संघारे बिन भगत अभ्यासा, जरा संद काल जमन संघारे, रक्त बीज काल ने बिदारे, दैत संघार संत निस्तारे, आपे सतगुर शब्द विचारे, दूजे पाए दै संघारे, गुरमुख साच भगत निस्तारे, बूढ़ा दुर्योधन पत खोई, राम ना जान्या करता सोई, जन को दुख पचै दुख होई, जन में जय गुर शब्द ना जानिया, क्यों सुख पावे परम पुलानिया, एक तिल भूले बहुर पछतानिया, कंस केस चांडूर ना कोई, राम ना चीनिया अपनी पत खोई, बिन जगदीश ना राख कोई, बिन गुर गर्भ ना मेटिया जाए, गुरमुख गुरमत धर्म तीर जहर नाए, नानक नाम मिलै गुण गाए, गौड़ी महला पहला, चोवा चंदन अंक चढ़ावो, पाट पटंबर पहर हंडावो, बिन हर नाम कहां सुख पावो, क्या पहराओ

लाल निहाली फूल गुलाला, बिन जगदीश कहां सुख पाला, नैन सलोनी सुंदर नारी, खोड़ सिंगार करै अत प्यारी, बिन जगदीश भजे नित खुआरी, दर कर मैला से सुखाली, अहनस फूल बिछावै माली, बिन हर नाम सो देह दुखाली, हैवर गैवर नेजे वाजे, लश्कर नेव खवासी पाजे, बिन जगदीश झूठे दे वाजे, सिद्ध कहावाओ रिद्ध सिद्ध बुलावाओ, ताज कुलै सिर छतर बनावाओ, बिन जगदीश कहां सच पावाओ, खान मलूक कहावाओ राजा, अबे तबे कूड़े है पाजा, बिन गुर शब्द ना सबर सकाजा, हौमै ममता गुर शब्द विसारी।

बिना काम चितै कामण हितकारी, क्रोध विनाशै सगल विकारी, पत मत खोवै नाम विसारी। पर कर चीत मन मुख डोलाए, गल जेवरी तंदै लपटाए, गुरमुख छूट सहर गुण गाए। ज्यों तन विधवा पर कौ देई, काम दाम चित पर वसेई, बिन पिर तृप्त ना कबहू होई। पढ़ पोथी सिमरत पाठा, वेद पुराण पढ़ै सुन थाटा, बिन रस राते मन बहु नाटा। ज्यों चात्रक जल प्रेम प्यासा, ज्यों मीना जल माहे उलासा, नानक हर रस पी तृपतासा। गौड़ी महला पहला, हठ कर मरे ना लेखे पावे, वेश करे बहु पसम लगावे, नाम विसार बहुर पछतावे। तू मन हर जियो तू मन सुख, नाम विसार सह जम दुख रहाओ। चोवा चंदन।

वाद अहंकार नाही प्रमेला, मन दे पावे नाम सोहेला, दूजे पाए अज्ञान दुहेला। बिन दम के सौदा नहीं हाट, बिन बोए थो सागर नहीं वाट, बिन गुर सेवे काटे काट।

नानक राम भगत सुख पावै। गौड़ी महला पहला। प्रथमे ब्रह्मा काले कर आया, ब्रह्म कमल पयाल न पाया। आज्ञा नहीं लीनी परम पुलाया, जो उपजै सो काल संघारिया। हम हर राखे

अब सुल्तान खान बादशाह नैरना, नामो पुले जमका दुख सहना, मैं तर नाम ज्यों राखो रहना। चौधरी राजे नहीं किसे मुकाम, साह मरे संचय माया दाम, मैं तन दीजे हरि अमृत नाम। रैयत मेहर मुकदम सिकदार, निश्चल कोय ना दिसे संसार, अफर्यो काल कूड सिर मार। निश्चल एक सच्चा सज सोई, जिनकर साजी तने सब गोई, ओ गुरमुख जापै ता पत होई। काजी सेख पेख फकीरा, वड्डे कहावै हम मैं तन पीरा, काल ना छोड़ै बिन सतगुर की तीरा। काल जाल जिह माया नैनी, कानी काल सुनै बिख बैनी, बिन सबदै मूठै दिन रैनी, हृदय साच वस्या हर नाए, काल ना जोहे सकै गुण गाए, नानक गुरमुख शब्द समाए। गौड़ी

आए गुरमुख नाम वसै मन आए गुरमुख कर्म धर्म सच सोई गुरमुख अहंकार जलाए दोई गुरमुख नाम रते सुख होई अपना मन पर बोधो बूझो सोई लोग समझावो सुने ना कोई गुरमुख समझो सदा सुख होई मनमुख डंफ बहुत चतराई जो किश कमावै सो थाए ना पाई आवै जावै ठौर ना काई मनमुख कर्म करे बहुत अभमाना बग ज्यो लाए बह नित्याना जम पकड़िया तब ही पछताना बिन सतगुरु सेवे मुक्त ना होई गुर प्रसादी मिले हर सोई गुरदाता जुग चारे होई गुरमुख जात पात नामे वड़ियाई सायर की पुत्री बिदार गवाई नानक बिन नामे झूठी चतराई गौड़ी महला तीजा इस जोका धर्म पढ़ो तुम पाई पूरे गुर सब सो जी पाई एथे अगे हर नाम सखाई राम पढ़ो मन करो बिचार गुर प्रसादी मैं लियो तार रहाओ वाद विरोध ना पाया जाए मन तन फीका दूजे पाए गुर कै शब्द सच लिवलाए हाँ मैं मैला एहो संसारा नित तीर्थ नावै ना जाए हंकारा बिन गुर भेटे जम करे खुवारा सोजन साचा जे हों मैं मारै गुर कै शब्द पंच संघारै आप तरै सगले कुल तारै माया मोहे नट बाजी पाई मनमुख अंध रहे लपटाई गुरमुख लिबत रहे लिवलाई बहुते पेख करे पेख धारी अंतर तिसना फिरे हंकारी आप ना चीने बाजी हारी कापड़ पहर करे चतराई माया मोहे अत परम पुलाई बिन गुर सेवे बहुत दुख पाई नाम रते सदा बैरागी गृही अंतर साच लिवलागी नानक सतगुर सेवै सेवड़ भागी गौड़ी महला तीजा ब्रह्मा मूल वेद अभ्यासा तिस्ते उपजे देव मो प्यासा त्रैगुण भरमे नाही निकर वासा हम हर राखे सतगुरु मिलाया आंदन भगत हर नाम दृढ़ाया रहाओ त्रैगुण बाणी ब्रह्म जंजाला पड़वाद वखाणे सिर मारे जमकाला तत ना चीने बन्ने पंड पराला मनमुख अज्ञान को मार्ग पाए हर नाम बिसारे।

सद ही निर्मल सही सुमावै, हर कथा सुने से तनवंत दिसै जुग माही, तिनको सब निवै अंदन पूज कराही, सहजे गुण रवै साचे मन माही, पूरे सतगुर शब्द सुनाया, त्रैगुण मेटे चौथे चित लाया, नानक हमें मार ब्रह्म मिलाया, गौड़ी महला तीजा, ब्रह्मा वेद पढ़े वाद बखाने, अंतर तामस आप ना पछाने, तां प्रभ पाए गुर शब्द बखाने, गुर सेवा करो फिर काल ना खाए, मनमुख खादे दूजे पाए रहाओ, गुरमुख प्राणी अपराधी सी दे, गुर कै शब्द अंतर सहजरी दे, मेरा प्रपाया गुर कै शब्द सी दे, सतगुर मेले प्रभ आप मिलाए, मेरे प्रभ साचे कै मन पाए, हर गुण गावे सह सुभाए, बिन गुर साचे परम पलाए, मनमुख अंधे सदा बिख खाए, जम डंड सह सदा दुख पाए, जमुआ ना जो है हर की शरणाई, हम मैं मार सच लिवलाई, सदा रह हर नाम लिवलाई, सतगुर सेवै से जन निर्मल पवित्ता, मन स्यों मन मिलाए सब जग जीता, इन विद कुशल तेरा मेरे मीता, सतगुरु सेवे सो फल पाए, हृदय नाम विचों आप गवाए, अनहद बाणी शब्द बजाए, सतगुर ते कवन कवन नासी दो मेरे भाई, भगती सीधे दर शोभा पाई, नानक राम नाम वड्याई, गौड़ी महला तीजा, त्रै गुण वखाणे भरम ना जाए, बंधन ना टूटे मुक्त ना पाए, मुक्त दाता सतगुरु युग माहे, गुरमुख प्राणी परम गवाए, सहित अनुपज

मन कर हला मेरे प्रीतमा, दिन रहन हर लिवलाए, घर जाए पावै रंग महली, गुर मेले हर मेलाए। मन कर हला तू मीत मेरा, पाखंड लोभ तजाए, पाखंड लोभी मारी है जम डंड दे सजाए। मन कर हला मेरे प्राण तू मैल पाखंड परम गवाए, हर अमृत सर गुरपूरिया मिल संगति मल लै जाए। मन कर हला मेरे प्यारिया, एक गुर की सिख सुनाए, एहो मोह माया पसरिया अंत साथ ना कोई जाए। मन कर हला मेरे सजना, हर खर्च लिया पत पाए, हर दरगह पहनाया हर आप लया गल लाए। मन कर हला गुर मन्या, गुरमकार कुमाए, गुर आगे कर जोदड़ी जन नानक हर मेलाए। गौड़ी महला चौथा, मन कर हला विचारिया, विचार देख समाल, बन फिर थके बनवासिया फिर गुरमत हृदय निहाल। मन कर हला गुर गोविंद समाल रहाओ, मन कर हला विचारिया मनमुख पाथिया महाजाल, गुरमुख प्राणी मुक्त है हर हर नाम समाल। मन कर हला मेरे प्यारिया, सत्संगत सतगुर पाल, सत्संगत लग हर त्याई है हर हर चलै तेरे नाल। मन कर हला वडभागिया, हर एक नजर निहाल, आप छडाए छुट्टिया सतगुर चरण समाल। मन कर हला मेरे प्यारिया, विच देही जोत समाल, गुर नानक नाम विखालिया हर दात करी दयाल। मन कर हला तू चंचला, चतराई छड विकराल, हर हर नाम समाल तू हर मुक्त करे अंतकाल। मन कर हला वडभागिया, तू ज्ञान रतन समाल, गुर ज्ञान खड़ग हथ धारिया जम मारियाड़ा जमकाल। अंतर निदान मन कर हले, भ्रम पवै बाहर पाल, गुरपुरख पूरा भेटिया हर सज्जन लदड़ा नाल। रंग रतड़े मन कर हले, हर रंग सदा समाल, हर रंग कदे न उतरे गुर सेवा शब्द समाल। हम पंखी मन कर हले, हर तरवर पुरख अकाल, वडभागी गुरमुख पाया जन नानक नाम समाल। राग गौड़ी ग्वारेरी महला पंजवा, अष्टपदिया एको अंकार, सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद। जब एहो मन मैं करत गुमाना, तब यो बावर फिरत बेगाना, जब एहो हुआ सगल कीरीना, ता तेर मैया कटकट जीना। सहज सुहेला फल मस्कीनी, सतगुर अपने मोहे दान दीनी रहाओ। जब किस को एहो जान समंदा, तब सगले इस मेले फंदा। मेर तेर जब इन्हें चुकाई, ता ते इस संग नहीं बैराई। जब इन अपनी अपनी तारी, तब इसको है मुश्किल भारी। जब इन करने हर पिछाता, तब इसनो नाही किश्ताता। जब इन अपनो बांध्यो मोहा, आवै जाए सदा जम जोहा। जब इसते सब बिन से परमा, भेद नाही है पार ब्रह्मा। जब इन किश कर्मा ने पेदा, तब ते दुख डंड अरखेदा। जब इन एको एकी बुझिया, तब ते इसनो सबके सूझिया। जब एहो तावै माया अर्थी, न तृप्तावै न तसलाथी। जब इसते एहो यो जौला, पीछे लाग चली उठ कौला। कर कृपा जो सतगुर मिलियो, मन मंदिर में दीपक जलियो। जीत हार की सोजी करी, तो इस कर की कीमत परी। करन करावन सब किसे कै, आपे बुद्ध विचार बबे कै। दूर ना नेरे सब कै संगा, ससालाहनो नानक हर रंगा। गौड़ी महला पंजवा, गुरसेवा ते नामे लागा, तिसको मिलिया जसमस्तक पागा। तिसके हृदय रविया सोए, मन तन सीतन निचल होए। ऐसा कीर्तन कर मन मेरे, इहां उहां जो काम तेरे रहाओ। जास जपत पौ अपदा जाए, तावत मनुआ आवै ठाए। जास जपत फिर दुख ना लागे, जास जपत हम मैं पागे।
ਜਾਸ ਜਪਤ ਵਸਿਆ ਵੈ ਪੰਚਾ, ਜਾਸ ਜਪਤ ਹਿਰਦੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾ। ਜਾਸ ਜਪਤ ਇਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁਝੈ, ਜਾਸ ਜਪਤ ਹਰ ਦਰਗਹਿ ਸਜੈ, ਜਾਸ ਜਪਤ ਕੋਟ ਮਿਟੈ ਅਪਰਾਧ, ਜਾ ਜਪਤ ਹਰ ਹੋਵੈ ਸਾਧ। ਜਾਸ ਜਪਤ ਮਨ ਸੀਤਲ ਹੋਵੈ, ਜਾਸ ਜਪਤ ਮਲ ਸਗਲੀ ਹੋਵੈ, ਜਾਸ ਜਪਤ ਰਤਨ ਹਰ ਮਿਲੈ, ਬਹੁਰ ਨਾ ਛੋਡੈ ਹਰ ਸੰਘ ਲੈ। ਜਾਸ ਜਪਤ ਕਈ ਬੈਕੁੰਠ ਵਾਸ, ਜਾ ਜਪ ਸੋ ਸਹਿਜ ਨਿਵਾਸ, ਜਾਸ ਜਪਤੇ ਅਗਨ ਨਾ ਪੋਹਤ, ਜਾਸ ਜਪਤੇ ਕਾਲ ਨਾ ਜੋਹਤ, ਜਾਸ ਜਪਤ ਤੇਰਾ ਨਿਰਮਲ ਮਾਥਾ, ਜਾ ਜਪ ਸਗਲਾ ਦੁਲਾਤਾ। ਜਾਸ ਜਪਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਛੂ ਨਾ ਬਣੈ, ਜਾਸ ਜਪ ਸੁਣ ਅਨਹਤੁਨੈ, ਜਾਸ ਜਪਤੇ ਨਿਰਮਲ ਸੋਏ, ਜਾਸ ਜਪਤ ਕਮਲ ਸੀਧਾ ਹੋਏ। ਗੁਰ ਸੁਖ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਭ ਉਪਰ ਕਰੀ, ਜਿਸ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਮੰਤਰ ਦੇ ਹਰੀ, ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨ ਤਿਨ ਪੂਜਨ ਚੂਰਾ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਹਿਰਦੇ ਅੰਤਰ ਧਾਰੈ, ਪੰਚ ਜਨਾ ਸਿਉ ਸੰਗ ਨਿਵਾਰੈ, ਦਸ ਇੰਦਰੀ ਕਰ ਰੱਖੈ ਵਾਸ, ਤਾਂ ਕੈ ਆਤਮੈ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਐਸੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਤਾਂ ਕਹਿ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਕਉ ਦਇਆ ਮਇਆ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ, ਰਹਾਉ ਸਾਜਨ ਦੁਸ਼ਟ ਜਾਂ ਕਹਿ ਇਕ ਸਮਾਨੈ, ਜੇਤਾ ਬੋਲਣ ਤੇਤਾ ਗਿਆਨੈ,

आपे लायो अपना प्यार, सदा सदा तिस गुर का करी नमस्कार। कल कलेस पै भ्रम दुख लाथा, कहो नानक मेरा गुर समराथा। गौड़ी महला पंजवां, मिल मेरे गोविंद अपना नाम देहो। नाम बिना त्रिग त्रिग असने हो रहाओ, नाम बिना जो पहरै खाए, ज्यो कूकर जूठन मैं पाए। नाम बिना जेता ब्योहार, ज्यो मृतक मिथ्या सिंगार। नाम विसार करे रस भोग, सुख सुपने नहीं तन मैं रोग। नाम त्याग करे अनकाज, बिरस जाए झूठे सब पाज। नाम संग मन प्रीत ना लावे, कोट कर्म कर तो नरक जावे। हर का नाम जिन मन ना अरादा, चोर की न्याई जमपुर बादा। लाख अडंबर बहुत विस्थारा, नाम बिना झूठे पासारा।

पिर बिन खरी निमाणी जियो, बिन पिर क्यों जीवा मेरी माई, पिर बिन नींद ना आवै जियो, कापड़ तन ना सुहाई, कापड़ तन सुहावै जां पिर भावै गुरमती चित लाइयै, सदा सुहागण जां सतगुर सेवे गुर कै अंक समाईऐ, गुर शब्दे मेला ता पिर रावी लाहा नाम संसारे, नानक कामण नाह प्यारी जां हर के गुण सारे, सा तन रंग माणे जियो अपने नाल प्यारे, अहनस रंग राती जियो गुर शब्द विचारे, गुर शब्द विचारे हो मैं मारे इन बद मिलो प्यारे, सा तन सुहागण सदा रंग राती साचै नाम प्यारे, अपने गुरमिल रहिया अमृत गहिया दुबदा मारने वारे, नानक कामण हर वर पाया सगले दुख विसारे,

पानी अन्न ना पावै मरिए हावै, बिन पिर क्यों सुख पाईऐ। गुरु आगै करो बिनंती जे गुर पावै, जो मिले तवें मिलाईऐ। आपे मिल लए सुखदाता आया मिलिया कर आए, नानक कामण सदा सुहागणो ना पिर मरै न जाए। गौड़ी महला तीजा कामण हर रस बेदी जियो, हर कै सह सुभाए मन मोहन मोह लिया जियो। दुबदा सह समाए दुबदा सह समाए, कामण वर पाए गुरमती रंग लाए। एह शरीर कुड़ एह एक शरीर कूड़ कसत भरिया, गलत आई पाप कमाए। गुरमुख भगत जित सहित ने उपजै, बिन भगती मैल ना जाए। नानक कामण प्रै प्यारी विचों आप गवाए, कामण पिर पाया जियो। गुर कै पाए प्यारे, रैन सुख सुती जियो। अंतरे और तारे अंतरे और तारे, मिलिए प्यारे आन दिन दुख निवारे। अंतर महल पिर रावे कामण गुरमती विचारे, अमृत नाम पिया दिन राती दुबदा मार निवारे। नानक सच मिली सोहागण गुर कह त्या पारे।

राम नाम वा पाराग म्या पारा गुरमति तन पाई है, सेवा सुरत भगते साची विचो आप गवाई है। हम मतहीन मूर्ख मुग्ध अंधे सतगुर मार्ग पाए, नानक गुरमुख शब्द सुहावे अंधन हर गुण गाए। आप कराए करे आप जियो, आपे शब्द सवारे आपे सतगुर आप शब्द जियो, जो जुग भगत प्यारे जो जुग भगत प्यारे हरे आप सवारे, आपे भक्ति लाए आपे दाना आपे बिना आपे सेव कराए आपे गुण।

आई पूर्व लिखिया पाए। हर का नाम मीठा पिरा जियो जा चाख है चितलाए। रसना हरस चाख मुइये जियो आन रस साध गवाए। सदा हर रस पाए जा हर पाए रसना शब्द सुहाए। नाम ते आए सदा सुख पाए नाम रह लिवलाए। नामे उपजे नामे बिरसै नामे सच समाए। नानक नाम गुरमति पाई आपे लै लवाए। एह वडाणी चाकरी पिरा जियो तन छोड़ परदेस सिधाए। दूजे किने सुख ना पायो पिरा जियो बिख्या लोभ लुभाए। बिख्या लोभ लुभाए परम पुलाए ओह क्यों कार सुख पाए। चाकरी वडाणी खरी दुखाली आप विच धर्म गवाए। माया बंधन टिके नाही खिन खिन दुख संताए। नानक माया का दुख तदे चूकै जा गुर शब्दी चित लाए। मन मुख मुक्त गवार पिरा जियो शब्द मन नाम वसाए। माया का परम अंध पिरा जियो हर मार्ग क्यों पाए। क्यों मार्ग पाए बिन सतगुर पाए मन मुख आप गणाए। हर के चाकर सदा सुहेले गुर चरणी चित लाए। जिसनो हर जियो करे कृपा सदा हर के गुण गाए। नानक नाम रतन जग लाहा गुरमुख आप बुझाए। राग गौड़ी संत महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मेरे मन बैराग भया जियो क्यों देखा प्रभदाते। मेरे मीत सखा हर जियो गुरपुरख बिदाते। पुरखो बिदाता एक श्री तार क्यों मिले तुझे ओडीणिया। कर करे सेवा शीस चरणी मन आस दर्शन मानिया। सास सासना

फिर दोष नाही सुखै दाते हाँ विछड़ी बुरे आरे बिनवंत नानक दया धारो कर आवो ना प्यारे। हाँ मन अर्पी सब तन अर्पी अर्पी सब देसा हाँ सिर अर्पी तस्मीत प्यारे जो प्रभ दे संदेसा अर्पया ता शीस सुथान गुर पै संग प्रभु देखाया खिन माहे सगला दुख मिटिया मनो चिंदिया पाया दिन रैन रलियां करे कामनु मिटे सगलिया देसा बिनवंत नानक कंत मिलिया लोड़ ते हम जैसा। मेरा मन आनंद भया जियो वजी वधाई कर ला लिया आ प्यारा सब तिखा बुझाई मिलिया ता लाल गोपाल ठाकरू सखी मंगल गाया सब मीत बंद पहर को उपजया दूत थाऊ गुवाया अनहत वाजे वजह घर मैं पिर संग सिज विछाई बिनवंत नानक सहज रह हर मिलिया।

मोहन तुद सत संगत त्यावै दर्श त्याना मोहन जम नेड़ ना आवै तो जपै निदाना जमकाल तिनको लगे नाही जो एक मन त्या वहे मन बचन कर्म जे तो द्यारा दे से सबे फल पावहे मल मूत मूड जे मुग्ध होते से देख दर्श सुगयाना बिनवंत नानक राज निश्चल पूर्ण पुरख भगवाना मोहन तू सुफल फलिया सन परवारे मोहन पुत्र मीत भाई कुटुंब सब तारे तारिया जहान लहे अब मान जिन्नी दर्शन पाया जिन्नी तुदनो तन कहया तिन जम नेड़ ना आया बेअंत गुण तेरे कथे ना जाही सतगुर पुरख मुरारे बिनवंत नानक टेक राखी जित लग तरिया संसारे गौड़ी महला पंजवा सलोक पतत असंख पुनीत कर पुनः पुनः बलिहार नानक राम नाम जप पावको तिन किल बिख दाहनहार संत जप मना तू राम नारायण गोविंदा हर माधो त्याय मना मुरार मुकंदे कटिए काल दुख फादो दुख हरण दीन सरण श्री तार चरण कमल आरा दी है जम पंथ विखड़ा अग्न सागर निमख सिमरत साधी है कल मलै दैता शुद्ध करता दिन सरैण आराधो बिनवंत नानक करो कृपा गोपाल गोविंद माधो सिमर मना दा मोदर दुख हर पै पंजन हर राया श्री रंगो दयाल मनोहर भगत वछल बिरदाया भगत वछल पुरख पूर्ण मनया चिंदया पाईऐ तम अंध कूप ते उधारै नाम मन वसाईऐ सुर सिद्ध गण गंधर्व मुन जन गुणयानक भगती गाया बिनवंत नानक करो कृपा पार ब्रह्म हर राया चेत मना पार ब्रह्म परमेश्वर सर्व कला जिन धारी करना मैं समरथ स्वामी घटघट प्राण आधारी प्राण मन तन जी दाता बेअंत अगम्य पारो सरण जोग समरथ मोहन सर्व दुख बिदारो रोग सोग सब दुख बिनसै जपत नाम मुरारी बिनवंत नानक करो कृपा समरथ सब कल तारी गुण गाओ मना अचत अविनाशी सब ते उच दयाला विश्वंपर देवन कौ एक सर्व करै प्रतपाला प्रतपाल महा दयाल दाना दया तारे सब किस काल कंटक लोभ मोह नासै जी जा कै प्रभसै सो प्रसन्न देवा सफल सेवा पई पूर्ण काला बिनवंत नानक इच पुन्नी जब दीन दयाला गौड़ी महला पंजवा सुन सखिए मल उदम करेहा मनाए लै हर कंत मान त्याग कर भगत ठगौरी मोह साधु मंत सखी वस आया पर छोट ना जाई एह रीत भली भगवंत नानक जरा मरण पै नरक निवारै पुनीत करै तिस जनतै सुन सखिए एह पली बिनंती एहो मतांत पकाइयै सहज सुभाए उपाद रहत होए गीत गोविंद गाइयै काल कलेस मिटै भ्रम नासै मन चिन्हया फल पाइयै पार ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर नानक नाम ते आइयै सखी इच्छ करी नित सुख मनाई प्रम मेरी आस पुजाए चरण प्यासी दर्श बैरागन पेखो थान सवाए खोज लहो हर संत जना संग समरथ पुरख में लाए नानक तिन मिलिया सुरजन सुखदाता सेवड़ पागी माए सखी नाल वसा अपने नहा प्यारे मेरा मंतन हर संग हिलिया सुन सखिए मेरी नींद भली मैं अपनड़ा पिर मिलिया।
ब्रह्म खोयो सांत सहे सुवामी परगास पया कौल खिलिया वर पाया प्रभ अंतर जामी नानक सोहाग ना टलिया।

परमेश्वरा गुरदेव सखा ज्ञान भंजन गुरदेव बंदप सहोदरा गुरदेव दाता हर नाम उपदेश गुरदेव मंत निरोदरा गुरदेव सांत सतबुद गुरदेव सांत सतबुद्ध मूर्त गुरदेव पारस परस्परा गुरदेव तीर्थ अमृत सरोवर गुर ज्ञान मज्जन अपरंपरा गुरदेव करता सब पाप हरता गुरदेव पतत पवित करा गुरदेव आद जुगा जो जुग गुरदेव मंत हर जप उदरा गुरदेव संगत प्रमेल कर कृपा हम मूड पापी जित लग तरा गुरदेव सतगुर पार ब्रह्म परमेश्वर गुरदेव नानक हर नमस्कारा। सलोक आपै किया कराया आपै करने जोग नानक एको रव रया दूसर होआ ना होग। पौड़ी ओवं साध सतगुर नमस्कारं आदमद अंत निरंकारं आपै सुनो आपै सुख आसन आपै सुनत आप ही जासन आपने आप आपै उपायो आपै बाप आप ही मायो आपै सूखम आपै असूला लखी ना जाई नानक लीला।

नाम बिहुने नानका होत जात सब तूर पवड़ी तदा तूर पुनी तेरे जनुआ तन ते ऊजे रुच या मनुआ तन नहीं बांछ सुरग ना आछ अत प्रे प्रीत साध रज राच तंदे कहा ब्यापै ताहू जो एक छाड़ियन कते न जाहू जा कह ही है दियो प्रभ नाम नानक साध पूर्ण भगवान सलोक अनक पेखर ज्ञान ध्यान मन अठ मिलो ना कोए कहो नानक कृपा पही भक्त ज्ञानी सोए पौड़ी नंगा ज्ञान नहीं मुख बातो अनक जुगत शास्त्र कर पातो ज्ञानी सोए जा कह दृढ़ सो कहत सुनत कह जोग न हो ज्ञानी रह तो आज्ञा दृढ़ जा कह उसन सीत समसर सब ता कह ज्ञानी तत् गुरमुख बिचारी नानक जाको कृपा धारी सलोक आवन आए सृष्ट में बिन बूजे फस टोर नानक गुरमुख सो बुझै जा कै पाग मथोर पौड़ी या जुग में एक कौ आया जन्मत मोयो मोनी माया गर्भ कुंट में उर तब करते सास सास स्मृत प्रवरते उर्ज परे जो छोड़ छडाना देवन हार मन बिसराना तारो कृपा जसै गुसाई एत उत नानक तिस बिसरो नाही सलोक आवत हुक्म बिनास हुक्म आज्ञा पिन ना कोए आवन जाना तेह मिटै नानक जेह मन सोए पौड़ी एव जी बहुत गर्व वासे मोह मगन मीठ जोन फासे इन माया त्रैगुण बसकीने आपन मोह कटे कट दीने ए साजन कश कहो उपाया जा ते तरो बिखम ए माया कर कृपा सत्संग मिलाए नानक ताकै निकट ना माए सलोक किरत कमावन सुभ अशुभ कीने तिन प्रभ आप पासे अपन हाँ हाँ करै नानक बिन हर कहां कमात पौड़ी एक आप करावन हारा आपै पापुन बिस्थारा या जुग जिजत आपै लायो सो पायो जो आप देवायो ओवा का अंत न जाने को जो जो करै सूफन हो एक ते सगला बिस्थारा नानक आप सवार नहारा सलोक राज रहे बनता बिनोद कुसम रंग बिखसोर नानक तेह सरनी परो बिन सजाए मैं मोर पौड़ी रे मन बिन हर जै रचा तह तह बंधन पाए जेह बिद कतू न छूटी है सकते उकमाहे हाँ हाँ करते कर्म रत ताको पारिया फार प्रीत नहीं जो नाम स्यो तौ एउ कर्म बेकार बादे जम की जेवरी मीठी माया रंग भ्रम के मोहे न बुझै सो प्रभ सधू संग लेखै गणत न छूटियै काची पीत न शुद्ध जिसै बुझाए नानका ते गुरमुख निर्मल बुद्ध सलोक टूटे बंधन जा सके

तत लगना नानक ठाकर सदा अलिपना श्लोक। लाल गोपाल गोबिंद प्रभ गहर गंभीर अथाह

मनहार हो सदयाया, वकंत न काहू पाया। कीट हस्त में पुरुष माने, परगट पुरख सब डाऊ सब ठाऊ जाने। जा कौ दीनो हर रस अपना, नान गुरमुख हर हरते जपना। श्लोक आत्म रस जे जानिया, हर रंग सहजे मान। नानक तन तन तन जानो, आए ते प्रवान। पौड़ी आया सफल ताहू को गनिए, जास रसन हर हर जस भनिए। आए बसै साधु कै संगे, अंदर नाम ते आवै रंगे। आवत सोजन ना मैराता, जाको दया मैं बेदाता। एक आवन फिर जो नाया, नानक हर कै दर सुमाया। सलोक यास जपत मन हो आनंद, बिनसै दूजा भाओ। दुख दर्द तृष्णा बुझै, नानक नाम समाओ। पौड़ी यैया जारो धर्म दो, तिसै त्याग सुख सहजे सो। यैया जाए परो संत सरना, जे आसरिया पव जल तरना। यैया जन्मना आवै सो, एक नाम ले मने प्रो। यैया जन्म नहारी है, गुरपूरे की टेक। नानक ते सुख पाया, जा कह ही अरे एक। श्लोक अंतर मंतन बस रहे, ईत ऊत के मीत। गुरपूर उपदेसया, नानक जपिए नीत। पौड़ी अंदन सिमरौ तास कहो, जो अंत सहाई होए। एह बिखिया दिन चार छे, छाड़ चलो सब कोए। कां को मात पिता सोतिया, गृह बंता का संग न लिया। ऐसी संच जो बिरसत नाही, पसेती अपने कर जाही। साध संकर कीर्तन गाया, नानक ते बहुर न आया। श्लोक अत सुंदर कुलीन चतर, मुख ज्ञानी धनवंत। मृतक कही है नानका, जे प्रीत नहीं भगवंत। पौड़ी गंगा खड़ शास्त्र हो ज्ञाता, पूरक कुंभक रेच करमाता। ज्ञान ध्यान तीर्थ इशनानी, सोम पाक अपरस उद्यानी। राम नाम संग मन नहीं हेता, जो कश कीनो सो अनेता। ओवा ते उत्तम गनो चंडाला, नानक जे मन बसै गोपाला। श्लोक कुंट चार दै दिस प्रमे, कर्म किरत की रेख। सुख दुख मुक्त जोन, नानक लिख्यो लेख। पवड़ी कक्का का

गंगा ग्रासै काल तेहे जो सगत प्रभ कीन अनक जोन जन्मै मरै आत्म राम न चीन ज्ञान ध्यान ताहू को आए कर कृपा जे आप देवाए गणती गणी नहीं को छूटै काची गागर सर पर फूटै सो जीवत जह जीवत जपया प्रगट पाए नानक ने छपया सलोक चित चित बो चरण अरबिंद ऊंद कवल बिग सांत प्रगट पाए आपै गोबिंद नानक संत मतात पौड़ी चचा चरण कमल गुर लागा तन तन ओवा दिन संजोग सुभागा चार कुंट दै जस भ्रम आयो पई कृपा तब दर्शन पायो चार विचार बिन सो शब्द हुआ सा संगमन निर्मल हुआ चिंत बिसारी एक दृष्टेता नानक ज्ञान अंजन जे नेत्रा सलोक छाती शीतल मन सुखी संत गोबिंद गुण गाए ऐसी कृपा करो प्रभ नानक दास दसाए पौड़ी शशा शोहरे दास तुम्हारे दा दासन के पानी हारे शशा शार हो तेरे संता अपनी कृपा करो भगवंता शार स्यान बहु चतराई संतन की मन टेक टिकाई शार की पुत्री परम गत पाई नानक जाको संत सहाई।

जा कहो साध कृपाल, साधु संग तौ बसै, जो अपन होहे दयाल। टोहे टाहे बहु पवन, बिन्ना मैं सुख नाहे, टले जाम के दूत तेहे, जो साधु संग समाहे। बार बार जाऊं संत सदके, नानक पाप बिना से कदके। सलोक ठाक ना होती तिन उदार, जे होवो सो प्रसन्न, जो जन प्रभ अपने करे, नानक ते तन तन। पौड़ी ठठा मनुआ ठाहे नाही, जो सगल त्यागे कै लपटाही। ठहक ठहक माया संग मूवे, वहां कै कुशल न कथू हुए। ठांड परी संत संग बसिया, अमृत नाम तहां जी रसिया। ठाकर अपने जो जन पाया, नानक वाका मन शीतलाया। श्लोक डंडौत बंदन अनकबार, सर्व कला समरथ, डोलन ते राखो प्रभु, नानक दे कर हाथ। पौड़ी डड्डा डेरायो नहीं, जय डेरा ते जान, ओवा डेरा का संजमो, गुर कै सबद पिछान। ओवा डेरा या डेरा कौ सरम कर कल, जाका तसु नहीं संचाल। ओवा डेरा की सोमत जान, जाको दृष्ट पूर्ण भगवान। डेरा निचल सच साध संग पाया, नारक तेजन नह डोलाया। श्लोक ताहन लागे धर्म राय, किन न कालो बंद, नानक उबरे जप हरी, साध संग संबंध। पौड़ी टड्डा टूंढत कै फिराओ, टूंडन या मन माहे, संग तुहार प्रभ बसै, बन बन का फिराए। तेरी टाहो साध संग, अहंग बुद्ध बिकराल, सुख पावो सजे बसो, दर्शन देख निहाल। तेरी जाम जम मरै, गर्भ जोन दुख पाए, मोह मगन लपटत रह, हाहो आवे जाए। टहत टहत अब टह परे, साजना सरनाए, दुखे फाहे काटिया, नानक लिए समाए। श्लोक जह साधु गोबिंद भजन, कीर्तन नानक नीत, ना होना तूने छुटै, निकट न जाइयो दूत। पौड़ी अनाणा रण तेसी जिया, आत्म जीतै कोए, होमै अनस्यो लर मरै, सो बादू होए। मणि मिटाई जीवत मरै, गुरपूरे उपदेश, मनुआ जीतै हर मिलै, तेसु रतन वेश। अणा को जाने अपनो, एकै टेक आधार, रहन दिन सो सिमरत रह, सो प्रभुरख अपार। रेण सगल या मन करै, एऊ कर्म कमाए, हुक्मै बूझै सदा सुख, नानक लिखिया पाए। श्लोक तन मन तन अर्पौ तिसै, प्रभु मिलावै मोहे, नानक परम पौ काटियै, चूकै जमकी जो हो। पौड़ी तत्ता तास्यो प्रीत कर, गुणित गोविंद राय, फल पावै मन बांचते, तब तुहारी जाए। त्रास मिटै जम पंथ की, जास बसै मन नाओ, गत पावे मत होए प्रगास, मैली पावे ठाओ। ताहू संग न तह चलै, ग्रेजो बनै राज, संत संग सिमरत रहो, एह तुहारै काज। ताता कछु न होई है, जो ताप निवारै आप, प्रतपालै नानक हमै, आपै माई बाप। श्लोक थाके बोविध कालते, तृप्त ना तृष्णा लाथ, संच संच सागत मुए, नानक माया ना साथ। पौड़ी थथा थिर को नहीं, काय पसारो पाव, अनक बंच बल छल करो, माया एक यो पाव। थैली संचो श्रम करो, थाक परो गावार, मन कै कामना आवई, अंते ओ सरवार। थित पावो गोबिंद भजो, संतै की सिखले हो, प्रीत करो सद एक स्यो, या साचा स्नेहो। कारण करन करावनो, सब दे कै हाथ, जे जित लावो तित लगै, नानक जंथ्या नाथ। श्लोक दस एक निहारिया, सबके देवन हार, सा सा सिमरत रह।

दिन दे तोट न आवई अगणत परे पंडार, दैन हार सद जीवन हारा, मन मूर क्यों ताहे बिसारा, दोष नहीं काहू कौ मीता, माया मोह बंद प्रभ गीता, दर्द निवारे जाके आपे, नानक ते दे गुरमुख त्रापे, श्लोक धर जिया रे एक टेक तू, लाहे बिडानी आस, नानक नाम ते आई है कारज आवै रास पौड़ी, तद्दा तावत तौ मिटै संत संग होए बास, तुरते कृपा करो आप तौ होए मने प्रगास, तन साचा तेउ सच साहा, हर हर पूंजी नाम बिसाहा, तीरज जस सोभा तेह बनया, हर हर नाम श्रवण जे सुनया, गुरमुख जेह कट रहे समाई, नानक ते जन मिली वडाई, श्लोक नानक नाम नाम जप जपया, यंत्र बाहर रंग, गुरपूरै उपदेसिया, नरक नाहे साध संग पौड़ी, नन्ना नरक परै ते नाही, जाकै मंतन नाम बसाही, नाम निदान गुरमुख जो जपते, बिख माया मैं ना होए खपते, नन्ना कारना होता तां कहो, नाम मंत्र गुर दीनो जाको, निद निदान हर अमृत पूरे, तै बाजे नानक अनहद तूरे, श्लोक पत राखी गुर पार ब्रह्म, तज प्रपंच मोह बेकार, नानक सो आराधी है अंत ना पारावार पौड़ी, पप्पा पारमित पार ना पाया, पतत पावन अगम हर राया, होत पुनीत कोट अपराधु, अमृत नाम जपै मिल साधु, पर पज त्रोह मोह मिट नाई, जा कौ राखो आप गुसाई, पात साहो छत्र सिर सो, नानक दूसरे अवर ना को, श्लोक फाहे काटे मिटे गवन, फतेह पई मन जीत, नानक गुरते थित पाई, फिरन मिटे नित नीत पौड़ी, फफा फिरत फिर तू आया, दुर्लभ देहे कल जुग मैं पाया, फिरया ओसर चरै न हाथा, नाम जपो तो कटिया फासा, फिर आमन जान ना होई, एक एक जपो जप सोई, करो किरपा प्रभ करने हारे, मिल लहो नानक बेचारे, श्लोक बिना सुनो तुम पार ब्रह्म, दीन दयाल गोपाल, सुख संपै बहु भोग रस ना।

एक अखर हर मन बस्त नानक होत निहाल। पौड़ी अखर मैं त्र भवन प्रभ धारे, अखर कर कर वेद विचारे, अखर शास्त्र सिमरत पुराना, अखर नाद कथन वखियाना, अखर मुक्त जुगत पै भरमा, अखर कर्म किरत सुच धर्मा, दृष्टमान अखर है जेता, नानक पार ब्रह्म निरलेपा। श्लोक हाथ कलम अगम मस्तक लेखावती, उर्ज रहो सब संग अनूप रूपावती, उस्तत कहन ना।

पौड़ी हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अगनाश हे पूर्ण हे सर्व मैं दुख पंजन गुणतास हे संगी हे निरंकार हे निर्गुण सब टेक हे गोविंद हे गुण निदान जां कै सदा बबेक हे अपरंपर हर हरे हैपी हो वनहार हे संतें कै सदा संग निधारा आधार हे ठाकर हौं दास रो मैं निर्गुण गुण नहीं कोए नानक दीजे नाम दान राखो ही है परोए सलोक गुरुदेव माता गुरुदेव पिता गुरुदेव स्वामी परमेश्वरा गुरुदेव सखा अज्ञान भंजन गुरुदेव बंधप सहोदरा गुरुदेव दाता हर नाम उपदेश गुरुदेव मंत निरुदरा गुरुदेव सांत सत बुद्ध मूर्त गुरुदेव पारस परस्परा गुरुदेव तीर्थ अमृत सरोवर गुर ज्ञान मज्जन अपरंपरा गुरुदेव करता सब पाप हरता गुरुदेव पतत पवित्र करा गुरुदेव आद जुगाद जुग जुग गुरुदेव मंत हर जप उदरा गुरुदेव संगत प्रभ मेल कर कृपा हम मूढ़ पापी जित लगतरा गुरुदेव सतगुर पार ब्रह्म परमेश्वर गुरुदेव नानक हर नमस्कारा एहो श्लोक आद अंत पढ़ना गौड़ी सुखमनी महला पंजवां श्लोक एक ओंकार सतगुर प्रसाद आद गुर ए नमै जुगाद गुर ए नमै सतगुर ए नमै श्री गुरुदेव ए नमै अष्टपदी सिमरौ सिमर सिमर सुख पावो कल कलेश तन माहे मिटावो सिमरौ जास विषम पर एकै नाम जपत अगणत अनेकै वेद पुराण सिमरत सुधाखर कीने राम नाम एक अखर किनका एक जिस जी बसावै ताकि महिमा गनी ना आवै कांखी एकै दर्श तुहारो नानक उन संग मोहे उधारो सुखमनी सुख अमृत प्रभ नाम भक्त जना कै मन विश्राम रहाओ प्रभ कै सिमरन गर्भ ना बसै प्रभ कै सिमरन दुख जम नसै प्रभ कै सिमरन काल पर हरै प्रभ कै सिमरन दुश्मन तरै प्रभ सिमरत कछ बिघन ना लागै प्रभ कै सिमरन अंदर जागै प्रभ कै सिमरन भव ना व्यापै प्रभ कै सिमरन दुख ना संतापै प्रभ का सिमरन साध कै संग सर्व निदान नानक हर रंग प्रभ कै सिमरन रिद्ध सिद्ध नौ निद प्रभ कै सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध प्रभ कै सिमरन जपता पूजा प्रभ कै सिमरन बिनसै दूजा प्रभ कै सिमरन तीर्थ इशनानी प्रभ कै सिमरन दरगै मानी प्रभ कै सिमरन होए सो भला प्रभ कै सिमरन सफल फला
से सिमरै जिने आप सिमराए नानक तां कै लागौ पाए। प्रभ का सिमरन सब ते ऊंचा प्रभ कै सिमरन उदरे मूचा। प्रभ कै सिमरन तृष्णा बुझै प्रभ कै सिमरन सबके सुझै। प्रभ कै सिमरन नाही जम त्रासा प्रभ कै सिमरन पूर्ण आसा। प्रभ कै सिमरन मन की मल जाए अमृत नाम रिद महे समाए। प्रभ जी बसै साध की रसना नानक जन का दासन दसना। प्रभ को सिमरै से धनवंत प्रभ को सिमरै से पतवंत। प्रभ को सिमरै से जन परवान प्रभ को सिमरै से पुरख प्रधान। प्रभ को सिमरै से बेमोहताजे प्रभ को सिमरै से सर्ब के राजे। प्रभ को सिमरै से सुखवासी प्रभ को सिमरै सदा अविनाशी। सिमरन ते लागे जिने आप दयाला नानक जन की मंगैर वाला। प्रभ को सिमरै से पर उपकारी प्रभ को सिमरै तिन सद बलिहारी। प्रभ को सिमरै से मुख सुहावे प्रभ को सिमरै तिन सुख बिहावै। प्रभ को सिमरै तिन आत्म जीता प्रभ को सिमरै तिन निर्मल रीता। प्रभ को सिमरै तिन आनंद कनेरे प्रभ को सिमरै बसै हर नेरे। संत कृपा ते अंधन जाग नानक सिमरन पूरै भाग। प्रभ कै सिमरन कार्य पूरे प्रभ कै सिमरन कौ ना चूरे। प्रभ कै सिमरन हर गुण बानी प्रभ कै सिमरन सहि समानी। प्रभ कै सिमरन निहचल आसन प्रभ कै सिमरन कमल बिगासन। प्रभ कै सिमरन अनह चुन कुआर सुख प्रभ सिमरन का अंत ना पार। सिमरै से जन जिन कौ प्रभ मया नानक तिन जन सरनी पया। हर सिमरन कर भगत प्रगटाए हर सिमरन लग बेद उपाए। हर सिमरन पय सिद्ध जति दाते हर सिमरन नीच चहो कुंट जाते। हर सिमरन तारी सब धरना सिमर सिमर हर कारण करना। हर सिमरन की ओ सगले आकारा हर सिमरन मैं आप निरंकारा। कर कृपा जिस आप बुझाया नानक गुरमुख हर सिमरन तिन पाया। श्लोक दीन दर दुख पंजना कट कट नाथ या नाथ शरण तुम्हारी आयो नानक के प्रभ साथ। अष्टपदी जह मात पिता सुतमीत ना पाई मन ऊहा नाम तेरे संग सहाई। जय महाभयान दूत जमदल तै केवल नाम संग तेरे चले। जय मुश्किल होवे अत भारी हर को नाम खिन माहे उधारी। अनक पुनः चरण करत नहीं तरै हर को नाम कोट पाप पर हरै। गुरमुख नाम जपो मन मेरे नानक पावो सुख कनेरे। सगल श्रेष्ठ को राजा दुखिया हर का नाम जपत होए सुखिया। लाख करोरी बंद ना परै हर का नाम जपत निस्तरै। अनक माया रंग तिख ना बुझावै हर का नाम जपत अगावै। जेह मार्ग हो जाता केला तै हर नाम संग होत सुहेला। ऐसा नाम मन सदा त्याई है नानक गुरमुख परम गत पाई है। छूटत नहीं कोट लख बाही नाम जब तै पार पराही। अनक बिगन जाए आए संघारे हर का नाम तत्काल उधारे। अनक जोन जन मैं मर जाम नाम जपत पावे विश्राम। हौं मैला मल कबो न धोवे हर का नाम कोट पाप होवे। ऐसा नाम जप

जहां त्रिखा मन तुझे आकर्ष है, तै नानक हर हर अमृत बरख है। भक्त जना की बर्तन नाम, संत जना के मन विश्राम। हर का नाम दास की ओट, हर के नाम उदरे जन कोट। हर जस करत संत दिन रात, हर हर औखद साधक मात। हर जन के हर नाम निदान, पार ब्रह्म जन कीनो दान। मन तन रंग

हर का नाम जनकार उपरंग, हर नाम जपत कौ परै न भंग। हर का नाम जन की वड़ियाई, हर कै नाम जन शोभा पाई। हर का नाम जन कौ भोग जोग, हर नाम जपत कछ नाहे बेयोग। जन राता हर नाम की सेवा, नानक पूजै हर हर देवा। हर हर जन कै मालिक जीना, हर तन जन कौ आ प्रभ दीना। हर हर जन कै ओट सतानी, हर प्रताप जन अवर न जानी। ओत पोत जन हर रस राते, सुन समाद नाम रस माते। आठ पहर जन हर हर जपै, हर का भगत प्रगट नहीं छपै। हर की भगत मुक्त बहु करे, नानक जन संग के ते तरे। पार जाते ओ हर को नाम, काम तेन हर हर गुण गाम। सब ते उत्तम हर की कथा, नाम सुनत दर्द दुख लथा। नाम की महिमा संत हृदवसै, संत प्रताप दुर्त सब नसै। संत का संग वड भागी पाई है, संत की सेवा नाम ते आई है। नाम तोल कछ अवर ना होए, नानक गुरमुख नाम पावै जन कोए। सलोक बहु शास्त्र बहु सिमृति, पेखे सर्ब टंडोल। पूजस नाही हर हरे, नानक नाम अमोल। अष्टपदी जाप ताप ज्ञान सब ध्यान, खड़ शास्त्र सिमृत वखियान। जोग अभ्यास कर्म धर्म किरिया, सगल त्याग बन मद्दे फिरिया। अनेक प्रकार किए बहु जतना, पुन दान होमे बहु रतना। शरीर कटाए होमे कर राती, वर्त नेम करे बहु पाती। नहीं तोल राम नाम विचार, नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार। नौ खंड पृथ्वी फिरै चिर जीवै, महा उदास्त पितर महा उदास्त पीसर थीवै।

मन ते कबहू ना बिखिया टरै, जल धोवै बौदे अनीत, सुध कहां होए काची पीत। मन हर के नाम की महिमा ऊच, नानक नाम उदरे पतत बहुमूच। बहुत सियाणप जम का पौ व्यापै, अनक जतन कर तृष्णा त्रापै। भेख अनेक अगन नहीं बुझै, कोटो पाव दरगै नहीं सजै। छूट सनाही

हर का नाम जपत दुख जाए, नानक बोलै सहे सुभाए। चार पदार्थ जे को मांगै साजना की सेवा लागै, जे को अपना दुख मिटावै हर हर नाम हृदय सदगावै। जे को अपनी शोभा लोरै साध संग ए मैं शोरै, जे को जन्म मरण ते डरै साजना की सरनी परै। जिस जन को प्रभ दर्श प्यासा नानक ताकै बल बल जासा। सगल पुरख मैं पुरख प्रधान, साध संग जाका मिटै अभिमान। आपस कौ जो जाने नीचा, सो गनिया सब ते ऊंचा। जाका मन होए सगल की रीना, हर हर नाम तन कड़ कड़ चीना। मन अपने ते बुरा मिटाना, पेखै सगल सिरठ साजना। सुख दुख जन सम दृष्टेता, नानक पाप पुन नहीं लेपा।

जो ठाकर ससदा हजूरे ताको अंधा जानत दूरे जा की टहल पावे दरगह मान तिसे बिसारे मुगदिया जान। सदा सदा एहो पूल नहार नानक राखन हारिया पार रतन त्याग कौडी संग्रच साच छोड़ झूठ संग मचै जो छड़ना सो अस्त्र कर मानै जो होवन सो दूर परानै छोड़ जाए तिसका श्रम करै संग सहा।

अंध कू मैं पतत बेकराल, नानक काढ़ लेहो प्रभु दयाल। करतूत पशु की मानस जात, लोक पिचारा करे दिन रात। बाहर पेख अंतर मल माया, शब्द नाहे कश करे छपाया। बाहर ज्ञान

बिनस जाए हमेव नानक प्रभ शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव अष्टपदी जे प्रसाद शक्ति अमृत खाहे तिस ठाकर कौ रख मन माहे जे प्रसाद सुगंधत तन लावे तिस कौ सिमरत परम गत पावे जे प्रसाद बसै सुख मंदर तिसै त्याय सदा मन अंदर जे प्रसाद ग्रह संग सुख बसना आठ पहर सिमरौ तिस रसना जे प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याई त्यावन जोग जे प्रसाद पाट पटंबर हंडावे तिसै त्याग कत अवर लोभावे जे प्रसाद सुख से सुई जै मन आठ पहर ताका जस गावी जै जे प्रसाद तुझ सब को मन मुखता को जस रसन बखाना जे प्रसाद तेरो रहता धर्म मन सदा त्याए केवल पाल ब्रह्म प्रभ जी जबत दरगह मान पावे नानक पासे ती कर जावे जे प्रसाद आरो कंचन देही लिव लावो तिस राम स्नेही जे प्रसाद तेरा उल्ला रहत मन सुख पावे हर हर जस कहत जे प्रसाद तेरे सगल छिद्र ठाके मन सरनी पर ठाकर प्रभ ताके जे प्रसाद तुझको ना पहुचे मन सास सास सिमरो प्रभ उच्चे जे प्रसाद पाई दुर्लभ देहे नानक ता की भगत करे हे जे प्रसाद या पूखन पहरी जय मन ते सिमरत क्यों वालस की जय जे प्रसाद असव हस्त असवारी मन तिस प्रभ कहो कबहू ना बिसारी जे प्रसाद बाग मिलख तना राख परोए प्रभ अपने मना जिन तेरी

साध की शोभा का नहीं अंत, साध की शोभा सदा बेअंत। साध की शोभा ऊंचते ऊंची, साध की शोभा मूझते मूची। साध की शोभा साध बन आई, नानक साध प्रभेद न पाई। श्लोक। मन साचा मुख साचा सोए, अवर ना पेखै एक बिन कोए। नानक एह लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए। अष्टपदी। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप, जैसे जल में कमला लेप। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख, जैसे सुर सर्ब को सोख। ब्रह्म ज्ञानी कै दृष्ट समान, जैसे राज रंग को लागे तुल पवान। ब्रह्म ज्ञानी कै तीर्ज एक, जो बसदा को खोदे को चंदन लेप। ब्रह्म ज्ञानी का है गुनाओ, नानक ज्यो पाव का सही स्वभाव। ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला, जैसे महल न लागे जलाओ। ब्रह्म ज्ञानी कै मन होए प्रगास, जैसे तर ऊपर आकाश। ब्रह्म ज्ञानी कै मित्र सत्र समान, ब्रह्म ज्ञानी कै नाही अभिमान। ब्रह्म ज्ञानी ऊंच ते ऊंचा, मन अपने है सब दे नीचा। ब्रह्म ज्ञानी से जन पए, नानक जिन प्रव्याप करे। ब्रह्म ज्ञानी सगल की रीना, आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना। ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर माया, ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा ना पया। ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी, ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी। ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता, ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल युगता। ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान, नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान। ब्रह्म ज्ञानी एक ही प्रयास, ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी कै गरीबी समाहा, ब्रह्म ज्ञानी परोपकारो महा। ब्रह्म ज्ञानी कै नाही तंदा, ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंदा। ब्रह्म ज्ञानी कै होए सो भला, ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला। ब्रह्म ज्ञानी संग सगले उधार, नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सगल संसार। ब्रह्म ज्ञानी कै एक रंग, ब्रह्म ज्ञानी कै बसै प्रभ संग। ब्रह्म ज्ञानी कै नाम आधार, ब्रह्म ज्ञानी कै नाम परवार। ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत, ब्रह्म ज्ञानी अहबुद त्यागत। ब्रह्म ज्ञानी कै मन परमानंद, ब्रह्म ज्ञानी कै कर सदा आनंद। ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास, नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता, ब्रह्म ज्ञानी एक संघेता। ब्रह्म ज्ञानी कै होया चिंत, ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत। ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रव्याप, ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप। ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाई है, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाई है। ब्रह्म ज्ञानी को खोजै महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है, ब्रह्म ज्ञानी कै सगल मन माहे। ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद, ब्रह्म ज्ञानी का उसका आदेश। ब्रह्म ज्ञानी का कथिया ना जाए अदाखर, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकर। ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाने, ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने। ब्रह्म ज्ञानी का अंत ना पार, नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार। ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का करता, ब्रह्म ज्ञानी सच जीव है नहीं मरता। ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख विधाता। ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ। ब्रह्म ज्ञानी का सगले आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार। ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी, नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का तनी। श्लोक। और तारै जो अंतर नाम, सर्व में पेख है भगवान।
ਨਿਮਖ ਨਿਮਖ ਠਾਕੁਰ ਨਮਸਕਾਰ, ਨਾਨਕ ਉਹ ਅਪਰਸੋ ਸਗਲ ਨਿਸਤਾਰ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਮਿਥਿਆ ਨਾਹੀ ਰਸਨਾ ਪਰਸ, ਮਨ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਤ ਨਿਰੰਜਨ ਦਰਸ, ਪਰਤਰੇ ਰੂਪ

नानक हो बैसनो परम गत पावे। भगवती भगवंत भगत का रंग सगल त्यागै दुष्ट का संग, मन ते बिनसै सगला परम कर पूजै सगल पार ब्रह्म। साध संग पापा मल खोवै तिस भगवती की मत उत्तम होवै, भगवंत की टहल करै नित नीत मन तन अर्पै बिसन प्रीत। हर के चरण हृदय बसावै नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावै। सो पंडित जो मन पर बोधै राम नाम या तुम्हें सोधै, राम नाम सार रस पीवै उस पंडित के उपदेश जग जीवै। हर की कथा हृदय बसावै सो पंडित फिर जोन ना आवै। वेद पुराण सिमरत बूझै मूल, सुख में जानै अस्थूल। चहु वरना कौ दे उपदेश नानक उस पंडित कौ सदा आदेश। बीज मंत्र सर्व को ज्ञान, चहु वरना मैं जपै को नाम। जो जो जपै तिसकी गत होए, सासंग पावै जन कोए। कर कृपा अंतर उतारै पस प्रेत मुक्त पाथर को उतारै। सर्व रोग का औखद नाम, कल्याण रूप मंगल गुणगाम। काहू जूत कतै ना पाइय धर्म, नानक तिस मिलै जिस लिखिया तुर कर्म। जिसके मन पार ब्रह्म का निवास, तिसका नाम सत रामदास। आत्म राम तिस नदरी आया, दास दसंतन पाए तिन पाया। सदा निगट निगट हर जान, सो दास दर गए परवान। अपने दास को आप कृपा करै, तिस दास को सब सोजी परै। सगल संग आत्मयो दास, ऐसी जुगत नानक रामदास। प्रभ की आज्ञा आत्म हितावै, जीवन मुक्त सोउ कहावै। तैसा हरख तैसा उस सोग, सदा आनंद तै नहीं वियोग। तैसा सुवर्ण तैसी उस माटी, तैसा अमृत तैसी बिख खाटी। तैसा मान तैसा अभिमान, तैसा रंग तैसा राजान। जो वरताए साई जुगत, नानको पुरख कहिए जीवन मुक्त। पार ब्रह्म के सगले ठाओ, जित जित कर रखै तैसा तिन नाओ। आपे करन करावन जोग, प्रभ पावै सोई फुन होग। पसर्यो आप होए अंत तरंग, लखे ना जाहे पार ब्रह्म के रंग। जैसी मत दे तैसा प्रगास, पार ब्रह्म करता अविनाश। सदा सदा सदा दयाल, सिमर सिमर नानक पहे निहाल। सलोक उस्तत करे अनेक जन, अंत ना पारावार। नानक रचना प्रभ रची, बहुविध अनक प्रकार। अष्टपदी कई कोट होए पुजारी, कई कोट आचार व्यवहारी। कई कोट पै तीर्थवासी, कई कोट बन प्रमय उदासी। कई कोट वेद के स्रोते, कई कोट तपीसर होते। कई कोट आत्म ध्यान तारै, कई कोट कब काब विचारै। कई कोट नवतन नाम ते आवै, नानक करते का अंत ना पावै। कई कोट पय अभिमानी, कई कोट अंध अज्ञानी। कई कोट किरपन कठोर, कई कोट अपिग आत्म निकोर। कई कोट पर दर्भ कौ हिरै, कई कोट पर

संत का दोखी कितै काज ना पहुंचै। संत के दोखी को उद्यान परमाई है, संत का दोखी उजड़ पाई है। संत का दोखी अंतर ते थोथा, जो सास बिना मृत की लोथा। संत के दोखी की जड़ किश ना है, आपन बीजा पे ही खाहे। संत के दोखी को अवर ना राखन हार, नानक संत पावै ता ले उबार। संत का दोखी ओ बिल लाए, जो जल बिहून मछली तड़फड़ाए। संत का दोखी भूखा नहीं राजै, जो पाप की ईंधन नहीं त्रापै। संत का दोखी छुटै अकेला, ज्यो बुआड़ तिल खेत।

सन अष्टपदी अविनाशी ब्रह्मन मैं राख मन की तू प्रीत त्याग तिस्ते परे नाही किश कोए सर्व निरंतर एको सोए आपे बिना आपे दाना गैर गंभीर गहिर सोजाना पार ब्रह्म परमेश्वर गोबिंद कृपा निधान दयाल बख्शंद साध तेरे की चरनी पाओ नानक कह मन एहो अनराओ मनसा पूर्ण सरना जोग जो कर पाया सोई होग हरन भरन जाका नेत्र फोर तिसका मंत्र ना जाने होर आनंद रूप मंगल सदजा कै सर्व थोक सुनिए करता कै राज मैं राज योग मैं जोगी तप मैं तपीसर ग्रस्त मैं भोगी त्याए त्याए भगत सुख पाया नानक तिस पुरख का किनंत ना पाया जा की लीला की मित नाहे सगल देवहारे अवगाहे पिता का जन्म के जाने पूत सगल परोई अपने सूत सुमत ज्ञान ध्यान जिंदे जन दास नाम ते आवै से ते गुण में जा को परमाए जन्म मरै फिर आवै जाए ऊच नीच तिसके स्थान जैसा जनावै तैसा नानक जान नाना रूप नाना जाके रंग नाना पे कर एक रंग नाना बिदकीनो विस्तार प्रभ नासी एकंकार नाना चलत करे खिन माहे पूर रहो पूर्ण सब ठाए नाना बिदकर बंत बनाई अपनी कीमते आपे पाई सब कर तिसके सब तिसके ठाओ जब जब जीवै नानक हर नाओ नाम के तारे सगले जंत नाम के तारे खंड ब्रह्मंड नाम के तारे सिमृत वेद पुराण नाम के तारे सुन ज्ञान ध्यान नाम के तारे आगास पाताल नाम के तारे सगले आकार नाम के तारे पुरिया सब पवन नाम के संग उदरे सुन श्रवण कर कृपा जिस अपने नाम लाए नानक चौथे पद मैं सो जनगत पाए रूप सत जाका सत अस्थान पुरख सत केवल प्रधान करतूत सत सत जाकी बाणी सत पुरख समाए समाणी सत कर्म जाकी रचना सत मूल सत सत उत्पत सत करणी निर्मल निर्मली जिसै बजाय तिसै सब भली सत नाम प्रभ का सुखदाई विश्वास सत नान गुरते पाई सत बचन साधु उपदेश सत तेजन जा कर दे प्रवेश सत निरत बूझै जे कोए नाम जपत ता की गत होए आप सत किया सब सत आपे जानै अपनी मित गत जिसकी सृष्ट सो करने हार अवरना बुझ करत विचार करते की मित ना जाने किया नानक जो तिस भावै सो वर्तिया बिस्मन बिस्म पय बिस्माद जिन बुझिया तिस आया स्वाद प्रभ कै रंग राजन रहे गुर कै बचन पदार्थ लहे ओए दाते दुख कट नहार जा कै संग तरै संसार जन का सेवक सोवड भागी जन कै संग एक लिव लागी गुण गोबिंद कीर्तन जन गावै गुर प्रसाद नानक फल पावै सलोक आद सच जुगाद सच है पे सच नानक हो

सुन कर बचन करनिया गाने, मन संतोख आत्म पति आने, पूरा गुर अखियो जा का मंत्र, अमृत दृष्ट पेखे हुए संत, गुण बेअंत कीमत नहीं पाए, नानक जिस पावे तिस लय मिलाए, जेबा एक उस्तत अनेक, सतपुरख पूर्ण विवेक, काहू बोलना पहुंचत प्राणी, अगवा गोचर प्रभ निर्वाणी, निराहार निर्वैर सुखदाई, ताकि कीमत कने ना पाई, अनक भगत बंधन नित करै, चरण कमल हृदय सिमरै, सदबलिहारी सदगुरु अपने, नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभ जपने, एहो हर रस पावे जन कोए, अमृत पीवे अमर सो होए, उस पुरख का नाही कदे विनाश, जाके मन प्रगटे गुणतास, आठ पहर हर का नाम ले, सच उपदेश सेव कौ दे, मोह माया कै संग ना लेप, मन में रखे हर हरेक, अंधकार दीपक प्रगासे, नानक परमो दुख तै ते नासे, तपत माए ठंड वरताई, आनंद भया दुख नाटे पाई, जन्म मरण के मिटे अंदेसे, साधु के पूर्ण उपदेशे, पाव चूका निरपा होए बसे, सगल ब्याद मन देखे नसे, जिसका साथ इन कृपा तारी, साध संग जप नाम मुरारी, थित पाई चूके भ्रम गमन, सुन नानक हर हर जस रवन, निर्गुण आप सरगुण पियो ही, कला तार जिन सगली मोही, अपने चरत प्रभ आप बनाए, अपनी कीमत आपे पाए, हर बिन दूजा नाही कोए, सर्व निरंतर एको सोए, ओत पोत रव्या रूप रंग, पय प्रगास साध कै संग, रच रचना अपनी कल तारी, अनक बार नानक बलिहारी। सलोक।

अष्टपदी संत जना मिल करो विचार, एक सिमर नाम आधार, अवर्यो पाव सब मीत बिसारो, चरण कमल रिद मैं उर तारो, करण कारण सो प्रभ समरथ, दृढ़ कर गहो नाम हरवथ, एहो तन संचो हो वो भगवंत, संत जना का निर्मल मंत, एक आस राखो मन माहे, सर्व रोग नानक मिट जाए, जिस तन कौ चार कुंट उठता वै, सो तन हर सेवा ते पावै, जिस सुख कौ नित बाछै मीत, सो सुख साधु संग परीत, जिस सोभा कौ करह पली करनी, सा सोभा पज हर की सरनी, अन क्यों पावी रोग ना जाए, रोग मिटे हर अवखद लाए, सर्व निदान मैं हर नाम निदान, जप नानक दरगह परवान, मन पर बोधो हर कह नाए, दह दिस्तावत आवै ठाए, ता कौ बिघन ना लागे कोए, जा कर दह बस हर सोए, कल ताती ठांडा हर नाओ, सिमर सिमर सदा सुख पाओ, पाओ बिन से पूर्ण होए आस, भगत पाया तुम परगास, तित कर जाए बस अबनासी, कहो नानक काटी जम फासी, तत विचार कह जन साचा, जन्म मरे सो काचो काचा, आवा गमन मिटे प्रभ सेव, आप त्याग शरण गुरुदेव, एवं रतन जन्म का होए उदार, हर हर सिमर प्राण आधार, अन क्यो पाव ना छूटन हारे, सिमरत शास्त्र वेद विचारे, हर की भगत करो मन लाए, मन बंछत नानक फल पाए, संग ना चालस तेरे तना, तू क्या लपटावे मूर्ख मना, सोत मीत कुटंब अर बनता, इनते कहो तुम कमन सनाथा, राज रंग माया विस्थार, इनते कहो कमन छुटकार, असहस्ती रथ असवारी, झूठा डंफ झूठ पासारी, जिन दिए तिस बुझे ना बिगाना, नाम बिसार नानक पछताना, गुर की मत तू लेह आने, भगत बिना बहु डूबे सियाने, हर की भगत करो मन मीत, निर्मल होए तुम्हारो चीत, चरण कम

सुनत कह तो रहत गत पावो, सार भूत सत हर को नाओ, सहे सुबाए नानक गुण गाओ। गुण गावत तेरी उत्तर समैल, बिन सजाए हम मैं बिख फैल, होहे अचिंत बसै सुख नाल, सास ग्रह सार नाम समाल। छाड़ सियानप सगली मना, सा संग पावै सजतना, हर पूंजी संच करो व्यवहार, इहा सुख दर गै जयकार। सर्व निरंतर एको देख, कहो नानक जाकै मस्तक लेख। एको जाप एको सालाहे, एक सिमर एको मन आहे। एक सके गुण गाओ अनंत, मन तन जाप एक भगवंत। एको एक एक हरियाप, पूर्ण पूर रहो प्रव्याप। अनक विस्थार एक ते पे, एक आराध प्राश्त गए। मन तन अंतर एक प्रभराता, गुर प्रसाद नानक एक जाता। सलोक फिरत फिरत प्रभ आया, परया तौ सरनाए। नानक की प्रभ बेनती, अपनी भगती लाए। अष्टपदी जाचक जंजा चै प्रभदान, कर कृपा देव हर नाम। साजना की मंग तूर, पार ब्रह्म मेरी श्रद्धा पूर। सदा सदा प्रभ के गुण गावो, सास सास प्रभ तुम्हें ते आवो। चरण कमल स्यों लागे प्रीत, भगत करो प्रभ की नित नीत। एक ओट एको आधार, नानक मांगे नाम प्रभ सार। प्रभ की दृष्ट महा सुख होए, हर रस पावे बिरला कोए। जिन चाखिया से जन त्रिपताने, पूर्ण पुरख नहीं डोलाने। सुब्र परे प्रेम रस रंग, उपजे चाओ साध कै संग। परे सरन आन सब त्याग, अंतर प्रगास अनद निलविलाग। वड भागी जपया प्रभ सोए, नानक नावरते सुख होए। सेव की मनसा पूरी पई, सतगुर ते निर्मल मत लई। जन कौ प्रभ होयो दयाल, सेव की नो सदा निहाल। बंधन काट मुक्त जन पाया, जन्म मरण दुख भ्रम गया। इच पुन्नी सरदा सा पूरी, रव रहया सा संग हजूरी। जिसका साथ न लिया मिलाए, नानक भक्ति नाम समाए। सो क्यों बिसरै जे काल ना पानै, सो क्यों बिसरै जे किया जानै। सो क्यों बिसरै जिन सब किछ दिया, सो क्यों बिसरै जे जीवन जिया। सो क्यों बिसरै जे अग्न मै राखै, गुर प्रसाद को बिरला लाखै। सो क्यों बिसरै जे बिखते काढ़ै, जन्म जन्म का टूटा गांडै। गुरपूरै तत है बुझाया, प्रभ अपना नानक जन त्याया। साजन संत करो एहो काम, आन त्याग जपो हर नाम। सिमर सिमर सिमर सुख पावो, आप जपो अवरै नाम जपावो। भगत पाए तरिया संसार, बिन भक्ति तन होसी शार। सर्व कल्याण सुख निद नाम, बूढ़ जात पाए विश्राम। सगल दुख का होवत नास, नानक ना

दयाल, भगत वचन सदा कृपाल, अनाथ नाथ गोबिंद गोपाल, सर्व कटा करत प्रतपाल, आदि पुरख कारण करतार, भगत जना के प्राण आधार, जो जो जपै सो होए पुनीत, भगत पाए लावे मनहीत, हम निर्गुणी आर नीच अजान, नानक तुमरी शरण पुरख भगवान, सर्व बैकुंठ मुक्त मोख पाए, एक निमख हर के गुण गाए, अनक राज भोग वडियाई, हर के नाम की कथा मन पाई, बहु भोजन का प्रसंगीत, रसना जपती हर हर नीत, पली सुकरणी शोभा तनवंत, हृदय बसे पूर्ण गुरमंत, साध संग प्रभ देहो निवास, सर्व सुख नानक प्रगास, सलोक सरगुण निर्गुण निरंकार, सुन समाधि आप आपन किया नानका, आपे ही फिर जाप, अष्टपदी जब आकार हो कछ ना दृटेता, पापुन तब कहते होता, जब तारी अपन सुन समाद, तब बैर विरोध के संक मात, जब इसका वर्ण चिन्ह ना जापत, तब हरक शोक सह व्यापत, जब अपने आप आपार ब्रह्म, तब मोह कहाँ किस होवत परम, आपन खेल आप वर्ती जा, नान करने हार ना दूजा, जब होवत प्रभ केवल तनी, तब बंद मोत कौ किस कौ गनी, जब एक हर अगम अपार, तब नरक सुर कहो कौन अवतार, जब निर्गुण प्रभ सहे सुभाए, तब शिव सकत कहो कित ठाए, जब आप है आप अपनी जोत तर, तब कवन निडर कवन कत डर, आपन चलत आप करन हार, नानक ठाकर अगम अपार, अबनासी सुख अपने आसन, तै जन्म मरण कौ कहां बिनासन, जब पूर्ण करता प्रभ सोए, तब जम की त्रास कहो किस होए, जब आप गत्या गोचर प्रभ एका, तब चित्र गुप्त किस पूछत लेखा, जब नाथ निरंजन अगोचरिया गादे, तब कौन छुटे कौन बंधन बादे, अपने आप ही चर जा, नानक अपने रूप आप ही उपर जा, जय निर्मल पुरख पुरख पत होता, तह बिन मैल कहो क्या तोता, जह निरंजन निरंकार निर्वाण, तह कौन कौमान कौन अभमान, जय स्वरूप केवल जगदीश, तै शरशिदर लगत कौ कीस, जय ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समाव, तै किसे भूख कवन त्रिपतावै, करण करावण करण हार, नानक करते का नाह सुमार, जब अपनी शोभा आपन संग बनाई, तब कवन माए बाप मित्र सुत पाई, जय सर्व कला आपे परवीन, तै वेद कतेब कहा कूचीन, जब अपने आप उरतार, तब सगन अब सगन कहा विचार, जह अपन ऊच अपने आप नेरा, तै कौन ठाकर कौन कहिए चेरा, बिस्मन बिस्म रहे बिस्माद, नानक अपनी का जानो आप, जय अशाल अशेदा भेद समाया, ऊहा किसै व्याप्त माया, आपस कौ आपया देस, तेह गुण का नाही प्रवेश, जय कै एक एक भगवंता, तै कौन अचिंत।

पूर्ण पूर रहे दयालो, सब उपर होवत कृपालो। अपने करतब जानै आप, अंतर जामी रहो ब्याप। प्रतपालै जियन बहु पांत, जो जो रचियो सोत सहत आत। जिस पावै तिस लय मिलाए, भगत करै हर के गुण गाए। मन अंतर विश्वास कर मानिया, करन हार नानक एक जानिया। जन लागा हर एक नाए, तिसकी आसना बिरथी जाए। सेवक को सेवा बने आई, हुक्म बूझ परम पद पाई।

नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाओ। अष्टपदी पूरे गुर का सुन उपदेश पार ब्रह्म निकट कर पेख सा सा सिमर गोविंद मन अंतर की उतरे चिंद आसा नित त्यागो तरंग संत जना की तूर मन मंग आप छोड़ बेनती करो साध संग अग्न सागर तरो हर तन के पर लिहो भंडार नानक गुर पूरे नमस्कार खेम कुशल सहज आनंद साध संग भज परमानंद नरक निवारो उधारो जियो गुण गोबिंद अमृत रस पियो चित चितवो नारायण एक एक रूप जाके रंग अनेक गोपाल दमुद दीन दयाल दुख भंजन पूर्ण कृपाल सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का है आधार उत्तम सलोक साध के बचन अमलीक लाल एह रतन सुनत कमावत हो तो उधार आप तरह लोके निस्तार सफल जीवन सफलता का संग जाके मन लागा हर रंग जय जय शब्दा नाहद वाजय सुन सुन अंध करे प्रभ गाजय प्रगटे गोपाल महात कै माथे नानक उदरै तिन कै साथे सरन जोग सुन सरनी आए कर कृपा प्रभ आप मिलाए मिट गए बैर पए सबरेन अमृत नाम साध संग लैन सो प्रसन्न पए गुरुदेव पूर्ण होई सेव की सेव आल जंजाल बिकारते रहते राम नाम सुन रसना कहते कर प्रसाद दया प्रभ तारी नानक निभि खेप हमारी प्रभ की उस्तत करो संत मीत सावताने एकाग्र चीत सुखमनी सहज गोविंद गुण नाम जिस मन बसै सो होत निदान सर्व इच्छा ताकी पूर्ण होए प्रधान पुरख प्रगट सब लोए सब ते उच पाए स्थान बौर न होवै अमन जान हर तन खाड़ चले जन सोए नानक जिसै प्राप्त होए खेम सात रिद नव निद बुद्ध ज्ञान सर्व तै सिद्ध विद्या तप जोग प्रभ ध्यान ज्ञान श्रेष्ठ ऊतम इशनान चार पदार्थ कमल प्रगास सब कै मद सगल ते उदास सुंदर चतर तत् का बेता समदर्शी एक दृष्टेता एह फल तिस जन कै मुख पने गुर नानक नाम बचन मन सुने एहो निदान जपै मन कोय सब जुग में ताकी गत होए गुण गोबिंद नाम तुन बाणी सिमरत शास्त्र वेद बखाणी सगल मतांत केवल हर नाम गोबिंद भगत कै मन विश्राम कोट अपराध साध संग मिटै संत कृपा ते जम ते छुटै जा कै मस्तक करम प्रभ पाए साध सरण नानक ते आए जिस मन बसै सुनै लाए प्रीत तिस जन आवै हर प्रभ चीत जन्म मरण ताका दुख निवारै दुलभ देह तत्काल उदारै निर्मल शोभा अमृत ताकी बानी एक नाम मन माहे समानी दुख रोग बिन से पै परम साध नाम निर्मल ताके कर्म सब ते ऊच ताकी शोभा बनी नानक एह गुण नाम सुख मनी। थित्ती गौड़ी महला पंजवा सलोक एक ओवंकार सतगुर प्रसाद जल थल महियल पूरिया स्वामी सृजनहार नानक अनक पांत होए पसरिया नानक एक अंकार पौड़ी एक में एक अंकार प्रभ करो बंदना त्याए गुण गोबिंद गोपाल प्रभ शरण परो हर राय ताँ की आस कल्याण सुख जाते सब कछ होए चार कुंट दह दिस प्रमयो तिस बिन अवर ना कोए
वेद पुराण सिमरत सुने बहुविद करो विचार पत उदाहरण पै हरण सुख सागर निरंकार दाता भुगता देनहार तिस बिन रहन ना जाए दाता भुगता देनहार तिस बिन अवर ना जाए जो चाहे सोई मिले नानक हर गुण गाए गोविंद जस गाइए हर नीत मिल भजिए साध संग मेरे।

प्रम कटिया नानक साध संग दुतिया पाओ मिटाए पौड़ी। दुतिया दुर्मत दूर कर गुर सेवा करनीत, राम रतन मन तन बसै तज काम करो लो मीत। मरण मिटै जीवन मिलै बिनसा सगल कलेस, आप तजो गोविंद भजो पाओ भगत परवेश। लाभ मिलै तोटा हेरै हर दरगै पतवंत, राम नाम धन संचवै सातशाह भगवंत। उठत बैठत हर भजो साधु संग परीत, नानक दुर्मत छुट गई पार ब्रह्म बसे चीत। सलोक तीन ब्यापै जगत को तुरिया पावै कोए, नानक संत निर्मल पए जिनमन वसिया सोए। पौड़ी तृतीया त्रैगुण बिखै फल, कब उत्तम कब नीच, नरक सुर्ग ब्रह्म तौ घणौ सदा संगारै मीच। हरख सोग सहसा संसार हाहौ करत बिहाए, जिन किए तिसे न जाननी चितवै अनक्यो पाए। आद ब्याद उपाद रस।

को खटशास्त्री उच्चो कह अंत ना पारा वार भगत सोहै गुण गावते नानक प्रभ कै द्वार पौड़ी खष्टम खटशास्त्र कह सिमरत कथय अनेक उत्तम उच्चो पार ब्रह्म गुण अंत ना जाने सेख नारद मुनजन सुख ब्यास जस गावत गोबिंद रसगी दे हर स्यों भी दे भगत रचे भगवंत मोह मान परम बिनसयो पाई शरण दयाल चरण कमल मंतन बसे दर्शन देख निहाल लाभ मिले तोटा हिराए।

बोले सत सुभाए, नानक मन संतोखी है, एक सिसो लिवलाए पौड़ी। सप्तम संचो नाम धन, टूट ना जाहे भंडार, संत संगत मैं पाई है, अंत ना पारावार। आप तजो गोबिंद भजो, शरण भरो हर राय, दुख हरै पव जल तरै, मन चंदिया फल पाए। आठ पहर मन हर जपै, सफल जन्म परवान, अंतर बाहर सदा संग, करने हार पछाण। सो साजन सो सखा मीत, जो हर की मत दे, नानक तिस बलिहारणै, हर हर नाम जपे। सलोक आठ पहर गुण गाइयै, तजियै अवर जंजाल, जम कंकर जोहे न सकई, नानक प्रभु दयाल। पौड़ी अष्टमी अष्ट सिद्ध नव निद, सगल पदार्थ पूर्ण बुद्ध, कवल प्रगाश सदा आनंद, निर्मल रीत निरोधर मंत, सगल धर्म पवित्र इशनान, समय उच्च बसे ज्ञान, हर हर भजन पूरे।

मोहयो स्वाद बेकार, नानक नाम बिसारे है नरक सुरग अवतार। पौड़ी नौमी नवे शद्र अपवीत, हर नाम न जपै करत विपरीत। पारतरे रमै बकै साध निंद, करन सुनही हर जस बिंद। हिरै पर दर्ब उदर कै ताई, अगना निवरै तृष्णा ना बुझाई। हर सेवा बिन एह फल लागे, नानक प्रभ बिसरत मर जमै अभागे। सलोक दह जस खोजित मैं फिरयो, जत देखौं तत सोए। मन बस आवै नानका, जे पूरन कृपा होए। पौड़ी दसवीं।

मन में चितव पूर्ण भगवंत, हस्त चरण संत टहल कमाई है, नानक हो संजम प्रभ कृपा पाई है। सलोक एको एक बखानी है, बिरला जाने स्वाद, गुण गोबिंद न जानिए, नानक सब विस्माद। पौड़ी एकादशी निकट पेखो हर राम, इंद्री बस कर सुनो हर नाम, मन संतोख सर्ब जी दया, इनविद वर्त संपूर्ण भया, तावत मन राखे कठाए, मन तन शुद्ध जपत हर नाए, समय पूर्ण रहे पार ब्रह्म, नानक हर कीर्तन कर अटल एहो धर्म। सलोक दुर्मत हरि सेवा करी, पेटे साध कृपाल, नानक प्रभ सो मिल रहे बिनसे सगल जंजाल। पौड़ी द्वादशी दान नाम स्नान, हर की भगत करो तजमान, हर अमृत पान करो साध संग, मंत्र पतास कीर्तन प्रभरंग, कोमल बाणी सबको संतोख है, पंच पू आत्मा हर नाम रस पुख है, गुर पूरे ते एह निहचा उपाई है, नानक राम रमत फिर जो न आई है। सलोक तीन गुणा मैं व्यापिया, पूर्ण होत ना काम, पत्तो धारण मन बसै, नानक छूटे नाम। पौड़ी त्रौदसी तीन ताप संसार, आवत जात नरक अवतार, हर हर भजन ना मन मैं आयो, सुख सागर प्रभ निमख ना गायो, हर सो का दे कर बाध्यो, दीर्घ रोग माया आशा देओ, दिने बेकार करत श्रम पायो, नैनी नींद सुपन बरड़ायो, हर बिसरत होवत एह हाल, शरण नानक प्रभ पुरख दयाल। सलोक चार कुंट चौदह पवन, सगल व्याप्त राम, नानक ऊना देखिए पूर्णता के काम। पौड़ी चौदह चार कुंट प्रव्याप, सगल भवन पूर्ण प्रताप, दसे दिशा रव्या प्रभ एक, तरन आकाश समय प्रपेख, जल थल बन पर्वत पाताल, परमेश्वर तै बसें दयाल, सूखम अस्थूल सगल भगवान, नानक गुरमुख ब्रह्म पिशान। सलोक आत्म जीता गुरमति, गुण गाए गोबिंद, संत प्रसादी भै मिटे, नानक बिरसी चिंद। पौड़ी अमावसे आत्म सुखी पहे, संतोख दिया गुरुदेव, मन तन शीतल शांत सहज, लागा प्रभ की सेव, टूटे बंधन बहु बेकार, सफल पूर्णता के काम, दुर्मत मिटी हम मैं छुटी, सिमरत हर को नाम, शरण गही पार ब्रह्म की, मिटिया आवा गवन, आप तरिया कोटा बस्यों, गुण गोबिंद प्रभ रवन, हर की टहल कमावनी, जपिए प्रभ का नाम, गुरपूरे ते पाया नानक सुख विश्राम। सलोक पूरन कबो न डोलता, पूरा किया प्रभ आप, दिन दिन चढ़े सवाया, नानक होत ना घाट। पौड़ी पूर्ण मां पूर्ण प्रभ एक, करण कारण समरथ, जी जंत दयाल पुरख, सब ऊपर जाका हथ, गुण निदान गोबिंद गुर, किया जाका होए, अंतर जामी प्रभ सुजान, अलख निरंजन सोए, पार ब्रह्म परमेश्वरो, सब जन नहार, संत सहाई शरण योग, आठ पहर नमस्कार, अकथ कथा न बुझिए, सिमरो हर के चरण, पतो धरण नाथ नाथ, नानक प्रभ की शरण। सलोक दुख बिन से सहसा गयो, शरण गही हर राए, मन चिंदे फल पाया, नानक हर गुण गाए। पौड़ी कोई गावे को सुने, कोई करे विचार, को उपदेश है को दृढ़ है, तिसका होए उधार,
किलबे काटै हुए निर्मला, जन्म जन्म मल जाए। हलत पलत मुखी उजला, नै पो है तिसमाए। सो सुरता सो बैसनो, सो ज्ञानी तनवंत, सो सूरा कुलवंत सोए, जिन भजया भगवंत। खत्री ब्राह्मण सूद वैस, उदरै सिमर चंडाल, जिन जान्यो प्रभ अपना, नानक तसैरवाल। गौड़ी की वार महला चौथा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सलोक महला चौथा, सतगुर पुरख दयाल है, जिसनो समत सब कोए। एक दृष्ट कर देखदा, मन भावनी ते सिद्ध होए। सतगुर विच अमृत है, हर उत्तम हर पद सोए। नानक कृपा ते हर त्याई है, गुरमुख पावै कोए। महला चौथा, हम मैं माया सब बिख है, नित जग तोटा संसार। लहा हर तन खटिया, गुरमुख शब्द विचार। हम मैं मैल बिख उतरै, हर अमृत हर ओर धार। सब कार्य तिनके सिद्ध है, जिन गुरमुख कृपा धार। नानक जो तुर मिले से मिल रहे, हर मेले सृजनहार। पौड़ी तू सच्चा साहिब सच है, सच सच्चा गोसाई। तुदनो सब त्याई दी, सब लगे तेरी पाई। तेरी सिफत सवाल्यो स्वरूप है, जिन कीती तिस पार लंघाई। गुरमुखा नु फल पाईंदा, सच नाम समाई। वड्डे मेरे साहिबा, वड्डी तेरी वड्याई। सलोक महला चौथा, विण नावै होर सलाहना, सब बोलन फिका साध। मनमुख अहंकार सलाह दे, हौ मैं ममतावाद। जिन सलाहन से मरै, खप जावै सब अपवाद। जन नानक गुरमुख उबरे, जप हर हर परमानाद। महला चौथा, सतगुर हर प्रभ दस, नाम ते आई मन हरी। नानक नाम पवित, हर मुख बोली सब दुख पर हरी। पौड़ी तू आपे आप निरंकार है, निरंजन हर राया। जिनी तू एक मन सच ते आया, तिनका सब दुख गवाया। तेरा श्री को नाही, जिसनो लवे लाए सुनाया। तो जेवड दाता तू है निरंजना, तू है सच मेरे मन पाया। सच्चे मेरे साहेबा, सच्चे सच नाया। सलोक महला चौथा, मन अंतर हम मैं रोग है, प्रम पूले मन मुख दुर्जना। नानक रोग गवाए, मेरे सतगुर साधु सजना। महला चौथा, मंतन रत्ता रंग स्यों, गुरमुख हर गुण तास। जन नानक हर सरनागति, हर मेले गुर साबास। पौड़ी तू करता पुरखिया गम है, किस नाल तू वड़ी है। तुद जेवड़ होए सो आखी है, तो जेहा तू है पड़ी है। तू घट घट एक वरतदा, गुरमुख पर गड़ी है। तू सच्चा सब सदा खसम है, सबदू तू चढ़ी है। तू करै सो सच्चे होए सी, तां कायत कड़ी है। सलोक महला चौथा, मैं मन तन प्रेम प्रम का, अठे पहर लगान। जन नानक कृपा धार प्रभ, सतगुर सुख वसन। महला चौथा, जिन अंदर प्रीत प्रम की, ज्यो बोलन तवै सुहान। नानक हरे आपे जानदा, जिन लाई प्रीत पेरन। पौड़ी तू करता आपा पुल है, पुलन विच नाही। तू करै सो सच्चे भला है, गुरशब्द बुझाही। तू करण कारण समर्थ है, दूजा को नाही। तू साहिब अगम दयाल है, सब तुद ते आही। सब जी तेरे तू सब सदा, तू सब छडाही। सलोक महला चौथा, सुन साजन प्रेम संदेश राय, अखी तार लगन। गुर तुठै सज्जन मिलया, जन नानक सुख सवन। महला चौथा,
सतगुर दाता दयाल है, जिसनो दया सदा होए। सतगुर अंदरों निर्वैर है, सब देखै ब्रह्म एक सोए। निर्वैरा नाल जे वैर चलाएंदे, तिन विचों तिष्टिया ना कोए। सतगुर सबना दा भला मनाएंदा, तिसदा बुरा क्यों होए। सतगुर नो जेहा को इच्छदा, तेहा फल पाए कोए। नानक करता सब के जानदा, जिदू किश कुजा ना होए। पौड़ी जिसनो साहिब वड्डा करे, सोई वड जानी। जे साहिब पावे तिस बख्श लए, सो साहिब मन पाणी। जे कोई उस दी रीस करे, सो मूढ़िया जानी। जिसनो सतगुर मेले सो गुण रवै, गुणिया खवखाणी। नानक सच्चा सच है, बो सच समाणी। सलोक महला चौथा। हर सत निरंजन अमर है, निरपौ निरवैर निरंकार। जिन जपिया एक मन एक चित, तिन लथा हो मैं पार। जिन गुरमुख हरिया राधिया, तिन संत जना जयकार। कोई निंदा करे पूरे सतगुरु की, तिसनो फिट फिट कहे सब संसार। सतगुर विच आप वरतदा, हर आपे रखण हार। धन धन गुरु गुण गावदा, तिसनो सदा सदा नमस्कार। जन नानक तिन कौ वारिया, जिन जपया सृजनहार। महला चौथा। आपे धरती साजिया नु, आपे आकाश। विच आपे जन तो पाया नु, मुख आपे दे गिरास। सब आपे आवरदा, आपे ही गुणतास। जन नानक नाम ते आए तू, सब किलवे कटे तास। पौड़ी तू सच्चा साहिब सच है, सच सच्चे भावै। जो तुद सच सलाह दे, तिन जम कंकर नेण न आवै। तिन के मुख दर उजले, जिन हर हिरदय सच्चा भावै। कूड़ यार पिशाह सटियन, कूड़ हिरदय कपट महा दुख पावै। मोह काले कूड़ यारियां, कूड़ यार कूड़ो हो जावै। सलोक महला चौथा। सतगुर धरती धर्म है, तिस विच जेहा को बीजे, तेहा फल पाए। गुरसिखी अमृत बीजिया, तिन अमृत फल हर पाए। ओना हलत पलत मुख उजले, ओए हर दरगह सच्ची पैन आए। एक ना अंदर खोट, नित खोट कमावै। ओहो जेहा बीजे, तेहा फल खाए। जा सतगुर सराफ नदर कर देखै, सुआव गीर सब उगड़ आए। ओए जेहा चितवै नित, तेहा पायन। ओए तेहो जेहे दईये बजाए। नानक दुही श्री खसम आपे वरतै, नित कर कर देखै चलत सवाए। महला चौथा। एक मन एक वरतदा, जित लगै सो थाए पाए। कोई गल्ला करे कनेरियां, जे घर वथ होवै साई खाए। बिन सतगुर सोजी ना पवै, हंकार ना विचों जाए। हंकारियां नो दुख भुख है, हथ तड़ै कर कर मंगाए। कूड़ ठगी गुजी ना रहै, मुलम्मा पाज लै जाए। जिस होवै पूर्व लिखिया, ते सतगुर मिलै प्रभ आए। ज्यो लोहा पारस भेटिया, मिल संगत स्वर्ण हो जाए। जन नानक के प्रभ तू धनी, ज्यो पावै तिवै चलाए। पौड़ी जिन हर हिरदय सेविया, तिन हर आप मिलाए। गुण की सांझ तिन स्यों करी, सब अवगुण सब जलाए। अवगुण विकण पलरी, जिस देह सो सच्चे पाए। बलिहारी गुरे अपने, जिन अवगुण मेट गुण प्रगटी आए। वड्डी वड्याई वड्डे की, गुरमुख आलाए। सलोक महला चौथा। सतगुर विच वड्डी वड्याई, जो वंदन हर हर नाम ते आवै। हर हर नाम रमत सो संजम, हर नामे ही तृप्तावै। हर नाम तान हर नाम दीबाण, हर नामो रख करावै। जो चित लाए पूजे गुरमूर्त, सो मन इच्छे फल पावै। जो निंदा करे सतगुर पूरे की, तिस करता मार देवावै। फिर ओह वेला उस हथ ना आवै, ओह अपना बीजिया आपे खावै।
नरक घोर मोहे काले खड़िया, ज्यो तस्कर पाए गलावे, फिर सतगुर की सरनी पवे ता उबरे, जा हर हर नाम ते आवे, हर बाता आख सुनाए नानक, हर करते ए वै पावे। महला चौथा, पूरे गुर का हुक्म न मन्ने, ओह मनमुख अज्ञान मुठा बिखमाया, ओस अंदर कूड़ कूड़ो कर बुझे, अनहोंदे झगड़े दईये ओस दे गल पाया, ओ गल फरोसी करे बहु तेरी, उसदा बोलिया किसे ना पाया, ओह कर कर हंडे जो रन दुहागण, ओस नाल मोह जोड़े ओस भी लक्षण लाया, गुरमुख होए सो अलिपतो वरतै, उसदा पास छड गुर पास बह जाया, जो गुर गोपे अपना सो भला नाही पंचो, ओन लाहा मूल सब गवाया, पहला आगम निगम नानक आग सुनाए, पूरे गुर का बचन उपरे आया, गुर सिखा वडियाई पावे गुर पूरे की, मन मुखा ओ वेला हथ ना आया, पौड़ी सच सच्चा सबदू वड्डा है, सो लै जे सतगुर टिके, सो सतगुर जे साहित्य आईंदा, सच सच्चा सतगुर एके, सोई सतगुर पुरख है, जिन पंजे दूत कीते वस छिके, जे बिन सतगुर सेवे आप गणाएं दे, तिन अंदर कूड़ फिट फिट मोए फिके, ओए बोले किसे ना भावनी, मोह काले सतगुर ते चुके। सलोक महला चौथा, हर प्रभ का सब खेत है, हर आप किरसाणी लाया, गुरमुख बख्श जमाइया, मन मुखी मूल गवाया, सब को बीजे अपने भले नो, हर भावे सो खेत जमाया, गुर सिखी हर अमृत बीजिया, हर अमृत नाम फले अमृत पाया, जम चूहा किरस नित कुरकदा, हर करते मार कढ़ाया, किरसाणी जमी भाव कर, हर बोहल बख्श जमाया, तिनका काड़ा अंदेसा सब लायोन, जिनी सतगुर पुरख ते आया, जन नानक नाम आरा दया, आप तरिया सब जग

गुह पढ़ सगवी मल लाए मन मुख आया, पराई जो निंदा चुगली नोवे मुह कर कह भेजिया, ओथे पी मुह काला दुहावे मुखां दा कराया, तड़ सुनिया सबत जगत विच भाई, वे मुख सने नफरे पौली पौंदी, फावा होए कै उठ कर आया, अगे संगती कुड़मी वे मुख रलना ना मिले, ता वोटी भतीजी फिर आण कर पाया, हलत पलत दो बह गए नित भुखा कूके तिहाया, तन तन स्वामी करता पुरख है जिन न्याओ सच बह आप कराया, जो निंदा करे सतगुर पूरे की सो सच है मार पचाया, एहो अखर तिन आखिया जिन जगत सब यो पाया, महला चौथा साहिब जिसका नंगा भुखा होवै तिसदा नफर किथों रज खाए, जे साहिब कै कर वथ होवै सो नफर हथ आवै, अणहोंदी किथों पाए जिसदी सेवा कीती फिर लेखा मंगी, सा सेवा औखी होई नानक सेवा करो हर गुर सफल दर्शन की, फिर लेखा मंगे ना कोई पौड़ी, नानक विचार है संत जानो चार वेद कहंदे, भगत मुखे दे बोल दे से वचन हो मंदे, प्रगट पहारा जापदा सब लोग सुनंदे, सुख ना पाए मुग्ध नारो।

देखो भाई एहो अखाड़ा हरप्रीत सच्चे का, जिने अपने जोर सब आन निवाए, अपने भगतां की रख करे हर स्वामी, निंदका दुष्टा के मोह काले कराए, सतगुर की वड़ियाई ने चढ़ै सवाई, हर कीर्त भगत नित आप कराए, अंध नाम जपो गुर सिखो, हर करता सतगुर करी वसाए, सतगुर की बाणी सत सत कर जानो गुर सिखो, हर करता आप मोह कढ़ाए, गुरसिखा के मोह जले करे हर प्यारा, गुर का जयकार संसार शब्द कराए, जन नानक हर का दास है, हर दासन की हर पैज रखाए, पौड़ी तू सच्चा साहब आप है ससा हमारे, सच पूंजी नाम दृढ़ाए प्रभ वणजारे थारे, सच सेवा सच वणंजल है गुण कथे निरारे, सेवक पाए से जन मिले गुर शब्द सवारे, तू सच्चा साहिब अलख है गुर शब्द लखारे, श्लोक महला चौथा, जिस अंदर तात पराई होवे तिसदा कदे ना होवी भला, उस दे आखे कोई ना लगे नित उजाड़ी पुकारे खला, जिस अंदर चुगली चुगलो वजे कीता करत्या उसदा सब गया, नित चुगली करे अनहोंदी पराई, मुकट न सके उसदा काला भया, कर्म धरती शरीर कलयुग विच जिहा को बीजे तिहा को खाए, गल्लां उपर तपावस न होई विस खादी तत्काल मर जाए, भाई वेखो न्याओ सच करते का जिहा कोई करे तिहा कोई पाए, जन नानक सब सो जी पाई हर दर कियां बातां आग सुनाए, महला चौथा, हुंदे परतख गुरु जो विछड़े तनको दर ढोई नाही, कोई जाए मिले तिन निंदका मोह फिके थुक थुक मोह पाई, जो सतगुर फिटके से सब जगत फिटके नित पंबल पूसे खाही, जिन गुर गोप्या अपना से लैंदे टहा फिराही, तिन की भुख कदे ना उतरै नित भुखा भुख कूकाही, ओना दा आख्या को ना सुनै नित हौले हौल मराही, सतगुर की वड्याई वेख ना सकनी ओना अगे पिछे था ओ नाही, जो सतगुर मारे तिन जाय मिलै रहंदी खोंदी सब पत गवाही, ओए अगे कुष्टी गुर के फिटके जे ओस मिलै तिस कुष्ट उठाही, हर तिनका दर्शन ना करो जो दूजे पाए चित लाही, तुर करता आप लिख पाया तिस नाल क्यों चारा नाही, जन नानक ना मारा तू तिस अपड़ को ना सकाही, नावे की वड्याई वड्डी है नित सवाई चढ़े चढ़ाही, महला चौथा, जे होंदे गुरु बैठकिया ते जन की वड्याई वड्डी होई, तिसको जगत निव्या सब पैरी पया, जस वर्त्या लोई तिसको खंड ब्रह्मांड नमस्कार करे, जिसके मस्तक हथ धरिया गुर पूरा सो पूरा होई, गुर की वड्याई नित चढ़ै सवाई अपड़ को ना सकोई, जन नानक हर करता आप बैठकिया आपे पैज रखे प्रभ सोई, पौड़ी काया कोटिया पार है अंदर हट नाले, गुरमुख सौदा जो करे हर वस माले, नाम निदान हर वणजी है हीरे परवाले, विण काया जे होर थै धन खोज दे से मूड बिताले, से उजड़ परम पवाई है ज्यो झाड़ मिर्ग पाले, श्लोक महला चौथा, जो निंदा करे सतगुर पूरे की सो औखा जग मैं होया, नरक कोर दुखू है ओथे पकड़ ओह टोया, कूक पुकार को ना सुने ओह औखा होए होए रोया, ओन हलत पलत सब गवाया लहा मूल सब खोया, ओह तेली संदा बल्द कर नित पलके उठ प्रभ जोया, हर वेखै सुनै नित सब किश तिदू किश गुजा ना होया, जैसा जैसा बीजै सो लुणै
जेहा पुरब किने बोया जिस कृपा करे प्रभ अपनी तिस सतगुर के चरण धोया गुर सतगुर पिछे तर गया जन लोहा काट संगोया जन नानक नाम ते आए तू जप हर हर नाम सुख होया महला चौथा वडभागियां सुहागणी जिन्ना गुरमुख मिलिया हर राय अंतर जोत परगासिया नानक नाम समाए पौड़ी एहो शरीर सब धर्म है जिस अंदर सच्चे की विच जोत गोहज रतन विच लुक रहे कोई गुरमुख सेव कड्डे खोत सब आत्म राम पछाणिया ता एक रविया एको ओत पोत एक देखिया एक मन्या एको सुनिया श्रवण सरोत जन नानक नाम सलाहे तू सच सच्चे सेवा तेरी होत श्लोक महला चौथा सब रस दिन के हृदय है जिन हर वसिया मन माहे हर दरगह ते मुख उजले तिन कौ सब देखन जाए जिन निरपो नाम ते आया तिन कौ पौ कोई नाहे हर उत्तम किनी सरेविया जिन कौ तुर लिखिया आहे ते हर दरगह पहनाई है जिन हर वुठा मन माहे ओए आप तरे सब कुटुंब सियो दिन तिन पिछे सब जगत छड़ाहे जन नानक कौ हर मेल जन तिन वेख वेख हम जीवाहे महला चौथा सा धरती पई हरियावली जिथे मेरा सतगुर बैठा आए से जंत पए हरियावले जिन्नी मेरा सतगुर देखिया जाए तन तन पिता तन तन कुल तन तन सोजननी जिन गुरु जनिया माए तन तन गुरु जिन ना मारा दिया आप तरिया जिनी डिठा तिना ले छाए हर सतगुर मिलो दया कर जन नानक तो वह पाए पौड़ी सच सच्चा सतगुर अगम है जिस अंदर हरि उर धारिया सच सच्चा सतगुर पुरख है जिन काम क्रोध बिख मारिया जा डिठा पूरा सतगुरु ता अंदरो मन साधारिया बलिहारी गुरे अपने सदा सदा घुम वारिया गुरमुख जिता मन मुख हारिया श्लोक महला चौथा कर कृपा सतगुर मेलेओन मुख गुरमुख नाम ते आए सी सो करे जे सतगुर भाव सी गुर पूरा करी वसाए सी जिने अंदर नाम निधान है तिनका पौ सब गवाए सी जिन रखण कौ हर आप होए होर केती चख चख जाए सी जन नानक नाम ते आए तू हर हालत पलत छोड़ाए सी महला चौथा गुरसिखा कै मन भावदी गुर सतगुर की वडियाई हर रख पै सतगुरु की नित चढ़ै सवाई गुर सतगुर कै मन पार ब्रह्म है पार ब्रह्म छड़ाई गुर सतगुर तान दी बाण हार तिन सब आण निवाई जिन्नी डिठा मेरा सतगुर पाओ कर तिनके सब पाप गवाई हर दरगह ते मुख उजले बहु सोभा पाई जन नानक मंगै धूड़ तिन जो गुर के सिख मेरे पाई पौड़ी हौ आख सलाही सिफत सच सच सच्चे की वडियाई सा लाही सच सलाह सच सच कीमत किने ना पाई सच सच्चा रस

मंत्र बताय हर रस खाए पौड़ी सच सच्चा कुदरत जानिए दिन राती जिन बनाइया सो सच सलाही सदा सदा सच सच्चे किया वड्याईया सलाही सच सलाह सच सच कीमत कने ना पाईया जा मिलिया पूरा सतगुरु ता हाजर नदरी आईया सच गुरमुख जिनी सलाहया तिन्ना भुखा सब गवाईया श्लोक महला चौथा मैं मन तन खोज खोज इंदिया सो प्रभ लद्दा लोड़ विष्ट गुरु मैं पाया जिन हर प्रभ दित्ता जोड़ महला तीजा माया तारी अत अन्ना बोला शब्द ना सुनई बहुरोल कचोला गुरमुख जापै शब्द लिवलाए हर नाम सुन मन्ने हर नाम समाए जो तिस पावै सो करे कराया नानक वज

फिर सतगुर लगे पाए, सतगुर की गणते कुसी है, दुखे दुख विहाए। सतगुर पुरख निर्वैर है, आपे ले जिस लाए, नानक दर्शन जिन्ना विखा ले ओन तिन्ना दरगे ले छाए। महला तीजा, मनमुख अज्ञान दुर्मत अहंकारी, अंतर क्रोध जुवे मतहारी, कूड़क सत ओह।

बिन सतगुर भेटे थाए ना पाए, नानक पूर्व लिखिया कमाए पौड़ी। जिनके चित कठोर है से बह ना सतगुर पास, ओथे सच वर्तदा कूड़े आरा चित उदास, ओए वाल छल।

नाही। तन बहुतै डिठै तपै तरम हारिया, पाई एहो तपा न होवी बगला है, बैसाध जना विचारिया। सतपुरख की तपा निंदा करै, संसार की उस्तति विच होवै, एत दोखै तपा दईए मारिया। महापुरखा की निंदा का वेख, जे तपे नो फल लगा, सब गया तपे का कालिया। बाहर बह पंचा विच तपा सदाए, अंदर बह तपा पाप कमाए। हर अंदरला पाप पंचा नो उगा कर वेखा लिया, धर्म राय जम कंकरा नो आख छड़िया। एस तपे नो तिथे खड़ पायो, जिथे महा महा हत्यारिया। फिर एस तपै दे मोहे कोई लगो नाही, एहो सतगुर है फिटकारिया। हर कै दर वरतिया, सो नानक आख सुनाया, सो बूझै जो दईए सवारिया। महला चौथा, हर भगता हर आराध्या, हर की वडियाई, हर कीर्तन भगत नित गाम दे, हर नाम सुखदाई। हर भगता नो नित नावे दी वडियाई, बगसिया नो नित चढ़ाए सवाई। हर भगता नो थिर करी बहालिया, नो अपनी पैज रखाई। निंदका पासो हर लेखा मंगसी, बहु दे सजाई। जेहा निंदक अपने जीए कमाम दे, ते हो फल पाई। अंदर कमाणा सर पर उगड़ै, पावे कोई बह धरती विच कमाई। जन नानक ते देख विकसिया, हर की वड़ियाई। पौड़ी महला पंजवां, भगत जना

पत हर परवान, सर्व त्याग भज केवल राम। गौड़ी कबीर जी, नगर फिरत जाओ पाई है जोग, बन का मिर्ग मुक्त सब होग। क्या नांगे क्या बांधे चाम, जब नहीं चीन से आत्म राम। रहाओ मुंड मुंडाए जो सिद्ध पाई, मुक्ति भेड़ ना गई आकाई। बिंद राख जाओ तरिय पाई, खुसरै क्यों ना परम गत पाई। कहो कबीर सुनो नर पाई, राम नाम बिन किन गत पाई। गौड़ी कबीर जी, संध्या प्रात इशनान कराही, ज्यों पए दादर पानी माही। जाओ पै राम राम रत नाही, ते सब धर्म राय कह जाही। रहाओ काया रत बहु रूप रचाही, तिनको दया सुपने पी नाही। चार चरण कह बवागर, साधु सुख पावे कल सागर। कहो कबीर बहु काए करीजै, सर्बस छोड़ महारस पीजै। कबीर जी गौड़ी, क्या जाप क्या तप क्या बर्त पूजा, जा कर दे पाओ है दूजा। अरे जान मन माधो स्यो लाई है, चतराई ना चतर पुज पाई है। रहाओ पर हर लोभ यार लोकाचार, पर हर काम क्रोध अहंकार। कर्म करत बदे अहमेव, मिल पाथर की करही सेव। कहो कबीर भगत कर पाया, भोले पाए मिले रगराया। गौड़ी कबीर जी, गर्भवास में कुल नहीं जाती, ब्रह्म बिनते सब उत्पाति। कहरे पंडित बामन कब के होए, बामन कह कह जन्म मत खोए। रहाओ जाओ तू ब्राह्मण ब्रह्म नहीं जाया, तो आन बाट का है नहीं आया। तुम कत ब्राह्मण हम कत सूद, हम कत लोहू तुम कत दूध। कहो कबीर जो ब्रह्म विचार है, सो ब्राह्मण कैयत है हमारे। गौड़ी कबीर जी, अंधकार सो कवे ना सोई है, राजा रंक दो मिल रोई है। जाओ पै रसना राम ना कहबो, उपजत बिनसत रोवत रहबो। रहाओ जस देखिए तरवर की छाया, प्राण गए कौ का की माया। जस जंती में जियो समाना, मुए मर्म को का कर जाना। हंसा सरवर काल शरीर, राम रसायन पियो रे कबीर। गौड़ी कबीर जी, जोत की जात जात की ज्योति, तित लागे कंचुआ फल मोती। कमन सो कार जो निरपो कही है, पौ पा जाए अपै होए रही है। रहाओ तट तीर्थ नहीं मन पतियाए, चार आचार रहे उर जाए। पाप पुन दो एक समान, निज कर पारस तजो गुणयान। कबीर निर्गुण नाम ना रोस, इस पर चाय परच रहो एस। गौड़ी कबीर जी, जो जान पर मित पर मन जाना, बात नहीं बैकुंठ समाना। ना जाना बैकुंठ कहाही, जान जान सब कह तहाही। रहाओ कहन कहावन ने पतियाई है, तो मन माने जाते हम जई है। जब लग मन बैकुंठ की आस, तब लग होए नहीं चरण निवास। कहो कबीर ए कहिए काहे, साध संगत बैकुंठ आहे। गौड़ी कबीर जी, उपजै निपजै निपज समाई, नैने देखत एहो जग जाई। लाज ना मरो कहो कर मेरा, अंत की बार नहीं कष तेरा। रहाओ अनक जतन कर काया पाली, मरती बार अगन संग जाली। चोवा चंदन मर्दन अंगा, सोतन जलै काठ कै संगा। कहो कबीर सुनो रे गुनिया, बिनसै गो रूप देखै सब दुनिया। गौड़ी कबीर जी, अवर मुए क्या सो करी जै, तो की जै जो अपन जी जै। मैं ना मरो मरबो संसारा,

भिखारी साकत मरै संत सब जीवै राम रसायन रसना पीवै कहो कबीर प्रभु कृपा की जय हार परे अब पूरा दीजै। गौड़ी कबीर जी की नाल रलाए लिखिया महला पंजवां ऐसो अचरज देखियो कबीर दद कै भोलै बरूलै नीर रहाओ। हरि अंगूरी गदहा चरै नित उठ हासै हींगै मरै माता पैसा अमुहा जाए कुद कुद चरै रसातल पाए। कहो कबीर प्रगट भई खेड लेले कहो चूंगै नित भेड राम रमत मत प्रगटी आई कहो कबीर गुर सोजी पाई। गौड़ी कबीर जी पंच पदे ज्यों जल छोड़ बाहर भयो मीना पूर्व जन्म हो तप काहीना अब कहो राम कवन गत मोरी तजी ले बनारस मत भई थोरी रहाओ। सगल जन्म से पुरी गवाया मरती बार मगहर उठ आया बहुत बरस तप की आकाशी मरण पया मगहर की बासी काशी मगर संबिचारी ओछी भगत कैसे उतरस पारी कहो गुर गाज से।

सूर चंद करै जियारा, समय पसरिया ब्रह्म पसारा, कहो कबीर जानेगा सोए, हृदय राम मुखरा मैं होए। गौड़ी कबीर जी वेद की पुत्री सिमरत पाई, सांकत सांकल जेवरी लह आई, आपन नगर

चल रे बैकुंठ तुझे ले तारों, हिचै ता प्रेम कह चब कुमाराओं। कहत कबीर पले असवारा, बेद कतेब ते रह निरारा। गौड़ी कबीर जी जेह मुख पांचो अमृत खाए, तेह मुख देखत लूकट लाए। एक दुख राम राय।

गौड़ी कबीर जी आपे पावके आपे पवना, जारे खसमता राखे कवना, राम जपत तन जर की ना जाए, राम नाम चितरया समाए रहाओ। काको जरे काहे हुए हान, नटवट खेले सारंग पान, कहो कबीर अखर दोए पाख, होएगा खसम ता लेगा राख। गौड़ी कबीर जी दो पदे नामै जोगत्या।

कहो कबीर खोजो असमान, राम समान ना देखो वान। गौड़ी कबीर जी जेह सिर रच रच बांध तपाग, सो सिर चुंच सवार काग। इस तन तन को क्या गरबैया, राम नाम काहे ना दृढ़िया। रहाओ कहत कबीर सुन।

दुचित्ते की दोए थून गिरानी, मोह बलेंडा टूटा, तिसना शान परी धारी उपर, दुरमत पांडा फूटा। आंधी पाछै जो जल बरखै, तह तेरा जन पीना। कह कबीर मन पया प्रगासा, उदय पान जब चीना। गौड़ी चेती एक ओंकार, सतगुर प्रसाद। हर जस सुनै ना हर गुण गावै, बात नहीं असमान गिरावै। ऐसे लोगन स्यों क्या कहिए, जो प्रभ किए भगते बाहज। तिनते सदा डराने रही है रहाओ। आप ना देहे चुरू पर पानी, तह निंदे जे गंगा यानी। बैठत उठत कुटलता चाले, आप गए और नहूं कहले। छाड़ कु चर्चा यान न जाने, ब्रह्मा हूं को कयो न माने। आप गए और नहूं खोवे, आग लगाए मंदिर में सोवे। अवर्ण हस्त आप है काने, तिनको देख कबीर ले जाने। राग गौड़ी बैरागण कबीर जी, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जीवत पितर नामा।

जेते जतन करत ते डूबे भव सागर नहीं तारे ओरे कर्म तर्म करते बहु संजमो अहम बुद्ध मन जारे ओरे सास ग्रास को दातो ठाकर सो क्यों मनो बिसारे ओरे हीरा लाल अमोल जन्म है कौडी बदले हारे ओरे रहाओ तृष्णा त्रिखा पूख प्रम लागी हृदय नहि बिचारे ओरे उन्मत मान हिरयो मन माही गुर का शब्द ना तारे ओरे स्वाद लुभत इंद्री रस प्रेरियो मद रस लैत बेकारे ओरे कर्म भाग संतन संगाने काष्ट लो उधारे ओरे तावत जोन जन्म भ्रम थाके अब दुख कर हम हारे ओरे कह कबीर गुर मिलत महारस प्रेम भक्त निस्तारे ओरे गौड़ी काल भूत की हस्तनी मन बवरा रे चलत रचियो जगदीश काम सो आए गज बस परे मन बवरा रे अंक सहयो शीस बिखे बाच हर राच समझ मन बवरा रे निरपय होए ना हर भये मन बौरा रे गहयो ना राम जहाज रहाओ मरकट मुष्टि अनाज की मन बौरा रे लीनी हाथ पसार छूटन को सहसा परया मन बौरा रे नाचियो कर कर बार जो नली सुवटा गहयो मन बौरा रे माया यो व्यवहार जैसा रंक सुंभ का मन बौरा रे त्यो पसरियो उपासार नामन कौ तीर्थ कने मन बौरा रे पूजन कौ बहुदेव कहो कबीर।

तस कर निर्णय आवै। राम नाम तन कर संचौनी, सो तन कत ही ना जावै। हमरा तन माधव गोबिंद तरणी धर, एह सार तन कही है। जो सुख प्रभु गोविंद की सेवा, सो सुख राज न लहिय रहाओ। इस तन कारण शिव सनकादक, खोजत पए उदासी। मन मकांजे बा नारायण, परै न जमकी फासी। निज तन ज्ञान भगत गुरदीनी, तास सुमत मन लागा। जलत अंब थंब मन धावत, परम बंधन पौ भागा। कह कबीर मदन के माते, हृदय देख बिचारी। तुम कर लाख कोट अश्वहस्ती, हम कर एक मुरारी। गौड़ी ज्यों कप के कर मुष्ट चनन की, लुप्त ना त्याग दयो। जो जो कर्म किए लालच स्यों, ते फिर ग्रह परयो। भगत बिन बिरथे जन्म गयो। साध संगत भगवान भजन बिन, कही ना सच रहयो रहाओ। ज्यों उद्यान कुसुम पर फुलत, कने ना कराओ लयो। तैसे प्रमता नेक जोन मैं, फिर काल हयो। या तन जोबने अरसत दारा, पेखन कहो जो दयो। तिन्ही माहे अटक जो उर्जे, इंद्री प्रेर लयो। औद अनल तन तिनको मंदर, चौदे ठाठ ठयो। कह कबीर पै सागर तरन कहो, मैं सदगुर ओट लयो। गौड़ी पानी मैला माटी गोरी, इस माटी की पुत्री जोरी। मैं नाही कश आहे ना मोरा, तन तन सब रस गोविंद तोरा रहाओ। इस माटी मैं पवन समाया, झूठा परपंच जोर चलाया। किन्हू लाख पांच की जोरी, अंत की बार गगरिया फोरी। कह कबीर एक नीम उसारी, खिर मैं बिनस जाए हंकारी। गौड़ी राम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जप्यो हर जैसे। दीन दयाल परोसे तेरे, सब परवार चढ़ाया बेड़े रहाओ। जात पावै ता हुक्म नावै, इस बेड़े को पार लंगावै। गुरप्रसाद ऐसी बुद्ध समानी, चूक गई फिर आमन जानी। कहो कबीर पज सारंग पानी, उरवार पार सब एको दानी। गौड़ी नामी जोन छाड़, जो जग में आयो। लागत पवन खसम बिसरायो, जियरा हर के गुना गाओ रहाओ। गर्भ जोन में उर्द तप करता, तव जठर अग्न में रहता। लख चौरासी जोन भ्रम आयो, अब के छुटके ठौर ना ठायो। कहो कबीर पज सारिंग पानी, आपत दिसै जात ना जानी। गौड़ी पूर्वी सुर्ग बासना बांछी है, डरिय ना नरक निवास। होना है सो होई है, मने न की जय आस। रमैया गुण गाइए, जाते पाइए परम निधान रहाओ। क्या जाप क्या तप संजमो, क्या व्रत क्या इशनान। जब लग जुगत ना जानिए, पाओ भगत भगवान। संपै देखना हरखिए, बिपत देखना रोए। जो संपै त्यों बिपत है, बिद ने रचिया सो होए। कह कबीर अब जानिया, संतन हृदय मझार। सेवक सो सेवा भले, जिह कट बसै मुरार। गौड़ी रे मन तेरो कोई नहीं, खिंच ले जिन पार। बिरख बसेरो पंख को, तै सोए संसार। राम रस पिया रे, जेह रस बिसर गए रस और रहाओ। और मोए क्या रोई है, जो आपा थिर ना रहाए। जो उपजै सो बिनस है, दुख कर रोवै बलाए। जह की उपजी तह रची, पीवत मर्दन लाग। कह कबीर चित चित आ, राम सिमर बैराग।
ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਪੰਥ ਨਿਹਾਰੈ ਕੰਮ ਨੀ ਲੋਚਨ ਭਰੀ ਲਿਓ ਸਾਸਾ ਉਰਨਾ ਪੀਜੈ ਭਗਨਾ ਖਿਸੈ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਆਸਾ ਉਡੋ ਨਾ ਕਾਗਾ ਕਾਰੇ ਬੇਗ ਮਿਲੀ ਜੈ ਆਪਣੇ ਰਾਮ ਪਿਆਰੇ ਰਹਾਓ ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਜੀਵਨ ਪਦ ਕਾਰਨੋ ਹਰ ਕੀ ਪਦ ਕਰੀ ਜੈ ਏਕ ਆਧਾਰ ਨਾਮ ਨਾਰਾਇਣੋ ਰਸਨਾ ਰਾਮ ਰਵੀ ਜੈ ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਗਿਆਰਵੀਂ ਆਸ ਪਾਸ ਕੰਤ ਤੁਰਸੀ ਕਾ ਬਿਰਵਾ ਮਾਝ ਬਨਾਰਸ ਗਾਉਂ ਰੇ ਉਹ ਆਕਾ ਸਰੂਪ ਦੇਖ ਮੋਹੀ ਗੁਆਰਨੋ ਮੋਕੋ ਛੋਟ ਨਾ ਆਓ ਨਾ ਜਾਊ ਰੇ ਤੋਹੇ ਚਰਨ ਮਨ ਲਾਗੋ ਸਾਰੰਗ ਧਾਰ ਸੋ ਮਿਲੈ ਜੋ ਬਟ ਭਾਗੋ ਰਹਾਓ ਬਿੰਦਰਾ ਬਾਨ ਮਨ ਹਰਨ ਮਨੋਹਰ ਕਿਸਨ ਚਰਾਵਤ ਗਾਊ ਰੇ ਜਾਂ ਕਾ ਠਾਕਰ ਤੁਹੀ ਸਾਰੰਗ ਧਾਰ ਮੋਹੇ ਕਬੀਰਾ ਨਾਊ ਰੇ ਗੌੜੀ ਬਾਰਵੀਂ ਗੌੜੀ ਪੂਰਬੀ ਬਾਰਵੀਂ ਬਿਪਲ ਬਸਤਰ ਕੇਤੇ ਹੈ ਪਹਿਰੇ ਕਿਆ ਬਨ ਮੱਦੇ ਬਾਸਾ ਕਹਾਂ ਭਇਆ ਨਰ ਦੇ

ज्ञानी त्यानी बहुपदेशी एह जग सगलो तंदा कहे कबीर एक राम नाम बिनु या जग माया अंधा। गौड़ी बारहवीं मन रे छड़ो भरम प्रगट होए नाचो या माया के डांडे सूर के सन मुखर अंते डरपे सती के साचे पांडे। डगमग छाड़े मन बौरा अब तो जरे मरे सदपाई ऐली नोहा संधौरा रहाओ काम क्रोध माया के लीने या बिद जगत बिगूता कह कबीर राजा राम ना छोड़ाओ सगल ऊते ऊंचा। गौड़ी तेरवी फरमान तेरा सिराई।

साहेब रोस तरों के प्यार रहाओ, नाम तेरा आधार मेरा ज्यो फूल जई है नार। कह कबीर गुलाम करका जी आए पावे मार। गौड़ी लख चौरासी जी जोन मैं प्रमत नंद बौथा कोरे, भगत हेत अवतार लियो है भाग बड़ो बपरा कोरे। तुम जो कहता हो नंद को नंदन, नंद सो नंदन का कोरे। तरन आकाश दसो दिस नाही, तब एहो नंद कहां थोरे रहाओ। संकट नहीं परे जोन नहीं आवे, नाम निरंजन जा कोरे। कबीर को स्वामी ऐसो ठाकुर, जाके माई ना बापोरे।

निंदक सो जो निंदा हो रै, हमरा जीवन निंदक लो रै। निंदा हमरी प्रेम प्यार, निंदा हमरा करै उधार। जन कबीर को निंदा सार, निंदक डूबा हम उतरे पार। राजा राम तू ऐसा निरपो, तरन तारन राम राया रहाओ। जब हम होते तब तुम नाही, अब तुम हो हम नाही। अब हम तुम एक भय है, कह देखत मन पति आही। जब बुद्ध होती तब बल कैसा, अब बुद्ध बल ना खटाई। कह कबीर बुद्ध हर ले मेरी, बुद्ध बदली सद पाई। गौड़ी खट नेम कर कोठड़ी बंदी, बस्त अनूप बीच पाई। कुंजी कुल्फ प्राण कर राखे, करते बार ना लाई। अब मन जागत रहो रे भाई, गाफल होए कै जन्म गवायो। चोर मुसे कर जाई रहाओ। पंच पहरुआ दर मै रहते, तिनका नहीं पतियारा। चेत सुचेत चित होए रहो, तौले प्रगास उजारा। नौ कर देख जो कामन भूली, बस्तन उप ना पाई। कहत कबीर नवै कर मूसे, दसवें तत् समाई। गौड़ी माई मोहे अवर ना जान्यो अनाना। शिव सनकाद जास गुण गावै, तास बसै मोरे प्राणा ना रहाओ। हृदय प्रगास ज्ञान गुर गम्मत, गगन मंडल मैं ध्याना ना। बिखै रोग पै बंधन भागे, मन ही कर सुख जाना ना। एक सुमात्रत जान मान प्रभ, दूसर मने ना आना ना। चंदन बास भय मन बासन, त्या कट्यो अब माना ना। जो जन गाए त्या जस ठाकर, तास प्रभु है थाना ना। तेह बड़ भाग बस्यो मन जाके, कर्म प्रधान मथाना ना। काट सकत शिव सहज प्रगासो, एक समाना ना। कह कबीर गुर भेट महासुख, भ्रमत रहे मन माना ना। राग गौड़ी पूर्वी बाम नखरी, कबीर जियो की एक ओंकार। सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद।

जहां बोल तय अक्षर आवा, जह बोल तय मन ना रहावा, बोले बोल मद है सोई, जस ओ है तस लख ना कोई, अल्लह लहो तव क्या कहो, कहो ताको पुकार, भटक बीज में रव रहो, जाको तीन लोक विस्तार, अल्लह लहंता भेद शय, कश कश पायो भेद, उल्ट भेद मन भेदयो, पायो अपंग छेद, तुरक तरीकत जानिए, हिंदू वेद पुराण, मन समझावन कारने, कशवक पढ़िए ज्ञान, ओवंकार आद मैं जाना, लेखियार मेट ताहे ना माना, ओवंकार लख जो कोई, सोई लख मेटना ना होई, कक्का किरण कमल मैं पावा, सस बिघास संपट नहीं आवा, अर्जे तहां कुसम रस पावा, अकह कहा कह का समझावा, खखा है खोड़ मन आवा, खोड़े छाड़ ना दे जस्तावा, खसमै जान खिमा कर रह, ता होए निखियाओ अखै पदल है, गग्गा गुर के बचन पछाना, दूजी बात न धरी काना, रह बेहंगम कतै ना जाई, अगै गह गै गगन रहाई, कग्गा काट काट निमसै सोई, काट फूटे काट कवै ना होई, ता कट माहे काट जो पावा, सो कट शाड अव कट कत्तावा, नंगा निग्रह स्नेहो कर, निर्वारो संदेह, नाही देखना भाजी है, परम सियानप एह, चचा रचित चित्र है पारी, ता चित्र है चेतो चितकारी, चित्र बचित्र एह अवचेरा, ता चित्र चित्राक्ष तेरा, छच्छा एह छत्र पत पासा, छाक के ना रहो शाड़ के ना आसा, रे मानो मैं तो छिन छिन समझावा, ताहे शाड़ कत्या बधावा, जज्जा जाओ तन जीवत जरावै, जोबन जार जुगत सो पावै, अस जार पर जार जर जब रह, तब जाए जोत उजारो लह, चज्जा उर्ज सुरज नहीं जाना, रहो चजक नाही परवाना, कत चक चख और न समझावा, चगर किए चगरो ही पावा, नन्या निकट जो घट रहो, दूर कहां तज जाए, जा कारण जग ढूंढ आओ, नेरा उपायो ताहे, टटा बिकट काट कट माही, खोल कपाट महल के ना जाही, देखया टल टल कतै ना जावा, रह लपट कट पर चौपावा, ठठा एह दूर ठग नीरा, नीठ नीठ मन किया तीरा, जिन ठग ठगया सगल जग खावा, सो ठग ठगया ठौर मन आवा, डड्डा डर उपजै डर जाई, ता डर मह डर रहा समाई, जाओ डर डरे ता फिर डर लागे, निडर हुआ डर और होए भागे, टड्डा टेग टूंडे कत्याना, टूंडत ही टह गए पराना, चढ़ सुमेर टूंड जब आवा, जे गड़ गड़े हो सो गड़ में पावा।

पांचों इंद्री निग्रह करी पापुन दो निर्वरई फफा बिन फूले फल होई ता फल फंक लख जाओ कोई दूर न परे फंक विचार है ता फल फंक।

ससा सोनी का कर सो दो, घट परचा की बात न रो दो, घट परचा जो उपजय पाओ, पूर रया तैंतर भवन राओ, खखा खोज पर जो कोई, जो खोजे सो बहुर ना होई, खोज बूझ जो करे बिचारा, तो भव जल तरत ना लावे बारा, ससा सो सह सही सवार, सोई सही संदेह निवार, अल्प सुख शाड़।

मनमाना है तो सही लखे जो कोई तब ओही ओहो एहो ना होई। ल्यों ल्यों करत फिर सब लोग ता कारण व्यापे बहु सोग। लक्ष्मी बरस्यों जो ल्यो लावे सोग मिटे सब ही सुख पावे। खखा खिरत खपत गए केते खिरत खपत अजू न चेते। अब जग जान जो मना रह जह का बिचरा तह थिर लह। बावन अखर जोरे आन सकिया ना अखर एक पछान। सत का शब्द कबीरा कह पंडित हुए सो अन पैर है। पंडित लोगे कौ व्यवहार ज्ञानवंत कौ तत् विचार। जां कह जी जैसी बुध होई कह कबीर जाने गा सोई। एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग गौड़ी थिति कबीर जी की। सलोक पंद्रह थिति सात वार कह कबीर उरवार ना पार। साधक सिद्ध लख जो पेओ आपे करता आपे देओ। थिति अमावस में आस निवारो अंतर जामी राम सुमारो। जीवत पावो मोख द्वार अनपो शब्द तत निजसार।

परवा प्रीतम करो बिचारो, घट में खेले अकट अपारो, काल कल्पना कदे ना खाए, आद पुरख में रह समाए। द्वितीया दोहकर जाने अंग, माया ब्रह्म रमै सब संग, ना उबड़े न करता जाए, अकुल निरंजन एक कह पाए। तृतीया तीने सम कर लिया वै, आनंद मूल परम पद पावै, साध संगत उपजै विश्वास, बाहर पीतर सदा प्रगास।

सोमवार सस्य अमृत चरै चाखत बेख सगल बिखहरै बाणी रोकिया रह द्वार तौ मन मत वारो पीवनहार मंगलवारे ले माहीत पंच जोर की जाने रीत कर छोड़े बाहर जिन जाए ना तर खरा रिसहराए बुधवार बुध करे प्रगास हृदय कमल में हर का बास गुरमिल दो एक समतर उर्द पंक लय सुदा करे बृहस्पत बिख्या दे बिहाए तीन देव एक संग लाए तीन नदी तै त्रिवटी माहे एनस कसमल तो वह नाहे सुकृत सहार सो एह व्रत चढ़ अनदन आप स्यों लड़े सुरखी पांचो राखे सबै तो दूजी दृष्ट न पैसे कबै थावर थिर कर राखे सोए जोत दी वट्टी कट मैं जोए बाहर पीतर पया प्रगास तब हुआ सगल कर्म का नास जब लग कट मैं दूजी आन तौ तो लो महल न लाभ जान रमत राम स्यों लागो रंग कह कबीर तब निर्मल अंग।

राम कहत जन का स्नान तरे रहाओ। तारी ले गन का बिन रूप कुबजा, ब्याद अजा मल तारी अले। चरण बदक जन ते मुक्त भये, हाँ बल बल जिन राम कहे। दासी सुत जन बिदर सुदामा, उग्र सैन को राज दिए। जपहीन तपहीन कुलहीन कर्महीन, नामे के स्वामी ते उतरे। अरा गौड़ी रविदास जी के पदे, गौड़ी गुआरे री। एक ओंकार सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद, मेरी संगत पोच सोच दिन राती।

मेरी हरो बिपत जन करो सुभाई, चरण ना छाड़ो शरीर कल जाई। कहो रविदास परो तेरी साबा, बेग मिलो जन कर ना बिलंबा। बेगमपुरा शहर को नाओ, दुखा दो नहीं ते ठाओ। ना तस्वीस खराज ना माल, खौफ ना खता ना तरस जवाल। अब मोहे

सो क्यों विसरै मेरी माए, साचा साहब साचा नाय रहाओ। साचे नाम की तिल वड़ियाई, आग थके कीमत नहीं पाई। जैसा मिलकै आखण पाहे, वड्डा ना होवै घाट ना जाए।

जे सो वरिया जीवन खाण, खसम पछाणै सो दिन प्रवाण। दर्शन देखे दया ना होए, लय दते बिन रहै ना कोए। राजा न्याय करे हथ होए, कहे खुदाए न मानै कोए। मानस मूर्त नानक नाम, करनी कुत्ता दर फुरमान। गुरप्रसाद जाने मेहमान, ता किस दरगह पावे मान। आसा महला पहला, जेता शब्द सोरत तुन तेती। जेता रूप काया तेरी, तू आपे रसना आपे बसना। अवरना दूजा कहो माई, साहिब मेरा एको है।

पे नजर करे, जो किश करना सो कर रहा है, अवर ना करना जाई, जैसा वरता तैसो कही है, सब तेरी वड़ियाई। कल कल वाली माया मन मीठा, मन मत वाला पीवत रहै, आपे रूप करे बो भांति, नानक बपड़ा एव कह। आसा महला पहला, वाजा मत पखाव जपाओ, होए अनंत सदा मन चाओ, एहा भगते हो तपताओ, इतरंग नाचाओ रख रख पाओ। पूरे ताल जाने साला, होर नचना खुशिया मनमा रहाओ, सत संतोख वजै दोए ताल, पैरी वाजा सदा निहाल, रागनाथ नहीं दूजा पाओ, इतरंग नाचाओ रख रख पाओ। भौ फेरी होवे मन चीत, बहंदिया उठद्या नीता नीट, लेटन लेट जाने तन सुआहो, इतरंग नाचो रख रख पाओ। सिख सभा दीख्या का पाओ, गुरमुख सुनना साचा नाओ, नानक आखण वेरा वेर, इतरंग नाचो रख रख पैर। आसा महला पहला, पौन उपाय धरी सब धरती, जल अग्नि का बंध किया, अंदले दहसर मूड कटाया, रावण मार क्या वड्डा पया। क्या उपमा तेरी आखी जाए, तू सर्बे पूर रहया लिवलाए रहाओ। जियो पाए जुगत हथ कीनी, काली नथ क्या वड्डा पया, किस तू पुरख जोरू कौन कही है, सर्ब निरंतर रव रहा। नाल कुटंब साथ वरदाता, ब्रह्मा पालन सृष्ट गया, आगे अंतरा पायो ताका, कंस छेद क्या वड्डा भया। रतन उपाए तरे खीर मथिया, होर पखलाए जे असी किया, कह नानक छपै क्यों छपया, एकी एकी वंड दिया। आसा महला पहला, कर्म कर तूत बेल बिस्थारी, राम नाम फल हुआ, तिस रूप ना रेखा नाह दवाजै, शब्द निरंजन किया। करे वख्याण जाने जे कोई, अमृत पीवै सोई रहाओ, जिन पिया से मस्त पहे है, टूटे बंधन फाहे। ज्योति ज्योत समाणी पीतर, ता छोड़े माया के लाहे, सर्व ज्योत रूप तेरा देखिया, सगल पवन तेरी माया, रारे रूप निरालम बैठा, नजर करे विच छाया। बीणा शब्द वजावे जोगी, दर्शन रूप अपारा, शब्दा नहद सो सौ राता, नानक कह विचारा। आसा महला पहला, मैं गुण गल्ला के सिर पार, गली गल्ला सिरजनहार, खाना पीना हसना बाद, जब लग हृदय न आवे याद, तौ प्रवाह के ही क्या कीजे, जन्म जन्म किश ली जी ली जय रहाओ। मन की मत मता गल मता, जो किश बोली है सब खतो खता, क्या मोहल कीचे अरदास, पाप पुंद साखी पास, जैसा तू करे तैसा को होए, तुझ बिन दूजा नाही कोए, जे ही तू मत दे ते ही को पावे, तुझे आपे पावे तवे चलावे। राग रतन परिया परवार, तिस विच उपजै अमृत सार, नानक करते कहो धन माल, जे को आखे हो बिचार। आसा महला पहला, कर कृपा अपने घर आया, तामिल सखिया काज रचाया, खेल देख मन आनंद भया, शह भी आहने आया। गावो गावो कामणी बबेक विचार, हमरे घर आया जग जीवन पतार रहाओ। गुरु द्वारे हमरा भी आहो जे होवा, जा सह मिलिया ता जानिया, तेहो लोका मैं शब्द रव्या है, आप गया मन मानिया। अपना कार्ज आप सवारे, होरन कार्ज ना होई,
ਜਿਤ ਕਾਰਜ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦਇਆ ਧਰਮ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਬੂਝੈ ਕੋਈ ਭਣਤ ਨਾਨਕ ਸਭਨਾ ਕਾ ਭਰੇ ਕੋ ਸੋਏ ਜਿਸਨੋ ਨਦਰ ਕਰੇ ਸਾ ਸੁਹਾਗਣ ਹੋਏ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਗ੍ਰਿਹ ਬਨ ਸੰਸਰ ਸਹਿ ਸੁਭਾਏ ਦੁਰਮਤ ਗਤ ਪੈ ਕੀਰਤ ਠਾਏ ਸਚ ਪੌੜੀ ਸਾਚੋ ਮੁਖ ਨਾਉ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਪਾਇ ਰਹੀ ਥਾਉ ਮਨ ਚੂਰੇ ਖੜ ਦਰਸ਼ਨ ਜਾਣ ਸਰਬ ਜੋਤ ਪੂਰਨ ਭਗਵਾਨ ਰਹਾਉ ਅਧਿਕ ਤਿਆਸ ਭੇਖ ਬਹੁ ਕਰੈ ਦੁਖ ਵਿਖਿਆ ਸੁਖ ਤਨ ਪਰ ਹਰੈ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅੰਤਰ ਧਨ ਹਿਰੈ ਦੁਬਦਾ ਛੋੜ ਨਾਮ ਨਿਸਤਰੈ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹਣ ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਸਖਾ ਸੈਨ ਪ੍ਰੇਮ ਗੋਬਿੰਦ ਆਪੇ ਕਰੇ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਤਨ ਮਨ ਹਰ ਪੈ ਆਗੈ ਜਿੰਦ ਝੂਠ ਵਿਕਾਰ ਮਹਾਂ ਦੁਖ ਦੇਹੇ ਭੇਖ ਵਰਨ ਦਿਸੈ ਸਭ ਖੇਹੇ ਜੋ ਪਜੈ ਸੋ ਆਵੈ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਅਸਰ ਨਾਮ ਰਜਾਏ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਏਕੋ ਸਰਵਰ ਕਮਲ ਅਨੂਪ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸੈ ਪਰਮਲ ਰੂਪ ਉਜਲ ਮੋਤੀ ਚੁਗੈ ਹੰਸ ਸਰਬ ਕਲਾ ਜਗਦੀਸੈ ਅੰਸ ਜੋ ਦਿਸੈ ਸੋ ਉਪਜੈ ਬਿਨਸੈ ਬਿਨ ਜਲ ਸਰਵਰ ਕਮਲਾਂ ਦਿਸੈ ਰਹਾਉ ਬਿਰਲਾ ਬੂਜੈ ਪਾਵੈ ਭੇਦ ਸਾਖਾ ਤੀਨ ਕਹਿ ਨਿਤ ਬੇਦ ਨਾਦ ਬਿੰਦ ਕੀ ਸੁਰਤ ਸਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਏ ਮੁਕਤੋ ਰਾਤੋ ਰੰਗ ਰਵਾਤੋ ਰਾਜਨ ਰਾਜ ਸਦਾ ਬਿਕਸੰਤੋ ਜਿਸ ਤੂੰ ਰਾਖੈ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਬੂੜਤ ਪਾਹਨ ਤਾਰੈ ਤਾਰ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਮੈਂ ਜੋਤ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ ਉਲਟ ਭਈ ਕਰ ਕਰ ਮੈਂ ਆਣਿਆ ਅਹਿਨਸ ਭਗਤ ਕਰੇ ਲਿਵ ਲਾਏ ਨਾਨਕ ਤਿਨਕੈ ਲਾਗੈ ਪਾਏ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਗੁਰਮਤਿ ਸਾਚੀ

क्या देखा सूझ बूझ ना पावे, बिन नावे मंत्र पित ना आवे। जो जन्मे से रोग व्यापे, हमें माया दुख संतापे, से जन बांचे जो प्रभ राखे, सतगुर सेव अमृत रस चाखे। चलतो मन राखे अमृत चाखे, सतगुर सेव अमृत शब्द पाखे। साचे शब्द मुक्त गत पाए, नानक विचों आप गवाए, आसा महला पहला। जो तिन किया सो सच थिया, अमृत नाम सतगुर दिया। हृदय नाम नाही मन भंग, अंध नाल प्यारे संग। हर जियो राखो अपनी सरनाई, गुर प्रसादी हर रस पाया। नाम पदार्थ नवनिध पाई रहाओ, कर्म धर्म

हर वार जिन पाया धन नारी हर सिउ राती शब्द विचारी आप तरै संगत कुल तारै सतगुर सेव तत् विचारै हमरी जात पत सजनाओ कर्म धर्म संजम सत पाओ नानक बख्से पूछना होए दूजा मेटै एको सोए आसा महला पहला एक आवै एक जावै आई एक हर राते रहै समाई एक धरन गगन में ठावर ना पावै से कर्महीन हर नाम ना त्यावै गुर पूरे ते गत मित पाई एहो संसार बिखवत अत भौजल गुर शब्दी हर पार लंघाई रहाओ जिनको आप लय प्रमेल तिनको काल न साकै पेल गुरमुख निर्मल रहै प्यारे ज्यो जल अंब उपर कमल निरारे बुरा भला कहो किसनो कहियै दिसै ब्रह्म गुरमुख सच लहियै अकथ कथो गुरमत विचार मिल गुर संगत पावो पार शास्त वेद सिमरत बहु भेद अठसठ मजन हर रस रेद गुरमुख निर्मल मैल ना लागै नानक हिरदै नाम वड्डे तुर भागै आसा महला पहला निम्न उपाय लगो गुरे अपने आत्म राम ने हारिया करत विचार हिरदै हर रविया हिरदै देख विचारिया बोलो राम करे निस्तारा गुर प्रसाद रतन हर लाभै मिटै ज्ञान होए उजियारा रहाओ रवनी रवै बंधन नहीं टूटै विच हमै भरम ना जाई सतगुर मिलै ता हमै टूटै ता को लिखै पाई हर हर नाम भगत प्रिया प्रीतम सुख सागर ओर धारे भगत वछल जग जीवन दाता मत गुरमत हर निस्तारे मन स्यों जूझ मरै प्रपाए मनसा मनै समाए नानक कृपा करे जग जीवन सहज पाए लिवलाए आसा महला पहला किसको कह सुनावै किसको किस समझावै समझ रहे किसे पढ़ावै पढ़ गुण बूझे सतगुर शब्द संतोख रहे ऐसा गुरमत रमत शरीरा हर पज मेरे मन गहर गंभीरा रहाओ अनत तरंग भगत हर रंगा अंधन सूचे हर गुण संगा मिथ्या जन्म

सो प्रभ दूर नाही प्रभ तू है। सब जग देखिया माया छाया, नानक गुरमत नाम ते आया। आसा महला पहला ते तुका, कोई भीखक भीख्या खाए, कोई राजा रहा समाए। किसी मान किसै अपमान, टायो सारे तरे त्यान। तुते वड्डा

मन का अंधला माया का बंद, खीन खराब होवे नित कंद, खान जीवन की बहुती आस, लेखे तेरा एहसास गिरास, अहन इस अंधले दीपक दे, पहो जल डूबत चिंत करे, कह सुने जो माने नाओ, हाँ बलिहारे ता कह जाओ, नानक करे अरदास, जियो पिंड सब तेरे पास, जा तू देह जपी तेरा नाओ, दरगह बैसन होवे थाओ, जा तुद भावे ता दुम जाए, ज्ञान तन मन वसे आए, नदर करे ता सतगुर मिले, प्रणवत नानक पव जल तरै, आसा महला पहला पंच पदे, दुद बिन तेन पंख बिन पंखी, जल बिन उत्पुज काम नाही, क्या सुल्तान सलाम विहूणा, अंधी कोठी तेरा नाम नाही, की विसरै दुख बहुता लागै, दुख लागै तू विसर नाही, रहाओ अखी अंध जीव रस नाही, कन्नी पवन ना वाजै, चरनी चलै पजूता आगै, विनसे वाफल लागै, अखर बिरख बाग पोए चोखी, संचित पाओ करेही, सबना फल लागै नाम एको, बिन कर्मा कैसे लेही, जेते जीते ते सब तेरे, विण सेवा फल किसै नाही, दुख सुख पाना तेरा होवै, विण नावै जियो रह नाही, मत विच मरण जीवन होर कैसा, जा जीवा ता जुगत नाही, कह नानक जीवा ले जिया, जय पावै तै राख तुही, आसा महला पहला, काया ब्रह्मा मन है तोती, ज्ञान जनेऊ त्यान कुसपाती, हर नामा जा जाचो नाओ, गुरप्रसादी ब्रह्म सुमाओ, पांडे ऐसा ब्रह्म विचार, नामे सोच नामे पढ़ाओ, नामे चज्याचार रहाओ, बाहर जनेऊ जिचर जोत है नाल, तोती टिक्का नाम संभाल, एथे उथे निभी नाल, विणना वै होर कर्म ना पाल, पूजा प्रेम माया प्रजाल, एको वेखो अवरना पाल, चिन्ह तत् गगन दस द्वार, हर मुख पाठ पढ़े विचार, भोजन पाओ परम पाओ भागै, पाहरू राशब चोर ना लागै, तिलक लाट जाने प्रवेक, बुझे ब्रह्म अंतर बबेक, आचारी नहीं जीतिया जाए, पाठ पढ़े ने कीमत पाए, अष्ट दसी चहु भेद ना पाया, नानक सतगुर ब्रह्म दिखाया, आसा महला पहला, सेवक दास भगत जन सोई, ठाकर का दास गुरमुख होई, जिन सिर साजी तिन फनगोई, तिस बिन दूजा अवर ना कोई, साच नाम गुर शब्द विचार, गुरमुख साचे साचे दरबार रहाओ, सच्चा अर्ज सच्ची अरदास, मैली खसम सुने साबास, सच्चे तख्त

मन्ने हुक्म सो परगट जाए, सच निशाने ठाक ना पाए। पंडित पढ़े वखाणे वेद, अंतर वस्तना जाने भेद। गुरबिन सोजी बूजना होए, साचा रव रहे या प्रभ सोए। क्या हो आखा आख वखाणी, तू आपे जाने सर्व विडाणी। नानक एको दर्दी बाण, गुरमुख साच तहां गुदराण। आसा महला पहला, काची गागर दे दोहेली। उपजे बिनसै दुख पाई, एहो जग सागर दुत्तर क्यों तरी है। बिन हर गुर पार ना पाई, तुझ बिन अवर ना कोई मेरे प्यारे। तुझ बिन अवर ना कोई हरे, सरबी रंगी रूपी तू है। तिस बख्शे जिस नदर करे रहाओ, सास बुरी घर वास ना देवे। फिर से मिलना दे बुरी, सखी साजनी के हों चरण सरेवा। हर गुर कृपा ते नदर धरी, आप विचार मार मन देखिया। तुम सा मीत ना यवर कोई, जो तू राखै तिवि रहना। दुख सुख देवे करै सोई, आसा मनसा दो बिनास्त। त्रिगुण आस निरास पई, तुरिया अवस्था गुरमुख पाई है। संसवा की ओट लही, ज्ञान ध्यान सगले सब जप तप। जिस हर हिरदय अलाख्या पेवा, नानक राम नाम मन राता। गुरमत पाए सहज सेवा, आसा महला पहला। पंच पदे मोह कुटुंब मोह सबकार, मोह तुम तजो सगल वेकार। मोह अर भरम तजो तुम वीर, साच नाम हृदय रवै शरीर। रहाओ सच नाम जान नव निद पाई, रोवै पूत न कल्पै माई। एत मोहे डुबा संसार, गुरमुख कोई उतरै पार। एत मोहे

कहत नानक ऐसी मत आवै ताको सच्चे सच समावै आसा महला पहला दो पदे तित सरवरड़ पहिले निवासा पानी पाव कितने किया पंकज मोह पग नहीं चाल हम देखा तह डूबिया ले मन एक ना चेत समूड मना हर बिसरत तेरे गुण गलिया रहा हो नाह जति सती नहीं पड़िया मूर्ख मुगदा जन्म पया प्रणवत नानक तिनकी सरना जिंतु नाही विसरिया आसा महला पहला छे घर छे गुर छे उपदेश गुर गुर एको वेसानेक जय कर करते कीर्त होए सो कर राख वडाई तो हे रहाओ विसोए चसिया घड़िया पहरा थिती वारी माहो पया सूरज एको रुत अनेक नानक करते के केते वेस एको वंकार सतगुर प्रसाद आसा कर तीजा महला पहला लख लस्कर लख वाजे नेजे लख उठ करे सलाम लखा उपर फरमाइश तेरी लख उठ राख मान जा पत लेख ना पवे ता सब निरा फल काम हर के नाम बिना जग तंदा जे बहुता समझाई है भोला पीसो अंदो वंदा रहाओ लख खटी है लख संजी है खाजै लख आवै लख जाहे जा पत लेखै ना पवै ता जी किथै फिर पाहे लख शास्त समझावनी लख पंडित पढ़ै पुराण जा पत लेखै ना पवै ता सबे को प्रमाण सच नाम पच उपजै कर्म नाम करतार अहनस हृदय जे वसै नानक नदरी पार आसा महला पहला दीवा मेरा एक नाम दुख विच पाया तेल उन चानन ओह सोखिया चूका जम स्यों मेल लोका मत को फकड़ पाए लख मड़िया कर एक ठे एक रतीले पाहे रहाओ पिंड पतल मेरी केसो किरिया सच नाम करतार एथे उथे आगे पाचे एहो मेरा आधार गंग बनारस सिफत तुम्हारी नावे आत्मराओ सच्चा नामन तांथी है जा एनस लागे पाओ एक लोकी होर शमशरी ब्राह्मण वट पिंड खाए नानक पिंड बख्शीस का कबू ने खूट सना है आसा कर चौथा महला पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद देवतियां दर्शन कहताई दुख भूख तीर्थ किए जोगी जति जुगत मैं रहते कर कर पगवे भेख पए तौ कारण साहेबा रंग रते तेरे नामा नेका रूपानंता कहन ना जाही तेरे गुण के ते रहाओ दर कर मैला हस्ती घोड़े छोड़वे लायत देश गए पीर पे कांबर सालक साधक छोड़ी दुनिया थाए पए सात सहज सुख रस कस तजिया ले कापड़ छोड़े चमड़ लिए दुखिए दर्द वंद दर तेरे नाम रते दरवेस पए खलड़ी खपरी लकड़ी चमड़ी सिखा सूत तोती कीनी तू साहेब हौ सांगी तेरा प्रणवै नानक जात कैसी आसा कर पंजवा महला पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद पीतर पंच गुप्त मन वासे थिर न रह जैसे पवै उदासे मन मेरा दयाल से ती थिर न रह।

एको ओंकार सतगुर प्रसाद आसा कर छेवा महला पहला मन मोती जे गहना होवै पौन होवै सूत तारी खिमा सिंगार कामन तन पहरै रावै लाल प्यारी लाल बहुगुण कामन मोही तेरे गुण होहे ना अवरी रहाओ हर हर हर कंठ ले पहरै दामोदर दंत ले कर कर करता कंगन पहरै इन बिद चित तेरे मद सूदन कर मुंदरी पहरै परमेसर पट ले तीरज तीरज तड़ी बंधावै कामण श्री रंग सुरमा दे मन मंदर जे दीपक जाले काया सेज करे ज्ञान राओ जब से जय आवै ता नानक भोग करे आसा महला पहला कीता होवै करे कराया तिस क्या कहिए भाई जो किश करना।

राए ज्ञान रतन सब सोजी होए गुर प्रसाद ज्ञान बिनासै अंधन जागै वेखै सच सोए रहाओ मोह गुमान गुर शब्द जलाए पूरे गुर ते सोजी पाए अंतर महल गुर शब्द पछाणै आवन जान रहै थिर नाम समाणै जम्मण मरना है संसार मन मुखा चेत।

मैं मन तन प्रेम महा बैराग, सतगुर पुरख पाया वडभाग, दूजे पाए पवै बिख माया, भागहीन नहीं सतगुर पाया, अमृत हर रस हर आप पी आया, गुरपुरे नानक हर पाया, आसा महला चौथा, मेरा मन तन प्रेम नाम आधार, नाम जपी नामो सुखसार, नाम जपो मेरे साजन सहना।

मैं प्रेम रस पाया, दुर्जन मारे वैरी संघारे, सतगुर मोको हर नाम देवाया रहाओ। प्रथमे त्यागी हम मैं प्रीत, द्वितीया त्यागी लोगा रीत, त्रै गुण त्याग दुर्जन मीत समाने, तुरिया गुण मिल साध पिछाने, सहज गुफा मैं।

दुख रोग भय गतंते मन निर्मल हर हर गुण गाए भय आनंद मिल साधु संग अब मेरा मन कत ही ना जाए तपत बुझी गुर सबदी माए बिनस गयो ताप सब सहसा गुर सीतर मिलियो सह सुभाए रहाओ तावत रहे एक एक बुझिया आए बसे अब नहीं चल थाए जगतो दारण संत तुम्हारे दर्शन पेखत रहे अगाए जन्म दोख परे मेरे पछ अब पकड़े निश्चय।

हर हर राय। नाम तेरा जब जीवै नानक ओत पोत मेरा संग सहाय। आसा महला पंजवा अरड़ावै बिललावै निंदक पार ब्रह्म परमेश्वर बिसरिया। अपना कीता पावै निंदक रहाओ। जे कोई उसका संगी होवै नाले लय सदावै अनहोंदा अजगर भार उठाए। निंदक अग्नि माहे जलावै परमेश्वर कै द्वारे जे होए बतीतै। सो नानक आख सुनावै भगत जना कौ उसदा आनंद है। हर कीर्तन गाए बिकसावै आसा महला पंजवा। जौ मैं कियो सगल सिंगारा तौ पी मेरा मन ना पतियारा। अनक सुगंधत तन मैं लावो ओह सुख दिल समान नहीं पावो। मन मैं चितवो ऐसी आसाई प्रे देखत जीवो मेरी माई। माई कहां करो यो मन ना धीरे प्रे प्रीतम बैराग हिरै रहाओ। वस्त्र पे भूखन सुख बहुत बसेख है ओए पी जानो कितै ना लेखै। पत सोबार मान महातो आज्ञाकारी सगल जगत। गृह ऐसा है सुंदर लाल प्रभावा ता सदा निहाल। बिंजन भोजन अनक प्रकार रंग तमासे बहुत विस्तार। राज मिलख अर बहुत फुरमाइस मन नहीं त्रापै तृष्णा ना जायस। बिन मिलबे एहो दिन ना बिहावै मिले प्रभु ता सब सुख पावै। खोजत खोजत सुनी एह सोए साध संगत बिन तरे हो ना कोए। जिस मस्तक भाग तिन सतगुर पाया पूरी आसा मंत्र बताया।

वेमो ताजा वे प्रवाहो नानक दास कहो गुरवाहो आसा महला पंजवा हर छोड़ होश रस माता घर मैं वस्त बाहर उठ जाता सुनी ना जाई सच अमृत काथा रार करत झूठी लग गाथा रहाओ वजो साहेब का से बिरानी ऐसे गुनैशा देव प्राणी तेस्यों लूक जो सद ही संगी कामना आवै सो फिर मंगी कहो नानक प्रभ दीन दयाला ज्यो पावै त्यों कर प्रतपाला आसा महला पंजवा जी प्राण तन हर को नाम इहां उहां उन संग काम बिन हर नाम अवर सब थोरा तृप्तिया गावै हर दर्शन मन मोरा रहाओ भगत भंडार गुरबाणी लाल गावत सुनत कमावत निहाल चरण कमल स्यों लागो मान सतगुर तूठे कीनो दान नानक कहो गुर दीख्या दीन प्रभ अबनासी घट घट चीन आसा महला पंजवा आनंद बिनोद परे पुर धारिया अपना कार्य आप सवारिया पूर समग्री पूरे ठाकर की भरपुर धार रही सोभ जा की रहाओ नाम निदान।

साथ पूरा गुरपूरी बणत बनाई नानक भगत मिली वड़ियाई आसा महला पंजवा गुर कै शब्द बनावो इहो मन गुर का दर्शन संचो हर तन ऊतम मत मेरे हृदय तू आओ त्यावो गावो गुण गोविंदा अत प्रीत मोह लागे नाओ रहाओ त्रिपत गावन साचे नाए अठसठ मज्जन संत तू राए सब मैं जानो करता एक साध संगत मिल बुद्ध बबेक दास सगल का छोड़ अभिमान नानक कहो गुर दीनो दान आसा महला पंजवा बुद्ध परगास पई मत पूरी ताते बिरसी दुरमत दूरी ऐसी गुरमत पाई अले बूढ़त कोर अंध कु मैं निकस्यो मेरे भाई रे रहाओ महा अगाह अग्न का सागर गुर बोहित तारे रतनागर दुत्तर अंध बिख मेह माया गुर पूरे प्रगट मार्ग दिखाया जाप ताप कश युगत न मोरी गुर नानक शरणागत तोरी आसा महला पंजवा ते पदे दो हर रस पीवत सद ही राता आन रसा खिन मैं ले जाता हर रस के माते मन सदा आनंद आन रसा मैं व्यापे चिंद हर रस पीवै अल मस्त मतवारा आन रसा सब होछे रे रहाओ हर रस की कीमत कही ना जाए हर साधु हर सुमाए लाख करोरी मिले ना के हे जिसे प्राप्त तिस ही दे हे नानक चाख पए बिस्माद नानक गुरते आया साध ईत ऊत कत छोड़ ना जाए नानक गीदा हर रस माहे आसा महला पंजवा काम क्रोध लोभ मोह मिटावे छुटके दुरमत अपनी तारी होए निमाणी सेव कुमावे ता प्रीतम होवे मन प्यारी सुन सुंदर साधु बचन उधारी दुख भूख मिटै तेरो सहसा सुख पावे तू सुख मन नारी रहाओ चरण पखार करो गुर सेवा आत्म सुध बिख त्यास निवारी दासन की होए दा दासरी ता पावे सो बाहर द्वारी इही आचार इही ब्योहारा आग्या मान भगत होए तुम्हारी जो एहो मंत्र कमावे नानक सो भौजल पार उतारी आसा महला पंजवा दो पदे पही प्राप्त मानुख दे हुरिया गोविंद मिलन की एह तेरी बरिया अवर काज तेरा कितै ना काम मिल साध संगत पज केवल नाम सरंजाम लाग पवजल तरन कै जन्म बिरथा जात रंग माया कै रहाओ जप तप संजम तर्म ना कुमाया सेवा साधना जान्या हर राया कहो नानक हम नीच कर्मा सरन परे की रखो शर्मा आसा महला पंजवा तुझ बिन अवर नाही मैं दूजा तू मेरे मन माही तू साजन संगी पर मेरा काहे जी डराही तुमरी ओढ़ तुम्हारी आसा बैठत उठत सोबत जागत विसर नाही तू सास गिरासा रहाओ राख राख सरन प्रभ अपनी अग्न सागर विकराला नानक के सुखदाते सतगुरु हम तुमरे बाल गोपाला आसा महला पंजवा हर जन लीने

राम नाम गुण गाए, डाकी कोचत कछु ना लागै, चरण कमल सरनाए। संत प्रसाद भय कृपाला, होए आप सहाय, गुण निधान नित गावे नानक, सहसा दुख मिटाए। आसा महला पंजवा, औख दिखायो हर को नाओ, सुख पाए दुख बिनसिया थाओ। ताप गया बचन गुरपूरे, अंध पयासा मिटे विसूरे रहाओ। जी जंत सगल सुख पाया, पार ब्रह्म नानक मन ध्याया। आसा महला पंजवा, बांशत नाही सो बेला आई, बिन हुक्मै क्यों बुझै बुझाई। ठंडी ताती मिट्टी खाई, ओहना बाला बूढ़ा पाई। रहाओ नानक दास सा सरनाई, गुरप्रसाद पौ पार पराई। आसा महला पंजवा, सदा सदा आया तुम परगास, सास संगत हर चरण निवास। राम नाम नित जप मन मेरे, शीतल सां सदा सुख पावै, किल विख जाहे सबे मन तेरे। रहाओ कहो नानक जाके पूर्ण कर्म, सतगुर पेटे पूर्ण पार ब्रह्म। दूजे करके चौतीस, आसा महला पंजवा। जा का हर स्वामी प्रबेली, पीड़ गई फिर नहीं दुहेली। रहाओ कर कृपा चरण संग मेली, सुख सहज आनंद सुहेली। साध संग गुण गाया तोली, हर सिमरत नानक पई अमोली। आसा महला पंजवा, काम क्रोध माया मत मद सर, ए खेलत सब जुए हारे। सत संतोख दया धर्म सच, ए अपने गृह भीतर वारे। जन्म मरण चुके सब पारे, मिलत संग पयो मन निर्मल। गुरपुर लेखन मैं तारे, रहाओ सब की रेन होए रह मनुआ। सगले दिसे मीत प्यारे, सब मध्य रव्या मेरा ठाकर। दान दे सब जी सुमारे, एको एक आप एक एक है। एक है सगला पा सारे, जप जप होए सगल साथ जानो। एक नाम ते आए बहुत उधारे। गहर गंभीर बेअंत गुसाई, अंत नहीं किश पारा वारे। तुमरी कृपा ते गुण गावे नानक, त्याए त्याए प्रभ को नमस्कारे। आसा महला पंजवा, तू बेअंत अवगत या गोचर, एहो सब तेरा आकार। क्या हम जंत करे चतराई, जा सबके तुझे मजार। मेरे सतगुर अपने बालक राखो लीला तार। देह सुमत सदा गुण गावा, मेरे ठाकर अगम अपार। रहाओ जैसे जनन जठर मैं प्राणी, ओरे ता नाम आधार। आनंद करे साथ साथ सुमारे, ना पो है अगनार। पर तन पर दारा पर निंदा, इन स्यो प्रीत निवार। चरण कमल सेवी दे अंतर, गुर पूरे कै आधार। गृह मंदिर महला जो दिसै, ना कोई संगार। जब

हर आज मिलक जोबन गृह शोभा रूपवंत जोवानी बहुत दर्ब हस्ती यार घोड़े लाल लाख बयानी आगे दरगे काम न आवे छोड़ चला अभिमानी काहे एक बिना चित लाई है उठत बैठत सोवत जागत सदा सदा हर त्याई है रहाओ महा बचित्र सुंदर।

छोड़ चलिया एक दिहाड़े, कर्म धर्म जुगत बहु करता, करने हार ना जाने, उपदेश करे आप ना कमावे, तत् शब्द ना पछाने। नांगा आयो नांगो जासी, जो हस्ती खा किशान, संत सज्जन सुनो सामीता, झूठा हो पासारा। मेरी मेरी का कर डूबे, खप खप मोए गवारा, गुरमिल नानक नाम ते आया, साच नाम निस्तारा। राग आसा कर पंजवा महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। ब्रह्म सोई सगल जगत तंद अंध, को जागे हर जन, महामोहनी मगन प्रे प्रीत प्राण, को त्यागे विरला। चरण कमलया नूप हर संत मंत, को लागे साधु, नानक साधु संग, जागे ज्ञान रंग, वडभागे कृपा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। राग आसा कर छेवां महला पंजवां, जो तुद भावे सो परवाना, सुख सहज मन सोई, करण कारण समरथ अपारा, अवर नाही रे कोई। तेरे जन रसक रसक गुण गावे, मसलत मता स्याण पजन की, जो तू करै करावे रहाओ। अमृत नाम तुम्हारा प्यारे, साध संग रस पाया, तृप्त या गाए सही जन पूरे, सुख निदान हर गाया। जा कौ टेक तुम्हारी स्वामी, ता कौ नाही चिंता, जा कौ दया तुम्हारी होई, से सह पले भगवंता। परम मोह त्रोह सब निकसे, जब का दर्शन पाया, वर्तन नाम नानक सच कीना, हर नामे रंग समाया। आसा महला पंजवा, जन्म जन्म की मल तोवै पराई, अपना कीता पावै, इहा सुख नहीं दरगै ढोई, जमपुर जाए पचावै। निंदक अहला जन्म गवाया, पहुंच ना साके काहू बाते, आगे ठौर ना पाया रहाओ। किरत पया निंदक बपरे का, क्या ओ करे बिचारा, तहां बिकूता जै कोई ना राखे, ओ किस पै करे पुकारा। निंदक की गत कत हू नाही, खसमे एवै भाणा, जो जो निंद करे संतन की, त्यों संतन सुख माना। संतां टेक तो

सब जग बौराया ना मिले सुख पाई है। क्या कही है किसे आख सुनाई है, जे कहना सो प्रभ जी पास, सब कुछ कीता तेरा वरत है, सदा सदा तेरी आस। जे देहे वडे आई ता तेरी वडे आई, एत्यो तुझे ते आओ, नानके प्रभ सदा सुखदाते, मैं तान तेरा एक नाओ। आसा महला पंजवां, अमृत नाम थुमारा ठाकर, एहो महाराज जनै पियो, जन्म जन्म चूके पह पारे, दुर्त बनास्यो परम बियो। दर्शन पेखत मैं जियो, सुनकर बचन तुम्हारे सतगुरु, मन तन मेरा ठार थियो रहाओ। तुमरी कृपा ते पयो साध संग, एहो काज तुम आप कियो, दिड़ कर चरण गहे प्रभ तुमरे, सहजे बिखिया पही खियो। सुख निदान नाम प्रभ तुमरा, एहो बनासी मंत्र लियो, कर कृपा मोहे सतगुर दीना, ताप संताप मेरा बैर गियो। धन सो मानस देही पाई, जित प्रभ अपने मिल लियो, धन सो कलयुग सा संकीर्तन गाई है, नानक नाम आधार हीओ। आसा महला पंजवां, आगे ही ते सब किश हुआ, यवर के जाने जाना, भूल चूके अपना बारक बख्शिया, पार ब्रह्म भगवाना। सतगुर मेरा सदा दयाला, मोहे दीन कौ राख लिया, काटिया रोग महा सुख पाया, हरे अमृत मुख नाम दिया रहाओ। अनक पाप मेरे पर हरिया, बंधन काटे मुक्त पहे, अंध कूप महा कोरते, बहा पकर गुर काड लिए। निरपव पय सगल पव मिटिया, राखे राखण हारे, ऐसी दात तेरी प्रभ मेरे, कार्ज सगल सवारे। गुण निदान साहिब मन मेला, शरण पया नानक सोहेला। आसा महला पंजवां, तू विसरै ता सब को लागू, चीत आवै ता सेवा, अवरना को दूजा सूजै, साचे अलख्या पेवा। चीत आवै ता सदा दयाला, लोगन क्या विचारे, बुरा भला को किसनो कहिए, सगले जी तुम्हारे रहाओ। तेरी टेक तेरा आधारा, हाथ दे तू रखै, जिस जानी ऊपर तेरी कृपा, तिस को बेपना।

कोरी। रहाओ काम क्रोध अहंकार गाखरो, संयम कौन छुट्योरी। सुर नर देव असुर त्रै गुनिया, सगलो पवन लुट्योरी। दावा यगन बहुत तृण जाले, कोई हरिया बूट रहे ओरी। ऐसो समर्थ वर्ण ना साका, ताकि उपमा जात ना कहे ओरी। काजर कोठ में पई नकारी, निर्मल वर्ण बने ओरी। महामंत्र गुरु हृदय बसेओ, अचरज नाम सुनेओरी। कर कृपा प्रभ नजर अवलोकन, अपने चरण लगाई। प्रेम भक्त नानक सुख पाया, साधु संग समाई। एको ओंकार सतगुर प्रसाद, राग आसा कर सतवा महला पंजवा। लाल चोलना तै तन सोहया, सुरजन पानी ता मन मोहया। कमन बनीरी तेरी लाली, कमन रंग तू पई गुलाली। रहाओ तुम ही सुंदर तुम्हें सुहाग, तुम कर लालन तुम कर भाग। तू सतवंती तू प्रधान, तू प्रीतम पानी तू ही सुरग्ञान। प्रीतम पानी ता रंग गुलाल, कहो नानक शुभ दृष्ट निहाल। सुन री सखी ए हमरी काल, प्रभ आप सिंगार सुवरण हार। रहाओ दूजा आसा महला पंजवा, दुख कनो जब होते दूर। अब मसलत मोय मिली हदूर, चुका निहोरा सखी सहेरी। भ्रम गया गुर पिर संग मेरी। रहाओ निकट आन प्रे से तरी, कान कड़न ते छूट परी। मंदिर मेरा सब दो जारा, आनंद बिनोदी खसम हमारा। मस्तक भाग मैं पिर कर आया, थिर सुहाग नानक जन पाया। आसा महला पंजवा, साच नाम मेरा मन लागा। लोगन स्यो मेरा ठाठा बागा, बाहर सूत सगल स्यो मौला। अलिप्त रहो जैसे जल मैं कौला। रहाओ मुख की बात सगल स्यों करता, जी संग प्रभ अपना धरता। दीस आवत है बहुत पीहाला, सगल चरण की हो मन राला। नानक जन गुर पूरा पाया, अंतर बाहर एक दिखाया। आसा महला पंजवा, पावत रलिया जोबन बलिया। नाम बिना माटी संग रलिया, कान कुंडलिया वस्त्र उडलिया। से सुखलिया मन गर्बलिया। रहाओ तले कुंचरिया सिर कनक छतरिया, हर भगत बिनाले तरन गडलिया। रूप सुंदरिया अनक स्त्रिया, हर रस बिन सब स्वाद फिकरिया। माया शलिया बिकार बिखलिया, शरण नानक प्रभ पुरख दयालिया। आसा महला पंजवा, एक बगीचा पेड़।

हुकम बूझ रंग रस माने सतगुर सेवा महा निर्वाणे जिन तू जाता सो ग्रस्त उदासी प्रवाण नामृता सोई निर्वाण जा को मिलियो नाम निधाना पंडित नानक ताका पुरख जाना आसा।

शास्त्र वेद पाप पुण्य विचार नरक स्वर्ग फिर अवतार ग्रस्त में चिंत उदास अहंकार कर्म करत जी को जंजार प्रभ कृपा ते मन वसे आया नानक गुरमुख तरी तिन माया साध संग हर कीर्तन गाई है एहो अस्थान गुरु ते पाई है रहाओ दूजा आसा महला पंजवा घर में सुख बहर फन सुखा हर सिमरत सगल बिनासे दुखा सगल सुख जा तू चित आवै सो नाम जपै जो जन तुद पावै रहाओ तन मन शीतल जप नाम तेरा हर हर जपत तह दुख डेरा हुक्म बूझै सोई परवान सास सब जा का निशान गुरपूरै हर नाम दृढ़ाया पणत नानक मेरा मन सुख पाया आसा महला पंजवा जहां पठावो तै तै जाई जो तुम देहो सोई सुख पाई सदा चेरे गोविंद गुसाई तुमरी कृपा ते तृप्त्या गाई रहाओ तुमरा दिया पैनो खाई तो प्रसाद प्रभ सुखी बलाई मन तन अंतर तुझे ते आई।

मूर्ख मुग्ध अज्ञान अविचारी, नाम तेरे की आसमन धारी। जप तप संजम कर्म ना साधा, नाम प्रभु का मन अरादा। किशु ना जाना मत मेरी थोरी, बिन मत नानक ओट प्रभ तोरी। आसा महला पंजवा, हर हर अखर।

हर माला और अंतर धार है, जन्म मरण का दुख निवार है, हृदय संभाल मुख हर हर बोले, सो जन इत उत कत न डोले, कहो नानक जो राचे नाए, हर माला तां कै संग जाए, आसा महला पंजवा, जिसका सब किश तिसका होए, तिस जन लेपना व्यापै कोए, हर का सेवक सद ही मुक्ता, जोगश करे सोई पल जन कै, अत निर्मल दास की जुगता रहाओ, सगल त्याग हर सरणी आया, तिस जन कहां व्यापै माया, नाम निदान जाके मन माहे, तिसको चिंता सपने नाहें।

उनकै संग तू गृह मैं माहर, उनकै संग तू होई है जाहर, उनकै संग तू रखी पपोल, उस बिना तू छुटकी रोल, उनकै संग तेरा मन महत, उनकै संग तुम साग जगत, उनकै संग तेरी सब थाटी, उस बिना तू होई है माटी, ओह बैरागी मरे ना जाए, हुक्मे बांदा कार कमाए, जोड़ विछोड़े नानक थाप, अपनी कुदरत जाने आप, आसा महला पंजवा, ना ओह मरता ना हम डरिया, ना ओह बिनसे ना हम कड़िया, ना ओह निरतन ना हम भूखे, ना उस दुख ना हम कौ दुखे, अवरना को मारन वारा, जियो हमारा जियो देनहारा रहाओ, ना उस बंधन ना हम बांधे, ना उस तंदा ना हम तांदे, ना उस मैल ना हम कौ मैला, उस आनंद ता हम सदकेला, ना उस सोच ना हम कौ सोचा, ना उस लेपना हम कौ पोचा, ना उस भूख ना हम कौ तृष्णा, जा हो निर्मल ता हम जचना, हम किश नाही एक ओही, आगे पाछे एको सोई, नानक गुरखोए परम पंगा, हम ओए मिल होए एक रंगा, आसा महला पंजवा, अनक पात कर सेवा करिए, जियो प्रांतन आगे धरिए, पानी पखा करो ता जब मान, अनक बार जाइए कुर्बान, साई सुहागन जो प्रभाई, तिसके संग मिलो मेरी माई रहाओ, दासन दासी की पनिहार, उनकी रण बसै जी नाल, माथे भागता पावो संग, मिले स्वामी अपने रंग, जाप ताप देवो सब नेमा, कर्म धर्म अर्पो सब होमा, गर्भ मोह तज हो बोरेन, उनके संग देखो प्रभ नैन, निमख निमख एही आरा दो, दिन सरैन ए सेवा सादो, पहे कृपाल गोपाल गोबिंद, साध संग नानक बख्शिंद, आसा महला पंजवा, प्रभ की प्रीत सदा सुख होए, प्रभ की प्रीत दुख लगे ना कोए, प्रभ की प्रीत हम मैं मल खोए, प्रभ की प्रीत सद निर्मल होए, सुनो मीत ऐसा प्रेम प्यार, जी प्राण कटकटे आधार रहाओ, प्रभ की प्रीत पय सगल निदान, प्रभ की प्रीत हृदय निर्मल नाम, प्रभ की प्रीत सद सोभावंत, प्रभ की प्रीत समिटी है चिंत, प्रभ की प्रीत एहो पवजल तरै, प्रभ की प्रीत जमते नहीं डरै, प्रभ की प्रीत सगल उधार है, प्रभ की प्रीत चले संगार है, आपो कोई मिले ना भूले, जिस कृपाल तिस साध संग कूले, कहो नानक तेरे कुर्बान, संत ओट प्रभ तेरा तान, आसा महला पंजवा, भूपत होए कै राज कमाया, कर कर अनर्थ बिहाजी माया, संचत संचत थैली कीनी, प्रभ उसते डार अवर कौदीनी, काच गगरिया

संगा लश्कर जोड़े किया संबाहा निक्षा फूकता होए गए सुहा ऊंचे मंदिर महल अरानी हस्त घोड़े जोड़े मन पानी वड परवार पूत अरतिया मोहे पचे पच अंधा मुआ जिने उपाहा तिने बिनाहा रंग रसा जैसे सुपनाहा सोई मुक्ता तिस राजमाल नानक दास जिस खसम दयाल आसा महला पंजवा इन स्यों प्रीत करी कनेरी जो मिली है तो वदै वधेरी गल चमड़ी जो छोड़ै नाही लाग छटो सतगुर की पाई जग मोहनी हम त्याग गवाई निर्गुण मिलियो वजी वधाई रहाओ ऐसी सुंदर मन कौ मोह बाट काट करे बन बन जो है मन तन लागे होए कै मीठी गुरप्रसाद मैं खोटी डीठी अगर उसके वड्डे ठगाऊ छोड़ै नाही बाप ना माऊ मेली अपने उनले बांधे गुर कृपा ते मैं सगले साधे अब मोरे मन पया आनंद पहु चूका टूटे सब फंद कहो नानक जा सतगुर पाया कर सगला मैं सुखी बसाया आसा महला पंजवा आठ पहर निकट कर जाने प्रभ का किया मीठा माने एक नाम संतन आधार होए रहे सब की पगशार संत रहत सुनो मेरे भाई ओवा की महिमा कथन ना जाई रहाओ वर्तन जा कह केवल नाम अनंद रूप कीर्तन विश्राम मित्र सत्र जा कह एक समान प्रभ अपने बिन अवर ना जाने कोट कोट अग कट नहारा दुख दूर करन जी के दातारा सूर बीर बचन के बली कौला बपरी संती शली ताका संग बांछै सुरदेव अमोग दर्श सफल जा की सेव कर जोड़ नानक करे अरदास मोहे संत है टहल दीजै गुणतास आसा महला पंजवा सगल सुख जप एक है नाम सगल धर्म हर के गुणगाम महापवित्र साध का संग जिस पेड़ लागे प्रभ रंग गुरप्रसाद ओ आनंद पावे जिस सिमरत मन होए परगासा ताकि गत में तो कहन ना जावे रहाओ वर्त नेम मज्जन तिस पूजा वेद पुराण तिन सिमरत सुनीजा महापुनीत जाका निर्मल थान साध संगत जाके हर हर नाम प्रगट्यो सो जन सगले भवन पतत पुनीत ताकि पगरेन जाको पेट्यो हर हर राय ताकि गत में तो कथ ना जाए आठ पहर कर जोड़ते आवाओ उन साधा का दर्शन पावाओ मोहे गरीब को लेहोर लाए नानक आए पै सरनाए आसा महला पंजवा आठ पहर उद के सुनानी सद ही भोग लगाए सुगयानी बिरथा काहू छोड़ै नाही बहर बहर तिस लागै पाई साल ग्राम हमारे

का सदा बैकुंठ, जहां का चवर सब ऊपर झूलै, ता का धूप सदा पर फुलै। काट काट संपट है रे जाका, अपग सभा संग है साधा। आरती कीर्तन सदा आनंद, महिमा सुंदर सदा बेअंत। जिसे प्राप्त तिसही लहना, संत चरण ओ आयो सरना। हाथ चढ़ो हर साल गिराम, कहो नानक गुर की नो दान। आसा महला पंजवा पंचपदा, जे पेंड लूटी परिहारी, सो मार्ग संतन दूरारी। सतगुर पूरे साच कहया, नाम तेरे की मुक्ते बिथी। जम का मार्ग दूर रहया रहाओ, जह लालच जागाती काट। दूर रही ओ जनते बाट, जह आवटे बहुत घन साथ। पार ब्रह्म के संगी साध, चित्र गुप्त सब लिखते लिखा। भगत जना कौ दृष्ट ना पेखा, कौ नानक जे सतगुर पूरा। वाजे ता कै अरहद तूरा, आसा महला पंजवा दो पदा। साधु संग सिखायो नाम, सर्ब मनोरथ पूर्ण काम। बुझ गई तृष्णा हर जसे अगाने, जब जब जीवा सारंग पाने। करन करावन सरन परया, गुर प्रसाद सहज कर पाया। मिटिया अंधेरा चंद चढ़िया रहाओ, लाल जवेहर भरे भंडार। तोट ना आवै जप निरंकार, अमृत शब्द पीवै जन कोए। नानक ताकी परम गत होए, आसा कर सतवा महला पंजवा। हर का नाम हृदय नित त्याई, संगी साथी सगल तराई। गुर मेरे संग सदा है नाले, सिमर सिमर ते सदा समाले रहाओ। तेरा किया मीठा लागै, हर नाम पदार्थ नानक मांगै। आसा महला पंजवा, साधु संगत तरिया संसार। हर का नाम मन आधार, चरण कमल गुरदेव प्यारे। पूजे संत हर प्रीत प्यारे रहाओ, जा कै मस्तक लिखिया भाग। कहो नानक ता का थिर सोहाग, आसा महला पंजवा। मीठी आग्या पिर की लागी, सौकन कर की कंत त्यागी। प्रे सोहागन सिंगार करी, मन मेरे की तपत हरी। भलो पयो प्रे कहया मानिया, सुख सहज इस घर का जानिया रहाओ। हौ बंदी प्रे खिजमतदार, ओह अविनाशी अगम्या पार। ले पखा प्रे चलो पाए, पा गए पंच दूत लावे। ना मैं कुल ना शोभावंत, क्या जाना क्यों पानी कंत। मोहे अनी मोहे अनाथ गरीब ने मानी, कंत पकर हम कीनी रानी। जब मुख प्रीतम साजन लागा, सुख सहज मेरा तन सोहागा। कहो नानक मोरी पूर्ण आसा, सतगुर मेली प्रभ गुणतासा।

उन सब जग खाया हम गुर राखे मेरे भाई रहाओ। पाए ठगौली सब जग जोहया ब्रह्मा विष्णु महादेव मोहया गुरमुख नाम लगे से सोहया। वर्त नेम कर थाके पुनः चरना तट तीर्थ पवे सब तरना से उबरे जे सतगुर की सरना। माया मोहे सबो जग बादा हमें पचाए मनमुख मूराखा गुरु नानक बहां पक।

संत त्रिपतासे हर हर त्याए कर कृपा अपने नाय लाए सर्व सुख प्रभ तुमरी रिजाए रहाओ। संग होवत कौ जानत दूर सो जन मरता नित नित चूर जिन सब किश दिया तिस चितवत नाहे महा बिख्या मैं दिन रहन जाहे। कहो नानक प्रभ सिमरो एक गत पाईए गुरपूरे टेक आसा महला पंजवा नाम जपत मन तन सब हरिया कल मल दोख सगल पर हरिया सोई दिवस भला मेरे पाई हर गुण गाए परम गत पाई रहाओ। सा जन के पूजे पैर मिटे उपद्रय मन ते बैर गुर पूरे मिल झगड़ चुकाया पंच दूत सब वसगत आया जिस मन वसया हर का नाम नानक ते सुपर कुर्बान आसा महला पंजवा गाव लेहे तू गावन हारे जी पिंड के प्राण आधारे जा की सेवा सर्व सुख पावे अवर काहू पह बहु ना जावे सदा आनंद आनंदी साहेब गुण निधान नित नित जापिए बलिहारी ते संत प्यारे जिस प्रसाद ब्रह्मन वासिए रहाओ। जा का दान निखूटे नाही भली भांत सब सह समाही जा की बख्शना मेटे कोई मनवा साई है साचा सोई सगल समग्री ग्रह जा के पूर्ण प्रभ के सेवक दुख ना चूर्ण ओट गही निरपौ पद पाई है सास सास सो गुंडित गाई है दूर ना होई कतहू जाई है नजर करे ता हर हर पाई है अरदास करी पूरे गुरपास नानक मंगे हर तन रास आसा महला पंजवा प्रथमे मिटिया तन का दुख मन सल का होवा सुख कर कृपा गुर दीनो नाओ बल बल ते सतगुर कहो जाओ। गुर पूरा पायो मेरे भाई रोग सोग सब दुख विनासे सतगुर की शरणाई रहाओ। गुर के चरण हृदय वसाए मन चिंतत सगले फल पाए अग्न बुझी सब

मान बंधन काटो सेवक कर, बंधन काटो सेवक कर राखे, अमृत बानी रसना चाखे। वडे भाग पूज गुर चरना, सगल त्याग पाई प्रभ सरना। गुर नानक जा को भया दयाला, सोजन हो वासदा निहाला। आसा महला पंजवा, सतगुर साचे।

जम्या पूत भगत गोविंद का प्रगटिया सब मैं लिखिया तुरका रहाओ। दसी मासी हुकुम बालक जन्म लिया मिटिया सोग महा आनंद थिया। गुरबाणी सखी आनंद गावै साचे साहेब कै मन भावै। वदी वेल बहु पीड़ी चाली धर्म कला हर बंद बहाली। मन चिंदिया सतगुरु देवाया पय अचिंत एक लिव लाया। ज्यों बालक पिता ऊपर करे बहुमान बुलाया बोलै गुर कै पाण। गुज्जी छन्नी नाही बात गुरु नानक तुठा कीनी दात। आसा महला पंजवां गुर पूरे राख्या दे हाथ प्रगट भया जन का प्रताप। गुर गुर जपी गुरु गुर त्याई जी की अरदास गुरु पह पाई रहाओ। शरण परे साचे गुरुदेव पूर्ण होई सेवक सेव। जियो पिंड जोबन राखे प्राण कहो नानक गुर कौ कुर्बान। आसा घर अठवां

चतराई सियाण पाक तै कामना आई है, तुठा साहेब जो देवै सोई सुख पाई है। जे लख कर्म कमाई है किश पवै ना बंदा, जन नानक कीता नाम धर होर छोड़िया धंदा। आसा महला पंजवा सर्व सुखा मैं पालिया, हर जेवड़ ना कोई गुर तुठे ते पाई है सा साहब सोई। बलिहारी गुर अपने सा सतकुरबाना, नाम ना विसरो एक खिन चसा एहो की जैदाना। रहाओ पागट सच्चा सोए है जिस हर धन अंतर, सो छूटै महाजाल ते जिस गुर शब्द निरंतर। गुर की महिमा क्या कहा गुर बिबेक सतसार, ओह आद जुगादि जुगह जुग पूरा परमेसर। नाम ते आवो सद सदा, हर हर मन रंगे जियो प्राण धन गुरु है नानक कै संगे। आसा महला पंजवा साई अलख्या पार, पोरी मन वसै दुख दर्द रोग माए मैंडा हब नसै। हाउ मन्या कुर्बान साई अपने, होवे अंधकणा मन तन जापने। रहाओ बिंदक गाल सुनी सच्चे तिस धनी, सुखी हूं सुख पाए माए ना कीम गणी। नैन पसंदो सोए पेख मुस्ताक पई, मैं निर्गुण मेरी माए आप लड़ लाए लई। बेदक तेप संसार

तेरी टेक गोविंद गोपाल दयाल प्रभ, तू सबना के नाथ तेरी सृष्ट सब रहाओ। सदा सहाय संत पेखे सदा हजूर, नाम बिहुनड़िया सिमरन में सूर विसूर। दास दास तन पाए मिटिया तिना गौण, विसरिया जिन्ना नाम तिनाड़ा हाल कौन। जैसे पास

खोजत खोजत खोज बिचारियो तत नानक हो जाना रे सिमरत नाम निधान निर्मोलक मन मानक पतियाना रे। आसा महला पंजवा दो पदे गुर प्रसाद मेरे मन वसिया जो मांगो सो पावो रे नाम रंग एहो मंत्र पताना बहुर नकत हूं तावो रे। हमरा ठाकर सब ते ऊंचा रहन दिन सो तिस गावो रे खिन मैं थापो थापन हारा तिस ते तुझे डरावो रे रहाओ। जब देखो प्रभ अपना स्वामी तो अवरे चीत ना पावो रे नानक दास प्रभया पहराया प्रंपो मेट लिखावो रे। आसा महला पंजवा चार बरन चौहा के मर्दनो खड़ दर्शन कर तली रे सुंदर सुगर स्वरूप सियाने पंचो ही मोए शली रे। जिन मिल मारे पंच सूर बीर ऐसो कौन बली रे जिन पंच मार बिदार गुदारे सो पूरा ए कली रे रहाओ। वडी कौम वस भागे नाही मोहकम फौज ठली रे कहो नानक तिन जन निर्दलिया साध संगत कै चली रे। आसा महला पंजवा नीकी जी की हर कथा उत्तम आन सगल रस फीकी रे रहाओ। बहु गुण धुन मुन जन खट बेते अवर ना किश लायकी रे बिखारी निरारी अपारी सहजारी साध संग नानक पीकी रे। आसा महला पंजवा हमारी प्यारी अमृत तारी गुर निमख ना मन ते टारी रे रहाओ। दर्शन परसन सरसन हरसन रंग रंगी करतारी रे खिन राम गुरगम हर दम नह जम हर कंठ नानक उड़हारी रे। आसा महला पंजवा नीकी सा संगानी रहाओ। पहर मूर्त पल गावत गावत गोविंद गोविंद बखानी चालत बैस्त सोबत हर जस मंतन चरण खटानी। हौ हौ रो तू ठाकर गौरो नानक सरन पछानी राग आसा महला पंजवा घर बारवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। त्याग सगल सियान पा भज पार ब्रह्म निरंकार एक साचे नाम बाजो सगल दिसै शार। सो प्रभ जानिए सद संग गुर प्रसादी बुझिए एक हर कै रंग रहाओ। सरण समरथ एक केरी दूजा नाही ठाओ महा पौजल लंगी है सदा हर गुण गाओ। जन्म

अनेक क्रिया, सब ऊपर नाम आचार, काम क्रोध अहंकार बिनसै मिले सतगुर देव, नाम दृढ़ कर भगत हर की भली प्रभ की सेव। चरण शरण दयाल तेरी तू निमाने मान, जी प्राण आधार तेरा नानक का प्रभतान। आसा महला पंजवा, डोल डोल महा दुख पाया बिना साधु संग, खाट लाभ गोविंद हर रस पार ब्रह्म एक रंग, हर को नाम जपिए नीत सास सास त्याय सो प्रभ, त्याग अवर प्रीत रहाओ करण कारण समर्थ सो प्रभ, जी दाता आप त्याग सगल सियाण पा आठ पहर प्रभ जाप, मीत सखा सहाय संगी ऊच अगम अपार, चरण कमल बसाए हृदय जी को आधार, कर कृपा प्रभ पार ब्रह्म गुण तेरा जस गाओ, सर्व सुख बड़ी वड्याई जप जीवै नानक नाओ। आसा महला पंजवा, उद्यम करो करावो ठाकुर पेखत साधु संग, हर हर नाम चिरावो रंगन आपे ही प्रभ रंग, मन में राम नामा जाप कर कृपा वसो मेरे हृदय, होए सहाई आप रहाओ। सुन सुन नाम तुम्हारा प्रीतम प्रभ पेखन का चाओ, दया करो किरम अपने को यह मनोरथ सुहाओ। तन तन तेरा तू प्रभ मेरा, हमरे वस किश नाहे, ज्यों ज्यों राखे त्यों त्यों रहना तेरा दिया खाहे। जन्म जन्म के किलविख काटे मज्जन हर जन तूर, पाए भगत परम पव नासै हर नानक सदा हजूर। आसा महला पंजवा, अगम गोचर दर्श तेरा सो पाए जिस मस्तक भाग, आप किरपाल किरपा प्रभ धारी सतगुर बख्शिया हर नाम। कल युग उधारिया गुरदेव, मलमूत मूड जे मुग्ध होते सब लगे तेरी सेव रहाओ। तू आप करता सब श्रेष्ठ तरता, सब मैरिया समाए धर्म राजा बिस्माद होवा, सब पई पैरी आए। सब जुग त्रेता द्वापर पणिए, कल जुग ऊतमो जुगा माहे, अह कर करे सो वह कर पाए, कोई ना पकड़िए किसै थाए। हर जियो सोई करे जे भगत तेरे जाचे, एहो तेरा बिरद कर जोड़ नानक दान मांगे, अपने संता दे हर दर्श। राग आसा महला पंजवा, कर तेरवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद, सतगुर बचन तुम्हारे निर्गुण निस्तारे रहाओ। महा बिखादी दुष्ट अपवादी ते पुनी संगारे, नरक पवंते नरक पड़ंते तिनके कोले उदारे, कोय न जाने कोय न माने से प्रगट हर द्वारे, कवन उपमा देव कवन वडाई नानक खिन खिन वारे। आसा महला पंजवा, बावर सोए रहे रहाओ, मोह कुटंब बिखै रस माते मिथ्या गहन गहे, मिथन मनोरथ सुपन आनंद उलास मन मुख सत कहे, अमृत नाम पदार्थ संगे तिल मर्म ना लहे। कर कृपा राखे सत संगे नानक शरण आहे, आसा महला पंजवा ते पदे ओहा प्रेम पिरी रहाओ। कनक माणक गज मोतियन लालन नै ना नहीं, राजन पागन हुक्म ना साधन, किश किश ना चाही चरणन सरनन संतन बंदन, सुखो सुख पाही नानक तप्त हरी मिले प्रेम प्री। आसा महला पंजवा, गुरै दिखायो लोए ना रहाओ, इते उते कट कट कट कट तू ही मोहे ना, कारण करना तारन तरना एक सोहेना,

संतन परसन बलिहारी दर्शन नानक सुख सुख सोए ना आसा महला पंजवा हर हर नाम या मोला ओहो सह सोहेला रहाओ संग सहाई छोड़ ना जाई ओहो अगे अतोला प्रीतम भाई बाप मोरो माई भगतन का ओला अलख लखाया गुरते पाया नानक एहो हर का चोला आसा महला पंजवा अपनी भगत ने बाहे ठाकर आयो आहे रहाओ नाम पदार्थ होए सकार्थ हृदय।

पंजवा ठाकर चरण सुभावे हर संतन पावे रहाओ आप गवाया सेवक माया गुण रस रस गावे एक आसा दर्श प्यासा या ना पावे दया तुहारी क्या जंत विचारी नानक बल बल जावे आसा महला पंजवा एक सिमर मन माही रहाओ नाम ते अवरदय बसावो तिस बिन को नाही प्रभ सरणी आईऐ सर फल पाईऐ सगले दुख जाही जियन को दाता पुरख विदाता नानक कटकट आही आसा महला पंजवा हर बिसरत सो मुआ रहाओ नाम ते आवै सर फल पावै सो जन सुखिया हुआ राज कहावै हौ कर्म कमावै बांध्यो नली परम सुआ कहो नानक जे सतगुर भेटिया सो जन ने चलथिया आसा महला पंजवा कर चौ दवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद ओहो निहो नवेला अपने प्रीतम स्यों लाग रह रहाओ जो प्रभ पावै जन्म ना आवै हर प्रेम भगत हर प्रीत रचै प्रभ संग मिली जय हो मन दी जय नानक नाम मिले अपनी दया करहो आसा महला पंजवा मिल राम प्यारे तुम बिन धीरज को ना करै रहाओ सिमरत शास्त्र बहु कर्म कमाए प्रभ तुमरे दर्श बिन सुख नाही वर्त नेम संयम कर थाके नानक साध सरण प्रभ संग वसै

तद ही कर जावै। लोभ बिखिया बिखै लागे, हिर वित चित दुखाही, खिन भंगना कै मान माते, असर जाणै नाही। रहाओ वेद शास्त्र जन पुकारै, सुनै नाही डोरा, निपट बाजी हार मुका, पछतायो मन भोरा। दान सगल गैर वजह भरिया, दीवान लेखै ना परिया, जेहे कार्ज रहै ओला, सोए काम ना करिया। ऐसो जग मोहे गुर दिखायो, तो एक कीर्त गाया, मान तान तज स्यानप, शरण नानक आया।

कौन रोई, धंधा पिटो पाई हो तुम कूड़ कमावाओ, ओहो ना सुनई कत ही तुम लोग सुनावाओ। जिसते सुता नानका जागा ए सोई, जे कर बुझे अपना ता नींद ना होई, जे चलदा लै चलिया के संपै नाले, ता तन संचो देख के बुझो विचारे। वणज करो मकसूद लै हो मत पछो तावो, औगुण छोड़ो गुण करहो ऐसे तत् परावो। धर्म भूम सत बीज कर वैसी किरस कमावो, तावा पारी जानियो लाह लै जावो। कर्म होवै सतगुर मिलै बूझे बिचारा, नाम वखाणे सुने नाम नामे ब्योहारा। ज्यो लाह तोटा ते वह वाड़ चलदी आई, ज्योत पावै नानका साई वड़ियाई। आसा महला पहला। चारे कुंडा टूडिया को निमी मेंडा, जे तुद पावै साहेबा तू मैं हो तेंडा। दर बीबा मैं नीम को कह करी सलाम, हेको मेंडा तू तनी साचा मुख नाम रहाओ। सिद्धा सेवन सिद्ध पीर मांगे रिद सिद्ध, मैं एक नाम न विसरै साचे गुरबुद्ध। जोगी पोगी कपड़ी क्या पवै दसंतर, गुर का शब्द नाची नहीं तत्सार निरंतर। पंडित पांदे जो इसी नित पड़े पुराना, अंतर वसना जाननी कड़ ब्रह्म लुकाना। एक तप सी बन में तप करे, नित तीर्थ वासा आप न चिन्ह तामसी कहे पय उदासा। एक बिंद जतन कर राख दे से जति कहावे, बिन गुर शब्द ना छूट ही परम आवे जावे। एक गिरही सेवक साधका गुरमति लागे, नामदान इसनान दृढ़ हर भगत सो जागे। गुर ते दर कर जानिए सो जाए सजाण, नानक नाम न विसरै साचे मन मानै। आसा महला पहला। मनसा मनै समाए ले पहो जल सच तरना, या जुगा दयाल तू ठाकर तेरी सरना। तू दा तो हम जाचका हर दर्शन दी जाय, गुरमुख नाम ते आई है मन मंदिर पीजै रहाओ। कूड़ा लालच छोड़िया तो साच पछाण, गुर कै शब्द समाई है परमार्थ जाने। एहो मन राजा लोभिया लुभतो लोभाई, गुरमुख लोभ निवारी हर सिंह बने आई। कलर खेती बीजिए क्यों लाहा पावै, मन मुख सच ना पीजई कूड़ कूड़ गड़ावै। लालच छोड़ो अंधे हो लालच दुख पारी, साचो साहिब मन वसै हो मैं बिखमारी। दुबदा छोड़ कुवाटड़ी मूसोगे पाई, अहनस नाम सलाही है सतगुर सरनाई। मन मुख पत्थर सैल है त्रिग जीवन फीका, जल मैं केता राखी है अब अंतर सूका। हर का नाम निदान है पूरे गुरदिया, नानक नाम ना विसरै मथे अमृत पिया। आसा महला पहला। चले चलन हार वाट वटाया, तंद पिटे संसार सच ना पाया। क्या पवी है क्या ढूंढी है, गुर शब्द दिखाया। ममता मोह विसरजे अपने कर आया रहाओ। सच मिले सचियार कू ना पाई है, सचे सोच तलाए बहु ना आई है। मोया कहो क्या रोवो, रोए ना जान हूं। रोवो सच सलाए हुक्म पछाण हूं, हुक्मी वजो लिखाए आया जानिए। लाहा पल्ले पाए हुक्म सियाणिए, हुक्मी पैंदा जाए दरगह पानिए। हुक्मे ही सरवार बंदर बाणिए, लाहा सच न्याओ मन वसाइए। लिखिया पल्ले पाए गर्व न्याइए, मन मुखिया सिर मार वाद खपाइए। ठग मुठी कूड़ियार बन चलाइए, साहेब हृदय वसाए न पछोता वही। गुनहा बख्शन हार शब्द कमा वही, नानक मंगे सच गुरमुख काली है। मैं तुझ बिन अवर ना कोई नजर निहाली है। आसा महला पहला। क्या जंगल ढूंढी जाए, मैं कर बन हरी आवला। सच टिके कर आए शब्दो तावला, जै देखा तै सोए अवर ना जानिए। गुर की कार कमाए महल पछाणिए, रहाओ आप मिलावै सच ता मन भावई। चलै सदर जाए अंक समावई,
ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਮਨ ਵਸੈ, ਵਸਿਆ ਮਨ ਸੋਈ ਆਪੇ ਦੇ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦੇ ਤੋਟ ਨਾ ਹੋਈ। ਅਬੇ ਤਬੇ ਕੀ ਚਾਕਰੀ ਕਿਉਂ ਦਰਗਹਿ ਪਾਵੈ, ਪੱਥਰ ਕੀ ਬੇੜੀ ਜੇ ਚੜੈ ਪਰ ਨਾਲ ਬੁਡਾਵੈ। ਆਪਣਾ ਮਨ ਵੇਚੀਐ ਸਿਰ ਦੀ ਜੈ ਨਾਲੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਵਸਤ ਪਛਾਣੀਐ ਆਪਣਾ ਘਰ ਭਾਲੇ। ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਆਖੀਐ ਤਿਨ ਕਰਤੈ ਕੀਆ, ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਮਰ ਰਹੇ ਫਿਰ ਮਰਨ ਨਾ ਥੀਆ। ਸਾਈ ਕਾਰ ਕਮਾਵਣੀ ਧੁਰ ਕੀ ਫੁਰਮਾਈ, ਜੇ ਮਨ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਮਿਲੈ ਕਿਨ ਕੀਮਤ ਪਾਈ। ਰਤਨਾ ਪਾਰਖ ਸੋ ਧਣੀ ਦਿਨ ਕੀਮਤ ਪਾਈ, ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਨ ਵਸੈ ਸੱਚੀ ਵਡਿਆਈ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਜਿਨੀ ਨਾ ਵਿਸਾਰਿਆ ਦੂਜੇ ਪਰਮ ਭੁਲਾਈ, ਮੂਲ ਛੋੜ ਡਾਲੀ ਲੱਗੇ ਕਿਆ ਪਾਵੈ ਸ਼ਾਈ।

पूरी मत भाई, आदि जुगाद निरंजना जन हर शरणाई। साहिब मेरा एक है अवर नहीं पाई, कृपा ते सुख पाया साचे परथाई। गुरबिन किने ना पायो, केती कह कहाए, आप दिखावे वाटड़ी सच्ची भगदड़ाए। मनमुख जे समझाई है पी उजड़ जाए, बिन हर नाम ना छूटसी मर नरक समाए। जन्म मरे प्रमाई है हर नाम ना लेवै, ताकि कीमत ना पवै बिन गुर की सेवै। करनी सेव कराई है करनी पीसाई, आप करे किसे आखिए वेखे वड़ियाई। गुर की सेवा सो करे जिसे आप कराए। नानक सिर दे छुटिया दरगे पत पाए, आसा महला पहला। रूड़ो ठाकुर महरो रूड़ी गुरबाणी, वड्डे पाग सतगुर मिले पाइये पग निर्बाणी। मैं ओ लगिया ओ लगी हम शोरू थारे, जो तू राखे त्यो रहा मुख नाम हमारे। रहाओ दर्शन की प्यासा कणी, भाणे मन पाई है मेरे ठाकर हाथ वड्याईया। भाणे पत पाई है साचो दूर ना जानिए, अंतर है सोई जै देखा तैं रव रहे किन कीमत होई। आप करे आपे हरे वेखे वड्याई, गुरमुख होए निहाली है इं कीमत पाई। जीवंदियां लाह मिले गुरकार कमावै, पूर्व होवे लिखिया तां सतगुर पावै। मनमुख तोटा नित है परमै परमाए, मनमुखियां दे ना चेतई क्यों दर्शन पाए। तां जग आया जानिए लाच साचे लिव लावै, तां जग आया जानिए साचे लिव लाए। गुर पेटे पारस पए ज्योति ज्योत मिलाए। अहनिस रह निरालमो कार तुर की करनी, नानक नाम संतोखिया राते हर चरणी। आसा महला पहला केता आखणी आखिए, ताके अंत ना जाना। मैं नितरिया तर एक तू मैं तान सताना। नानक की अरदास है सच नाम सुहेला, आप गया सोजी पई गुर शब्दी मेला। रहाओ हाँ मैं गर्व गवाई है पाई है विचार, साहब से मन मान्या दे साचा धार। अहनिस नाम संतोखिया सेवा सच साई, ता कहो बिघन ना लागई। चल हुक्मर जाई हुक्मर जाई, जो चले सो पवे खजाने। खोटे ठवर ना पाए नी रले जूठा ने। नित नित खरा संभालिए सच सबदा पाईए, खोटे नजर ना आवनी ले अगन जलाईए। जिन्नी आत्म चीनिया परमात्म सोई, एको अमृत बिरख है फले अमृत होई। अमृत फल जिनी चाखिया सच रहया गाई, तिन्ना परम ना भेद है हर रसन रसाई। हुक्म संजोगी आया चल सदा रजाई, अवगुणियारे कौ गुण नानक है सच मिले वडाई। आसा महला पहला मन रातो हर नाए, सच वखाणिया लोकां दा क्या जाए जत भाणिया। जो लग जियो प्राण सच ते आईए, लाह हर गुण गाए मिले सुख पाईए। रहाओ सच्ची तेरी कार दे दयाल तू, हौ जीवा तुद सा लाहे मैं टेकया धार। तू दर सेवक दरवान दर तू जानही, भग तेरी हैरान दर्द गवावही। दरगे नाम हदूर गुरमुख जानसी, वेला सच प्रवान शब्द पछाण सी। सत संतोख कर पाओ तोसा हर नाम से, मनो छोड़ विकार सच्चा सच दे। सच्चे सच्चा

अत क्रोध अवमान शब्द मरै तां जात जाए ज्योति ज्योत मिलै भगवान। पूरा सतगुर पेटिया सफल जन्म हमारा, नाम नवै निध पाया भरिया खुट भंडारा। आवै इस राशि के वा पारी है जिन्ना नाम प्यारा, गुरमुख होवै सो तन पाए तनांतर शब्द विचारा। भगती सार ना जाननी मनमुख हंकारी, तुरो आप खुवायन जुवै बाजी हारी। बिन प्यार है भगत ना होवई ना सुखोए शरीर, प्रेम पदार्थ पाई है गुर भगती मन तीर। जिसनो भगत कराए सो करे गुर शब्द विचार, हृदय को नाम वसै हमें दुबदा मार। भगतां की जात पाते को नाम है आपे लय सवार, सदा शरणाई तिसकी ज्यों पावै त्यों कार्ज सार। भगत निराली अलाह दी जापै गुर विचार, नानक नाम हृदय वसै पै भगती नाम सवार। आसा महला तीजा, आन रस मैं भुलाया बिना मैं दुख पाए। सतगुर पुरख ना भेटो जे सच्ची बूझ बुझाए, ए मन मेरे बावले हर चक सद पाए। अन रस लागा तू फिरै बिरथा जन्म गवाए रहाओ, इस युग में गुरमुख निर्मले सच नाम रह लाए। विण कर्मा किश पाई है नहीं क्या कर कया जाए। आप पछाणे शब्द मरै मनो तज विकार, गुर सरनाई भज पए बख्शे बख्शन हार। बिन नामे सुख ना पाई है ना दुख विचों जाए, एहो जग माया मोहे वे आपिया दूजे भरम भुलाए। दुहागणी पिरकी सार ना जानही क्या कर करै सिंगार, अंधन सदा जल्दी आ फिर ऐसे जै रवै ना पतार। सुहागणी महल पाया विचों आप गवाए, गुर सरनाई गुर शब्दी सिंगारिया अपने सह लैया मिलाए। मरना मनो विसारिया माया मोह गुबार, मनमुख मर मर जमै भी मरै जमदर होए खुआर। आप मिलाए नो से मिले गुर शब्द विचार, नानक नाम समाने मुख उजले ते सच्चा दरबार। आसा महला पंजवां अष्टपदियां कर दूजा एक ओंकार, सतगुर प्रसाद पंच मनाए पंच रसाए पंच वसाए पंच।

कहो नानक सब दुख मिटे प्रभेटे परमानंद। आसा महला पंजवां बिरहड़े कर चौथा संता की जत एक ओंकार सतगुर प्रसाद। पार ब्रह्म प्रभ सिमरिय प्यारे दर्शन को बल जाओ, जिस सिमरत सुख जिस सिमरत दुख भी सरै प्यारे, सो क्यों तजना जाए। एहो तन वेची संत पै प्यारे, प्रीतम दे मिलाए सुख सिंगार। बिख्या के फीके ता छोड़े मेरी माए, काम क्रोध लोभ तज गए प्यारे, सतगुर चरणी पाए। जो जन राते राम सिंह प्यारे, अंत ना काहू जाए। हर जिन्नी चाख्या प्यारे, तृप्त रहया गाए। अंचल गहया साध का नानक, पैव सागर पार पराए। जन्म मरण दुख कटिया प्यारे, जा पेटे हर राय। सुंदर सुगड़ सुजान प्र मेरा, जीवन दर्श दिखाए। जो जी तुझते बिछरे प्यारे, जन्म मरै बिख खाए। जिस तू मिलै सो मिलै प्यारे, तिसके लागौ पाए। जो सुख दर्शन पेखते प्यारे, मुक्ते कहन न जाए। साची प्रीत ना टुटई प्यारे, जो जुग रही समाए। जो तुत पावे सो पला प्यारे, तेरी अमर रजाए। नानक रंग रते नारायण प्यारे, माते सहि सुभाए। साबे तुम ही जानते प्यारे, किस पे कहो सुनाए।

एको ओंकार सतगुर प्रसाद आसा महला चौथा शंत कर चौथा हर अमृत पिने लोयना मन प्रेम रतना राम राजे मन राम कसवटी लाया कंचन सोविना गुरमुख रंग चलूलिया मेरा मन तनो पिना जन नानक मुस्क चकोलिया सब जन्म तन तन्ना हर प्रेम बाणी मन मारिया अणिया ले अणिया राम राजे जिस लागी पीर पिरम की सो जाने जरिया जीवन मुक्त सो आखिए मर जीवै मरिया जन नानक सतगुर मेल हार जगद उतर तरिया हम मूर्ख मुग्द शरणागति मिल गोविंद रंगा राम राजे गुरपूरै हर पाया हर भगत एक मंगा मेरा मन तन शब्द विगासिया जप अंत तरंगा मिल संत जना हर पाया नानक सत संगा दीन दयाल सुन बेनती हर प्रभर राया राम राजे हाँ मांगाऊं सरन हर नाम की हर हर मुख पाया भगत वचल हर बिरद है हर लाज रखाया जन नानक शरणागति हर नाम तराया आसा महला चौथा गुरमुख ढूंढ ढूंढेंदिया हर सज्जन लदा राम राजे कंचन काया कोट गढ़ विच हर हर सिद्धा हर हर हीरा रतन है मेरा मन तन विद्धा तुर भाग वड्डे हर पाया नानक रस गुद्धा पंथ दसावा नित खड़ी मंद जोबन बाली राम राजे हर हर नाम चिताए गुर हर मार्ग चाली मेरा मन तन नाम आधार है हम मैं बिख जाली जन नानक सतगुर मेल।

कतहु ना तावो शरण पावो करना मैं प्रभ करमया। सम्राथ अगाथ अपार निर्मल सुनो स्वामी बिनो एहो, कर जोड़ नानक दान मांगे जन्म मरण निवार ले हो। अपराधी मतहीन निर्गुणा नाथ नीच, साठ कठोर कुलहीन व्याप्त मोह कीच, मल भरम कर्म अहं ममता मरण चीत ना आवे, बंता विनोद आनंद माया ज्ञान ताल बटावे। खिसे जोबन बदे जरुआ दिन हारे संग मीच, बिनवंत नानक आस तेरी शरण साधु राख नीच। परमे जन्म अनेक संकट महाजोन, लपट रहो तहे संग मीठे भोग सोन। भ्रमत पार अगांत आयो बहु प्रदेशत आयो, आवे ओढ़ धारी प्रभ मुरारी सर्व सुख हरनायो। राखन हारे प्रभु प्यारे मुझते कछु ना होवा हो ना, सुख सहजानंद नानक कृपा तेरी तरह पौन। नाम तारी को धारे भगत संसा कौन, जेन केन प्रकारे हर हर जस सुनो श्रवण। सुन श्रवण बाणी पुरख ज्ञानी मन निधाना पावहे, हर रंग राते प्रभ दाते राम के गुण गावहे। बसद गागद बन राज कलमा लिखण कहो जे होए पवन, बेअंत अंत न जाए पाया गही नानक चरण सरण। आसा महला पंजवा पुरख पते भगवान, ताकि शरण गही निरपो पे प्राण चिंता सगल लही। मात पिता सुत मीत सुरजन इष्टबंद पजाणिया, गह कंठ लाया गुर मिलाया जस बिमल संत बखाणिया। बेअंत गुणिया नेक महिमा कीमत कछु ना जाए कही, प्रभ एक अनक अलख ठाकर ओट नानक तिस गही। अमृत बन संसार सहाय या पय राम नाम उरहार, बिहके दिवस गए। गत परम मोह बेकार बिनसे जोने आवन सब रहे, अग्न सागर पय शीतल साध अंचल गए रहे। गोविंद गोपाल दयाल सम्राथ बोल साधु हर जय जय। नानक नाम ते आए पूर्ण साध संग पाई परम गते, जय देखो तय संग एको रव रहया, घट घट वासी आप वर लैकने लहया। जल थल महियल पूर पूर्ण कीट हस्त समानिया, आद अंते मद सोई गुर प्रसादी जानिया। ब्रह्म पसरिया ब्रह्म लीला गोविंद गुणनिद जन कहया, सिमर स्वामी अंतर जामी हर एक नानक रव रहया। दिन रैन सुहावड़ी आई सिमरत नाम हरे, चरण कमल संग प्रीत करमल पाप टरे। दुख भूख दर दर नाठे प्रगट मग दिखाया, मिल साध संगे नाम रंगे मन लोड़ींदा पाया। हर देख दर्शन इच पुन्नी कुल संभूहा सब तरे, दिन सरैन आनंद आंदन सिमरंत नानक हर हरे। आसा महला पंजवा शंत कर सतवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद सलोक। शुभ चिंतन गोबिंद रमन निर्मल साधु संग, नानक नाम ना विसरो एक कड़ी कर कृपा भगवंत। शंत पिनी रैनड़िए चमकन तारे, जागे संत जना मेरे राम प्यारे। राम प्यारे सदा जागे नाम सिमरै आंदेनो, चरण कमल ध्यान हिरदय प्रभ सिर नाही एक खेनो। तज मान मोह बेकार मन का कलमला दुख जारे, बिनवंत नानक सदा जागे हरदास संत प्यारे। मेरी से जिड़िया आडंबर बनिया, मन आनंद भया प्रभ आवत सुनिया। प्रभ मिले स्वामी सुखै गामी चाव मंगल रस परे, अंग संग लागे दुख भागे प्राण मन तर सब हरे। मन इच पाई प्रभ त्याई संजोग साहा शुभ गणिया, बिनवंत नानक मिले श्री धर सगल आनंद रस बनिया। मिल सखिया पुछे कौ कंतनी साणी, रस प्रेम भरी कछ बोल ना जानी।
ਗੁਣ ਗੂੜ ਗੁਪਤ ਅਪਾਰ ਕਰਦੇ ਨਿਗਮ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਵਹੇ ਭਗਤ ਪਾਏ ਧਿਆਏ ਸਵਾਮੀ ਸਦਾ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵਹੇ ਸਗਲ ਗੁਣ ਸੁਗਿਆਨ ਪੂਰਨ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਣੀ ਬਿਰਵੰਤ ਨਾਨਕ ਰੰਗ ਰਾਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿ ਸੁਮਾਣੀ ਸੁਖ ਸੋਹਿਲੜੇ ਹਰ ਗਾਵਣ ਲਾਗੇ ਸਾਜਨ ਸਰਸਿਆੜੇ ਦੁਖ ਦੁਸ਼ਮਨ ਭਾਗੇ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਸਰਸੇ ਹਰ ਨਾਮ ਰਹਿਸੇ ਪ੍ਰਵਿਆਪ ਕਿਰਪਾ ਤਾਰੀਆ ਹਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਸਦਾ ਜਾਗੇ ਮਿਲੇ ਪ੍ਰਭ ਨਵਾਰੀਆ ਸੁਭ ਦਿਵਸ ਆਏ ਸਹਿਜ ਪਾਏ ਸਗਲ ਨਿਤ ਪ੍ਰਭ ਪਾਗੇ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਸਰਨ ਸਵਾਮੀ ਸਦਾ ਹਰ ਜਨ ਤਾਗੇ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਉੱਠ ਮੰਜ ਵਟਾਉੜਿਆ ਤੈਂ ਕਿਆ ਚਿਰ ਲਾਇਆ ਮੁਹਲਤ ਪੁੰਨੜੀਆ ਕਿਤਕੂਲ ਲਵਾਇਆ।

नानक जिन करते कारण किया सो जाने करतार। पौड़ी बिन सतगुर कने ना पायो, बिन सतगुर कने ना पाया। सतगुर विच आप रखियो नु कर प्रगटिया सुनाया, सतगुर मिलिया सदा मुक्त है जिन विचो मोह चुकाया। उत्तम एहो विचार है जिन सच्चे स्यों चित लाया, जग जीवन दाता पाया। श्लोक महला पहला, हौं आया हौं गया, हौं जमया हौं मुआ, हौं दिता हौं लया, हौं खटिया हौं गया। हौं विच सचियार कूड़ियार, हौं च पापुन विचार, हौं विच नरक सुरग अवतार। हौं विच हसै हौं विच रोवै, हौं विच भरीऐ हौं विच धोवै, हौं जाति जनसी खोवै। हौं विच मूर्ख हौं विच सियाणा, मूर्ख मूत की सार ना जाना। हौं विच माया हौं छाया, हौं मैं कर कर जन तो पाया। हौं मैं बूझै तांदर सूझै, ज्ञान में हूणा कथ कथ लूझै।

मूर्ख पंडित हिकमत हुज्जत संजय करै प्यार, धर्मी धर्म करै गावावै मंगै मुख द्वार, जति सदावै जुगत न जाणै छड़ बह करवार, सबको पूरा आपे होवै घट ना कोई आखै, पथ प्रवाणा पिछे पाईऐ ता नानक तोलिया जापै, महला पहला वदी स्वजग नानका सच्चा वेखै सोए, सबनी छाला मारियां करता करे सोहे, अगै जात ना जोर है अगै जियो नवे, जिनकी लेखै पथ पवै चंगे से ही के पौड़ी, तुर कर्म जिना को तुद पाया ता तिन्नी खसम ते आया, एना जनता कै वस किश नाही तुद वेकी जगतो पाया, एक नानू तू मेल लै एक आपो तुद खवाया, गुर कृपा ते जानिया जिथे तुदया बुझाया, सहजे ही सच समाया। सलोक महला पहला, दुख दारू सुख रोग पाया, जा सुख ताम ना होई तू करता करना मैं नाही, जा हों करी ना होई, बलहारी कुदरत वसिया तेरा अंत ना जाई लखिया, रहाओ जात मह जोत जोत मह जाता, अकल कला भरपूर रहया, तू सच्चा साहेब सिफत सवालियो, जिन कीती सो पार पया, कहो नानक करते किया बाता, जो किश करना सो कर रहया, महला दूजा जोग सबदं ज्ञान सबदं वेद सबदं ब्राह्मण खत्री सबदं सूर सबदं सूद्र सबदं प्राकृत सर्व सबदं एक सबदं जे को जाने पेओ, नानक ताका दास है सुई निरंजन देओ, महला दूजा एक कृष्णं सर्वदेवा देव देवा ता आत्मा आत्मा बास देवस जे को जाने पेओ, नानक ताका दास है सोई निरंजन देओ, महला पहला कुंभे बद्दा जल रह जल बिन कुंभ ना होए, ज्ञान का बद्दा मन रह गुर बिन ज्ञान ना होए, पौड़ी पढ़िया होवे गुनहगार ता ओमी साधना मारी है, जिहा कहले कहलना ते वेहो ना उपचारी है, ऐसी कला ना खेडी है जित दरगह गया हारी है, पढ़िया अतै ओमिया विचार अगै विचारी है, मोह चल सो अगै मारी है। सलोक महला पहला, नानक मेरे शरीर का एक रथ वाह हो, जो जुग फिर वटाई है ज्ञानी बुझै ताहे, सत युग रथ संतोख का धर्म अगै रथवा हो, तेरे तै रथ जतै का जोर अगै रथवा हो, द्वापर रथ तपै का सत अगै रथवा हो, कल युग रथ अगन का कूड़ अगै रथवा हो, महला पहला साम कह से तंबर स्वामी सच मैं अच्छे साच रह सबको।

जुज मैं जोर शली चंद्रावल कान कृष्ण जाद भया पार जात गोपी लै आया बिंद्रावन मैं रंग किया काल मैं बेदा थर बन हुआ नाव खुदाई अलहो पया नील बसर ले कपड़े पहरे तुरक पठानी अमल किया चारे वेद होए सचियार पढ़े गुणे तिन चार विचार पाओ भगत करनी सदाए तौ नानक मुख अंतर पाए पौड़ी सतगुर विटों वारिया जित मिलिया खसम समालिया जिन कर उपदेश ज्ञान अंजन दिया इन्हीं नेत्री जगत निहालिया खसम छोड़ दूजे लगे डुबे सेवन जा रहा सतगुरु है बोए था विरलै किने विचारिया कर किरपा पार उतारिया सलोक महला पहला सिमल रुख सरायरा अत दीर्घ अत मुच ओए जे आवै आस कर जाहे निरासे कित फल फिके फुल बक बके कम न आवै पत मिठत निवी नानका गुण चंगिया तत् सब को निवै आप कहो पर कहो निवै ना कोए तर तारा जू तोलिए निवै सो गौरा होए अपराधी दूना निवै जो हंता मिर्गा हे सीस निवाया क्या थी है जा हृदय सुदे जाहे महला पहला पढ़ पुस्तक संध्या बादं सिल पूजस बगल समादं मुख झूठ विपुखण सारं त्रैपाल तिहाल विचारं गल माला तिलक लाटं दोय धोती बस्त्र कपाटं जे जानस ब्रह्मं करमं सब फोक निश्चो करमं कहो नानक नह चौ त्यावै विण सतगुर वाट ना पावै पौड़ी कपड़ रूप सुहावना छड़ दुनिया अंदर जावना मंदा चंगा अपना आपे ही कीता पावना हुक्म किए मन भाम दे राहे पीड़े अगै जावना नंगा दोजक चालिया ता दिसै खरा डरावना कर औगण पछोतावना सलोक महला पहला दया कृपा संतोख सूत जत गंडी सत वट एहो जनेऊ जी का है ता पांडे घत ना एहो टुटै ना मल लगै ना एहो जलै ना जाए तन सो मानस नानका जो गल चले पाए चौकड़ मुल अनाया बह चौकै पाया सिखा कन चढ़ाइया गुरु ब्राह्मण थिया ओ मुआ ओ चढ़ पया वे तगा गया महला पहला लख चोरिया लख जारिया लख कूड़िया लख गाल लख ठगिया पहनामिया रात दिन सजी नाल तग कपाहो कती है बामन वटे आए कोहे बकरा रिन खाया सबको आखे पाए होए पुराना सुटिया पी फिर पाइए होर नानक तग न टुटई जे तग होवे जोर महला पहला नाए मन पा तू पजै साला ही सच सूत दर गए अंदर पाइए तग ना टूट सपूत महला पहला तग ना इंद्री तग ना नारी पलके थुक पवे नित दाड़ी तग ना पैरी तग ना हथी तग ना जेवा तग ना अखी वे तगा आपे वत्तै वड़ तागे अवरा कत्तै लै पाड़ करे वी आहो कड़ कागल दसे राहो सुन वेखो लोग।

पौड़ी। सब को आखै अपना जिस नाही सोचण कड्डी है, किता आपो अपना आपे ही लेखा संडी है। जा रहना नाही ऐत जग ता कायत गार बहंडी है, मंदा किसे ना आखी है पर अखर एहो बुझी है, मूर्ख है नाल ना लुझी है। श्लोक महला पहला। नानक फिक्के बोले है तन मन फिक्का होए, फिको फिक्का सदी है फिके फिक्की सोए। फिक्का दरगह सटी है मुहे थुका फिके पाए, फिक्का मूर्ख आखी है पाणा लह सजाए। महला पहला। अंदरों झूठे पैज बाहर दुनिया अंदर फैल, अठ सठ तीर्थ जे नावै उतरै नाही मैल। जिन पट अंदर बाहर गुदड़ ते भले संसार, तिन नेहो लगा रब सेती देखने विचार। रंग हसै रंग रोवै चुप पी कर जाहे, परवाह नाही किसै केरी बाज सचे नाहा। दरवाट उपर खर्च मंगा जबै दे ता खाहे, दीवाने को कलमे का हमा तुमा मेल। दर लै लेखा पीड़ छुटै नानका ज्यो तेल। पौड़ी आपे ही करना कियो कलापे ही तै तारी है, देखै कीता अपना तर कच्ची पक्की सारी है। जो आया सो चल सी सब कोई आई वारी है, जिसके जी प्राण है क्यों साहिब मनो विसारी है। अपना हथी अपना आपे ही काज सवारी है। श्लोक महला दूजा। एक नहीं आस की दूजे लगे जाए, नानक आसे कांडिया सद ही रह समाए। चंगे चंगा कर मने मंदे मंदा होए, आसक एहो ना आखी है जे लेखे वरतै सोए। महला दूजा। सलाम जवाब दोवें करे मुंडों कुथा जाए, नानक दोवें कूड़ियां थाए ना काई पाए। पौड़ी जित सेवे है सुख पाई है, सो साहिब सदा संभाली है। जित कीता पाई है अपना सा काल बुरी क्यों काली है, मंदा मूल ना की चई दे लम्मी नजर निहाली है। ज्यो साहिब नाल नहारी है ते वेहा पासा टाली है, किछ लाहे उपर काली है। श्लोक महला दूजा। चाकर लगे चाकरी नाले गर्भवाद, गल्ला करे कनेरियां खसम ना पाए साध। आप गवाए सेवा करे ता किछ पाए मान, नानक जिसनो लगा तिस मिलै लगा सो प्रवान। महला दूजा। जो जी होए

निर्जास। वस्तु अंदर वस समावै, दूजी होवै पास। साहिब सेती हुक्म ना चलै, कही बने अरदास। कूड़ कमाणै कूड़ो होवै, नानक सिफत विगास।

नानक सेवक कांडी है जे सेती खसम समाए पौड़ी नानके अंत न जापनी हर ताके पारा वार आप कराए साखती फिर आप कराए मार। एक ना गली जंजीरिया एक तुरी चढ़े बिसियार आप कराए करे आप हों कैस्यों करी पुकार नानक करना जिन किया।

दोत के एक ओंकार सतगुर प्रसाद आसा श्री कबीर जियो के चौपदे एक तुके सनक सनंद अंत नहीं पाया वेद पढ़े पढ़ ब्रह्मे जन्म गवाया हर का बिलोवना बिलोवो मेरे भाई सहज बिलोवो जैसे तत न जाई रहाओ तन कर मटकी मन माहे बिलोई इस मटकी मैं शब्द संजोई हर का बिलोवना मन का बिचारा गुरप्रसाद पावे अमृत धारा कहो कबीर नजर करे जे मीरा राम नाम लग उतरे तीरा आसा बाती सूकी तेल निखूटा मंदल ना बाजै नट पै सूता बुझ गई अगन नानक से धुआं रव रहया एक अवर नहीं दुआ रहाओ टूटी तंत ना बजै रबाब भूल बिगारो अपना काज कथनी बदनी कहन कहावन समझ परी तो बिसरियो गावन कहत कबीर पंच जो चूरे तिनते नाही परम पद दूरे आसा सुत अपराध करत है जेते जननी चीत ना राख स्थेते रा मैया हूं बारक तेरा काहे ना खंड से अवगन मेरा रहाओ जे अत क्रोप करे करताया ता पी चीत ना राख समाया चिंत पवन मन परयो हमारा नाम बिना कैसे उत्तर सपारा देह बिमल मत सदा शरीरा सहज सहज गुण रवै कबीरा आसा आज हमारी गोमती तीर जहां बसे पीतंबर पीर वाहो वाहो क्या खूब गावता है हर का नाम मेरे मन पावता है रहाओ नारद सारद करै खवासी पास बैठी बीबी कवला दासी कंठे माला जेवा राम सहंस नाम ले ले करो सलाम कहत कबीर राम गुण गावो हिंदू तुर्क दऊ समझावो आसा श्री कबीर जियो के पंच पदे नौ दो तुके पंज एक ओंकार सतगुर प्रसाद पाती तोरै मलनी पाती पाती जियो जिस पाहन कौ पाती तोरै सो पाहन निर्जियो पूली मालिनी है ओ सतगुर जागता है दे ओ रहाओ ब्रह्म पाती बिसंडारी फूल शंकर दे ओ तीन देव प्रतख तोरै करे किसकी से ओ पाखान गढ़ कै मूर्त कीनी दे कै छाती पाओ जे एह मूर्त साची है तो गण नहारे खाओ पात पहत यार लापसी कर करा का सार भोग नहारे भोगया इस मूर्त के मुखशार मालन पुली जग पुलाना हम पुलाने नाहे कहो कबीर हम राम राखे कृपा कर हर राय आसा बारह बरस बालपन बीते बीस बरस कष्ट अपना कियो तीस बरस कष्ट देवन पूजा फिर पछताना बिरद पयो मेरी मेरी करते जन्म गयो सायर सोख भुजंग बलियो रहाओ सूके सरवर पाल बंधावे लूणे खेत हाथ वार करे आयो चोर तुरंत ले गयो मेरी राखत मुक्त फिरे चरण शीस कर कंपन लागे नैनी नीर आसार बह जेहवा बचन शुद्ध नहीं निकसे तबरे धर्म की आस करे हर जियो कृपा करे लिव लावे लाहा हर हर नाम लियो गुर प्रसादी हर तन पायो अंते चलद्या नाल चलियो कहत कबीर सुनो रे संतो अंतन कछुए लै ना गयो आई तरब गोपाल राय की माया मंदिर छोड़ चलियो आसा काहू दीने पाठ पटंबर काहू पलंग निवारा काहू गरी गोदरी नाही काहू खान परारा अहे रखवाद ना कीजै रे मन सो किरत कर कर।

बजामनहारो कहां गयो जने हो मंदर कीना साखी शब्द सुरत नहीं उपजै खिंच तेज सब लीना। श्रवणन बिगल पए संग तेरे इंद्री का बल थाका चरण रहे कर टर्क परे है मुखो नानक सहबाता। थाके पंच दूत सब तस्कर आप अपने भ्रमते थाका मन कुंचर उर थाका तेज सूत तर रमते। मृतक पए दस बंद छूटे मित्र भाई सब छोरे कहत कबीरा जो हर त्यावै जीवत बंधन तोरे। आसा एक तुके चार सरपनी ते ऊपर नहीं बलिया जिन ब्रह्मा विष्णु महादेव शलिया। मार मार सरपनी निर्मल जल पैठी जिन त्रिभुवन डसियले गुरप्रसाद डीठी रहाओ। सरपनी सरपनी क्या कहो पाई जिन साच पछानिया तिन सरपनी खाई। सरपनी ते आन शूश नहीं अवरा सरपनी जीती कहां करे जमरा। एह सरपनी ता की कीती होई बल अबल क्या इस्ते होई। एह बस्ती ता बस्त शरीरा गुरप्रसाद सही तरे कबीरा। आसा कहां स्वान कहो सिमरत सुना।

कौआ कहाँ कपूर चराए, कह बिसियर कौ दूध पी आए। सत संगत मिल बबेक बुद्ध होई, पारस परस लोहा कंचन सोई। सात सवान सब करे कराया, जो तुर लिखिया सो कर्म कमाया। अमृत लै लै नीम सिंचाई, कहत कबीर ओआ को सहज ना जाई। आसा लंका सा कोट समुंद सी खाई, तेह रावण कर खबर ना पाई। क्या मांगो कि थिर ना रहाई, देखत नैन चलियो जग जाई। रहाओ एक लख पूत सवा लख नाती, तेह रावण कर दिया ना बाती। चंद सूरज जाके तप्तर सोई, बैसंतर जाके कपड़े धोई। गुरमत रामै नाम बसाई, आश्चर रह ना कथू जाई। कहत कबीर सुनो रे लोई, राम नाम बिन मुक्त ना होई। आसा पहला पूत पिछैरी माई, गुर लागो चेले की पाई। एक अचंबा सुनो तुम पाई, देखत सिंह चरावत गाई। रहाओ जल की मछली तरवर ब्याई, देखत कुतरा लै गई बिलाई। तले रे बैसा ऊपर सूला, तिसके पेड़ लगे फल फूला। कोरे चार भैंस चरावन जाई, बाहर बैल गोन कर आई। कहत कबीर जो इस पद बूझे, राम रमत ते सबके सूझे। बाईस चौपदे तथा पंच पदे, आसा श्री कबीर जियो के ते पदे अठ। दो तुके सत, एक तुका एक। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, बिंद ते जिन पिंड किया, अगन कुंड रहाया। दस मास माता उधर राखी।

राम राय सो दूलो पायो अस बड़ भाग हमारा। सोर नार मुन जन कौत के आए कोट ते तीस्यो जाना, कह कबीर मोय ब्याह चले है पुरख एक भगवाना। आसा सास की दुखी ससर की प्यारी, जेठ के नाम डराओ रे सखी सहेली ननद गहेली, देवर कै ब्रह जराओ रे। मेरी मत बौरी मैं राम बिसारे ओ, किन बिद रहन रहो रे। सेजै रम तो नैन नहीं पेखो, एहो दुख का सौ कहो रे रहाओ। बाप साहब का करै लड़ाई, माया सदमतवारी, बड़े भाई कै जब संग होती तबो ना प्यारी। कहत कबीर पंच को चगरा, चगरत जन्म गवाया, झूठी माया सब जग बांधया, मैं राम रमत सुख पाया। आसा हम कर सूत तने नित ताना, कंठ जने उत मारे, तुम तो वेद पढ़ो गायत्री गोविंद हृदय हमारे। मेरी जेहबा बिसरने नारायण, हृदय बसै गोविंदा, जम द्वार जब पूस बवरे तब क्या कैस मुकंदा रहाओ। हम गोरु तुम ग्वार गुसाई, जन्म जन्म रखवारे, कबहू ना पारो तार चरायो कैसे खसम हमारे। तू बामन मैं का सीत जुल्हा, बूजो मोर ज्ञाना, तुम तो जाचे पूपत राजे हर सौ मोर त्याना। आसा जग जीवन ऐसा सुपने जैसा, जीवन सुपन समान, साच कर हम गांठ दीनी छोड़ परम निधान। बाबा माया मोह हित कीन, जिन ज्ञान रतन हरलीन रहाओ। नैन देख पतंग उर्जै पास ना देख आग, काल फासना मुग्ध चेतै कनक कामन लाग। कर विचार बिकार पर हर तरन तारन सोए, कह कबीर जग जीवन ऐसा दुती नाही कोए। आसा जो मैं रूप किए बहु तेरे, अब फुन रूप ना होई, तागा तंत साज सब थाका, राम नाम बस होई।

तृष्णा गागर फूटी, काम चोलना पया है पुराना, गया परम सब छूटी। सर्वभूत एक कर जानिया, चूके बाद बिबादा, कह कबीर मैं पूरा पाया, पय राम प्रसादा। आसा रोजा तरह मनावे, अल्लाओ स्वादत जी संगार है, आपा देख अवर नहीं देख, काहे को चख मार है। काजी साहेब एक तो ही मैं तेरा, सोच विचार ना देख, खबर ना करे दीन के बौरे, ताते जन्मया लेख रहाओ। साज कते बखान अल्लाह, नार पुरख नहीं कोई, पड़े गुणे नाही किश बौरे, जो दिल में खबर ना होई। अल्लाह गैब सगल घट पीतर, हृदय लिहो बिचारी। हिंदू तुर्क दुहू मह एक, कह कबीर पुकारी, आसा ते पदा एक तुगा,

ठाकर कहो न वेद करो, पहले दूध बिटा रहे हो बछरा है, बीठल पहला काय करो। इबे बीठल उबे बीठल, बीठल बिन संसार नहीं, थांथन अंतर नामा प्रणवै, पूर रहे हो तू सर्व मही। आसा मन मेरो गज, जेहबा मेरी काती, मप मप काटो जम की फासी। कहा करो जाती, कह करो पाती, राम को नाम जपो दिन राती रहाओ। हर अंगन रंगो सीमन सीवो, राम नाम बिन करी ना जीवो, भगत करो हर के गुण गावो, आठ पहर अपना खसम ते आवो। सोने की सोई रुपए का तागा, नामे का चित हर सो लागा। आसा साप कुंच छोड़ बिख नहीं छाड़, उदक माहे जैसे बग ध्यान मांड। काहे कहो की जय ध्यान जपना, जब ते सुध नाही मन अपना रहाओ। सिंह च भोजन जो नर जाने, ऐसे ही ठग दियो बखाने। नामे के स्वामी लाहे ले झगरा, राम रसायन पियो रे दगरा। आसा पार ब्रह्म जे चीनसी, आसा ते ना भावसी, रामा भगत चेती अले अचिंत मन राखसी। कैसे मन तरे गारे, संसार सागर बिखे को बना, झूठी माया देख के भूला रे मना रहाओ। छिपे के घर जन्म दैला, गुरु उपदेश पहला, संता के प्रसाद नामा हर पेटला। आसा बाणी श्री रविदास जियो की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मृग मीन प्रेंग पतंग कुंचर, एक दोख बिनास, पंच दोखया साध जा मैं, ताकि केत कयास। माधो अविद्या हित कीन, विवेक दीप मलीन रहाओ। त्रिगत जोन अचेत संभव, पुन पाप्या सोच, मानुखा अवतार दुर्लभ, तिही संगत पोच। जी जंत जहां जहां लग, कर्म के बस जाए, काल फासा बद लागे, कछ ना चलाए उपाए। हर अवदास दास उदास, तज भ्रम तपन तप गुर ज्ञान, भगत जन पै हरन, परमानंद करो निदान। आसा संत तुझी तन संगत प्राण, सतगुर ज्ञान जान है, संत देवा देव, संत ची संगत संत कथा रस, संत प्रेम माजै दीजै देवा देव रहाओ। संत आचरण संत चो मार्ग, संत च ओलग ओलगनी, और एक मांगो भगत चिंता मन, जनी लिखावो असंत पापी सन। रविदास भणे जो जाने सो जान, संता नंता यंत्र नाही। आसा तुम चंदन हम एरंड बापरे, संग तुम्हारे बासा, नीच रूख ते ऊच पए है, गंध सुगंध निवासा। माधव सतसंगत शरण तुम्हारी, हम अवगुण तुम उपकारी रहाओ। तुम मुखतूल सुपेद सुपियल, हम बपरे जस कीरा, सतसंगत मिल रही है माधव, जैसे मदप मखीरा। जाति ओछा पाती ओछा, ओछा जन्म हमारा, राजा राम की सेवना कीनी, कह रविदास चमारा। आसा कहा पयो जव तन पयो छिन छन, प्रेम जाए तो डर पै तेरो जन, तुझे चरण अरबिंद पवन मन। पान करत पायो पायो रामैया तान रहाओ। संपत विपत पटल माया तान, ता मैं मगन होतना तेरो जान, प्रेम की जेवरी बांध्यो तेरो जान, कह रविदास शूट बो कमन गुण। आसा हर हर हर हर हर हर हरे, हर सिमरत जन गए निस्तर तरे रहाओ। हर के नाम कबीरो जागर, जन्म जन्म के काटे कागर। निमत नाम देव दूध पी आया, तव जग जन्म।

देखे देखे सुने बोले दौरे फिरत है रहाओ। जब कश पावे तब गर्भ करत है, माया गई तब रोवन लगत है। मन बच क्रम रस कसे लुभाना, बिरस गया जाय कहूं समाना। कह रविदास बाजी जग भाई, बाजी गर स्यो मोहे प्रीत बने आई। आसा बाणी भगत धन्ने जी की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। भ्रमत फिरत बहु जन्म बिलाने, तन मन धन नहीं धीरे। लालच बिख काम लुब्ध राता, मन बिसरे प्रभीरे रहाओ। बिख फल मीठ लगे मन बौरे, चार विचार ना जानिया। गुणते प्रीत बड़ी अनपाती, जन्म मरण फिर तानिया। जुगत जान नहीं हृदय निवासी, जलत जल जम फंद परे। बिख फल संच भरे मन ऐसे, परम पुरख प्रमन बिसरे। ज्ञान प्रवेश गुरे धन दिया, ध्यान मान मन एक मये। प्रेम भगत मानी सुख जानिया, तृप्ता गाने मुक्त पए। जोत समाए समानी जाके, अछली प्रपहचानिया। धन है तर पाया तरनी तर, मिल जा संत समानिया। महला पंजवा गोविंद गोविंद गोविंद संग, नाम देव मन लीना। आड़ दाम कोशी परो, होयो लाखीना रहाओ। बुनना तनना त्याग कै, प्रीत चरण कबीरा। नीच कुला जो लाहरा, पयो गुनी गहीरा। रविदास टुवंता टोर नीत, तिन त्यागी माया। प्रगट होवा साध संग, हर दर्शन पाया। सैन नाई बुतकारिया, ओहो कर कर सुनिया। हिरदे वसिया पार ब्रह्म, भगता मैं गनिया। एह बिद सुन कै जाटरो, उठ भगती लागा। मिले प्रतख गुसाइया, तन्ना वड भागा। रे चित चेत सकी ना, दयाल दमोदर बिबे ना जान सकोई। जे तावे ब्रह्मंड खंड कहो, करता करे सो होई रहाओ। जननी केरे उदर उदुक मह, पिंड किया दस द्वारा। दे आहार अग्न में राख, ऐसा खसम हमारा। कुम्मी जल माहे तन तिस बाहर, पंख खीर तिन नाही। पूर्ण परमानंद मनोहर, समय देख मन माही। पाखण कीट

आसा सेख फरीद जियो की बाणी एको अंकार सतगुर प्रसाद दिलो मोहब्बत जिन सही सचिया जिन मन होर मुख होर से कांडे कचिया रते इश्क खुदाए रंग दीदार के विसरिया जिन नाम ते पोए भारतीय रहाओ आप लिए लड़ लाए दर दर वेस से तिन धन जने दी माओ आए सफल से पर्वत गारिया पार अगम बेअंत तू जिन्ना पछाता सच चुम्मा पैर मूह तेरी परै खुदाए तू बख्शंदगी सेख फरीद खैर दीजै बंदगी आसा बोलै सेख फरीद प्यारे अल्लह लगे एहो तन हो सी खाक निमाणी गौर करे आज मैं लावा सेख फरीद टाक मकुंजड़िया मनोम चिंदड़िया रहाओ जे जाना मर जाई है घुम ना आई है झूठी दुनिया लग ना आप वजाई है बोलिए सच धर्म झूठ ना बोलिए जो गुर दसै वाट मुरीदा जोली है शैल लगंदे पार गोरी मन तीरिया कंचन वन्ने पासे कलवत चीरिया सेख है आती जग ना कोई थिर रया जिस आसन हम बैठे केते बैस गया कतक कूंजा चेत डाओ सावन बिजलियां सियाले सोहंदियां पिर गल बाहड़ियां चले चलन हार विचारा ले मनो गंडें दिया शे मां तुड़न दिया हिक खिनो जिमी पुछे असमान फरीदा खेवट किन गए जालन गोरा नाल उलामे जी सहे एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भाव निर्वैर अकाल मूर्ता जूनी सह भंग गुर प्रसाद राग गुजरी महला पहला चौप दे कर पहला तेरा नाम करी चन नाठिया जे मन उरसा होए करनी कुंगू जे रलै कट अंतर पूजा होए पूजा कीचै नाम ते आई है बिन नावे पूजना होए रहाओ बाहर देव पखाली है जे मन तो वै कोए झूठ लह जियो मन जी है मोख पयाना होए पशु मिले चंगे आईया खड़ खावे अमृत दे नाम विहुणे आदमी त्रिग जीवन कर्म करे नेड़ा है दूर ना जाने आओ नित सारे संभाले जो देवै सो खावना कहो नानक साचा है गुजरी महला पहला नाभ कमल ते ब्रह्मा उपजे वेद पड़े मुख कंठ सवार ताको अंतना जाई लखना आवत जात रहे गोबार प्रीतम क्यों बिसरे मेरे प्राण आधार जाकी भगत करे जन पूरे मुन जन सेवै गुर विचार रहाओ राव सस दीपक जाके त्रिपवन एका ज्योत मुरार गुरमुख होए सो अहिरस निर्मल मन मुख रहने आधार सिद्ध समाध करै नित झगरा दोह लोचन क्या हेरै अंतर ज्योत सब तुन जागै सतगुर चगर नवेरै सुर नर नाथ बेअंत जोनी साचै महल अपारा नानक सहज मिले जग जीवन नदर करो निस्तारा राग गुजरी महला तीजा कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद त्रिग अवेहा जीवना जित हर प्रीत ना पाए जित कम हर विसरै दूजे लगे जाए ऐसा सतगुर सेवी मना जित सेवे है गोविंद प्रीत उपजै अवर विसर सब जाए हर सेती चित गह रह जरा का पौ ना हो वही जीवन पदवी पाए रहाओ
ਗੋਬਿੰਦ ਪ੍ਰੀਤ ਸਿਉਂ ਇੱਕ ਸਹਿਜ ਉਪਜਿਆ, ਵੇਖ ਜੈਸੀ ਭਗਤ ਬਣੀ, ਆਪ ਸੇਤੀ ਆਪ ਖਾਇਆ, ਤਾਂ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋਵਾ। ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਈ, ਬਿਨ ਭਾਗਾ ਐਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾ ਪਾਈਐ, ਜੇ ਲੋਚੈ ਸਭ ਕੋਏ, ਕੂੜੈ ਕੀ ਪਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੈ, ਤਾਂ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਨਾਨਕ ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਕਿਆ, ਉਹ ਸੇਵਕ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਗੁਰ ਆਗੈ ਜੀਉ ਧਰੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਭਾਣਾ ਚਿਤ ਕਰੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਆਪੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਗੁਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਹਰ ਕੀ ਤੁਮ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਦੂਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਨਾ ਕੋਈ ਜੀ। ਹਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਮਨੋ ਚਿੰਦਿਆ ਫਲ ਪਾਈਐ, ਦੂਜੀ ਸੇਵਾ ਜਨਮ ਬਿਰਥਾ ਜਾਏ ਜੀ। ਹਰ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਰੀਤ ਹੈ, ਹਰ ਮੇਰੀ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀ ਜੀ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਮੇਰਾ ਮਨ ਭੀਜੈ, ਇਹਾ ਸੇਵ ਬਣੀ ਜੀਓ ਰਹਾਓ। ਹਰ ਮੇਰਾ ਸਿਮਰਤ, ਹਰ ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਹਰ ਮੇਰਾ ਬੰਧਪ, ਹਰ ਮੇਰਾ ਭਾਈ, ਹਰ ਕੀ ਮੈਂ ਭੂਖ ਲਾਗੈ, ਹਰ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤੈ, ਹਰ ਮੇਰਾ ਸਾਕ ਅੰਤ ਹੋਏ ਸਿਖਾਈ। ਹਰ ਬਿਨ ਹੋਰ ਰਾਸ ਕੂੜੀ ਹੈ, ਚਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਜਾਈ, ਹਰ ਮੇਰਾ ਧਨ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਚਾਲੈ, ਜਹਾਂ ਹਉ ਜਾਉ ਤਹਿ ਜਾਈ। ਸੋ ਝੂਠਾ ਜੋ ਝੂਠੇ ਲਾਗੇ, ਝੂਠੇ ਕਰਮ ਕਮਾਈ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕਾ ਭਾਣਾ ਹੋਵਾ, ਕਹਿਣਾ ਕਛੂ ਨਾ ਜਾਈ। ਗੁਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਜੁਗ ਮਾਹੇ ਨਾਮ ਦੁਲੰਬ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਇਆ ਜਾਏ, ਬਿਨ ਨਾਮੈ

मिलिया हर मन वसै सहज रह समाए रहाओ जा पाओ पाए अपना बैराग उपजै मन आए बैराग ते हर पाईए हर सो रह समाए से मुक्त जे मन जिणै फिर धात न लागै आए दसवें द्वार रहत करे त्रिपवन सोजी पाए नानक गुर ते गुर होया वेखो तिस की रजाए एहो कारण करता करै ज्योति ज्योत समाए गुजरी महला तीजा राम राम सब को कह कह राम ना होए गुर प्रसादी राम मन वसै ता फल पावै कोए अंतर गोविंद जिस लागै प्रीत हर तिस कदे न विसरै हर हर करै सदा मन चीत रहाओ हृदय जिनकै कपट वसै बारों संत कहाहे तृष्णा मूल न चुकई अंत गए पछताहे अनेक तीर्थ जे जतन करे ता अंतर की होमै कदे ना जाए जिस नर की दुबदा ना जाए धर्म राए तिस देश जाए कर्म होवै सोई जन पाए गुरमुख बूझै कोई नानक विचो होमै मारे ता हर भेटै सोई गुजरी महला तीजा तिस जन सांत सदा मत नहीं चलो जिसका अभिमान गवाए सो जन निर्मल जे गुरमुख बूझै हर चरणी चितलाए हर चेत या चेत मना जो इच्छा सो फल होई गुर प्रसादी हर रस पावै पीवत रह सदा सुखोई रहाओ सतगुर भेटे ता पारस होवै पारस होए ता पूज कराए जो उस पूजे सो फल पाए दिखिया देवै सच बुझाए विण पारसै पूजना होवई विण मन परचे अवरा समझाए गुरु सदाए अज्ञानी अंधा किसो मार्ग पाए नानक विण नदरी किशु ना पाई है जिस नदर करे सो पाए गुर प्रसादी दे वड्याई अपना शब्द वरताए गुजरी महला तीजा पंच पदे ना कासी मत उपजै ना कासी मत जाए सतगुर मिले मत उपजै ताए सोजी पाए हर कथा तू सुन रे मन शब्द मन वसाए।

हर का तन मनो सब हर कै वस है शरीर रहाओ। भगत जना को सरदा आप हर लाई, विचे ग्रस्त उदास रहाई। जब अंतर प्रीत हर स्यों बन आई, तब जो किश करे सो मेरे हर पर पाई। जित कारे काम हम हर लाए, सो हम करे जो आप कराए। जिनकी भगत मेरे प्रभ भाई, ते जन नानक राम नाम लिवलाई। गुजरी महला पंजवा, चौप दे घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। काहे रे मन चितवै उद्यम, जा अहर हर जियो परया। सैल पत्थर मैं जनते उपाए, ता का रिजका गह कर तरिया। मेरे माधव जी सत संगत मिले से तरिया, गुर प्रसाद परम पद पाया। सूके कष्ट हरिया रहाओ, जनन पिता लोग सुत बनता। कोई न किसकी तरिया, सिर सिर रिजक सवाहे ठाकरो। काहे मन पौ करिया, उड़ै उड़िया वैसै कोसा। तिस पाछै बचरे शरिया, उन कवन खलावै कवन चुगावै। मन मैं सिवरन करिया, सब निधान दस अठ सिधान। ठाकुर कर तल धरिया, जन नानक बल बल सदबल जाइयै। तेरा अंत ना पारा वरिया। गुजरी महला पंजवा, चौप दे कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। किरिया चार करै खट करमा, इतरा ते संसारी। अंतर मैल न उतरै हो मैं, बिन गुर बाजी हारी। मेरे ठाकर रख ले वो कृपा धारी, कोट मदे को विरला सेवक होर सगले ब्योहारी। रहाओ शास्त वेद सिमरत सब सोदे, सब एका बात पुकारी। बिन गुर मुक्त ना को उपावै, मन वेखो कर बिचारी। आठ साठ मज्जन कर इसनाना, भ्रम आए तर सारी। अनक सोच करै दिन राती, बिन सतगुर अंधियारी। तावत तावत सब जगत आयो, अब आए हर द्वारी। दुरमत मेट बुद्ध परगासी, जन नानक गुरमुख तारी। गुजरी महला पंजवा, हर तन जाप हर तन ताप, हर तन भोजन पाया। निमख ना बिसरा।

हर तन इशनान हर तन ज्ञान हर संग लाए त्याना हर तन तुल्हा हर तन बेड़ी हर हर तार प्राणा हर तन मेरी चिंत विसारी हर तन लाया धोखा हर तन ते मैं नमृत पाई हाथ चरियो हर थोका खावो खर्चो तोट न आवे हलत पलत कै संगे लाद खजाना गुरु नानक कौ दिया एहो मन हर रंग रंगे गुजरी महला पंजवा जिस सिमरत सब किले विख नासै पितरी होए उधारो सो हर हर तुम सधी जापो जां कांत न पारो पूता माता की आसीस निमख न बिसराओ तुम कहो हर हर सदा भजहो जगदीश रहाओ सतगुर तुम कहो होए दयाला संत

आओ मात पिता सुत मीत भाई तिस बना नहीं कोए ईत ऊत जी नाल संगी सर्व रव्या सोए कोट जतन उपाव मिथ्या कछ न आवै काम सरन साधु निर्मला गत होए प्रभ कह नाम आगम दयाल प्रभु ऊचा सरन साधु जोग तिस प्राप्त नानका जिस लिखिया तुरसन जोग गुजरी महला पंजवा आपना गुर सेव सदी रमह गुण गोबिंद सास सास याराद हर हर लह जाए मन की चिंद मेरे मन जाप प्रभ का नाओ सुख सहज आनंद पावे मिली निर्मल थाओ रहाओ साध संग उधार एहो मानो आठ पहरे आराद काम क्रोध अहंकार बिनसै मिटै सगले उपाद अटाला शेदा भेद सुमामी सरन ताकी आओ चरण कमल आराध हृदय एक सिम लिव लाओ पार ब्रह्म प्रभ दया धारी बख्श लीने आप सर्व सुख हर नाम दिया नानक सो प्रभ जाप गुजरी महला पंजवा गुर प्रसादी प्रभ ते आया गई संका टूट दोखा नेरा पै बिनासे पाप गए निखूट हर हर नाम की मन प्रीत मिल साध बचन गोबिंद ते आए महान निर्मल रीत रहाओ जाप ताप अनेक करनी सफल सिमरत नाम कर अनुग्रह आप राखे पहे पूर्ण काम सास सास ना बिसर कब हूं ब्रह्म प्रभ समरथ गुण अनक रसना क्या बखाने अगंत सदा अकथ दीन दर्द निवार तारण दयाल कृपा करण अटल पदवी नाम सिमरण दृढ़ नानक हर हर शरण गुजरी महला पंजवा अहम बुद्ध बहु सगन माया महा दीर्घ रोग हर नाम औखद गुर नाम दीनो करण कारण योग मन तन बांछिया जन तूर कोट जन्म के लह पातक गोविंद लोचा पूर रहाओ आदि अंते मध्य आसा कुकरी बिकराल गुर ज्ञान कीर्तन गोविंद रमण काटी है जमजाल काम क्रोध लो मो मूठे सदा आवा गवन प्रभ प्रेम भगत गोपाल सिमरन मिटत जोनी पवन मित्र पुत्र कलत्र सुर रिद तीन ताप जलंत जप राम रामा दुख निवारे मिले हर जन संत सर्ब बिद भ्रम ते पुकारे कतै नाही छोट हर चरण सरन अपार प्रभ के दृढ़ गही नानके ओट गुजरी महला पंजवा कर चौथा दो पदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद आराध श्री धर सफल मूर्त करण कारण योग गुण रमण श्रवणया पार महिमा फिर ना होत बियोग मन चरण अरबिंद उपास काल कलेस मिटंत सिमरन काड जम दूत फास रहाओ सत्र दहन हर नाम कहन अवर कछ ना उपाओ कर अनुग्रह प्रभु मेरे नानक नाम सुवाओ गुजरी महला पंजवा तू समरथ सरन को दाता दुख भंजन सुख राए जाहे क्लेश मिटे पै परमा निर्मल गुण प्रभ गाए गोविंद तुझ बिन अवर ना ठाओ कर कृपा पार ब्रह्म स्वामी जपी तुम्हारा नाओ रहाओ सतगुर सेव लगे हर चरनी वड्डे भाग लिव लागी कवल प्रकाश पाए साध संगे दुर्मत बुद्ध त्यागी आठ पहरो हर के गुण गावे सिमरै दीन दयाला आप तरह संगत सब उदरै बिन से सगल जंजाला चरण आधार तेरा प्रभ स्वामी ओत पोत प्रभ साथ सरन परयो नानक प्रभ तुमरी दे राख्यो हर हाथ गुजरी अष्टपदियां महला पहला कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद एक नगरी पंच चोर बसियले बरजत चोरी तावै त्रह दस माल रखे जो नानक मोख मुक्त सो पावै केतो बास देव बनवाली राम हृदय जप माली रहाओ
ਉਰਦ ਮੂਲ ਜਿਸ ਸਖਤ ਲਾਹਾ, ਚਾਰ ਬੇਦ ਜਿਤ ਲਾਗੇ, ਸਹਿਜ ਪਾਏ ਜਾਏ ਤੇ ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਲਿਵ ਜਾਗੇ। ਪਾਰ ਜਾਤ ਘਰ ਅੰਗਨ ਮੇਰਾ, ਪੁਹਪ ਪੱਤਰ ਤਤ ਡਾਲਾ, ਸਰਬ ਜੋਤ ਨਿਰੰਜਨ ਸੰਭੂ, ਛੋਡੋ ਬਹੁ ਜੰਜਾਲਾ, ਸੁਣ ਸਿਖਵੰਤੇ ਨਾਨਕ ਬਿਨਵੈ, ਛੋਡੋ ਮਾਇਆ ਜਾਲਾ, ਮਨ ਵਿਚਾਰ ਏਕ ਲਿਵ ਲਾਗੀ, ਪੁਨਰਪ ਜਨਮ ਨਾ ਕਾਲਾ, ਸੋ ਗੁਰੂ ਸੋ ਸਿੱਖ ਕਥਿਆਲੇ, ਸੋ ਵੈ ਜੇ ਜਾਣੈ ਰੋਗੀ, ਤਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਮਨਾ ਧੰਦਾ ਨਾਹੀ, ਧੰਦੈ ਗਿਰਹੀ ਜੋਗੀ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਹੰਕਾਰ ਤਜਿਆਲੇ, ਲੋਭ ਮੋਹ ਤਿਸ ਮਾਇਆ, ਮਨ ਤਤ ਅਵਗਤ ਧਿਆਇਆ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਪਾਇਆ, ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਸਭ ਦਾਤ ਕਥਿਆਲੇ, ਸਿਹਤ ਵਰਨ ਸਭ ਦੂਤਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਕਮਲ ਮਦ ਤਾਸਰ ਸਾਧੰ, ਜਗਤ ਨਾਹੀ ਸੂਤਾ, ਮਹਾ ਗੰਭੀਰ ਪੱਤਰ ਪਾਤਾਲਾ, ਨਾਨਕ ਸਰਬ ਜੋ ਆਇਆ, ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਮਮ ਪੁਨੈ ਨਾ ਗਰਮ, ਬਿਖ ਤਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ ਆਇਆ, ਗੁਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਕਵਨ ਕਵਨ ਜਾਚੈ ਪ੍ਰਭ ਦਾਤੇ, ਤਾਂ ਕੇ ਅੰਤ ਨਾ ਪਰੈ ਸੁਮਾਰ, ਜੈਸੀ ਭੂਖ ਹੋਏ ਅਭਯੰਤਰ, ਤੂੰ ਸਮਰਾਸਾ ਦੇਵਨਹਾਰ, ਐ ਜੀ ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਸੱਚ ਆਧਾਰ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਦੇਹ ਸੁਖ ਪਾਈਐ, ਤੇਰੀ ਭਗਤ ਪਰੇ ਭੰਡਾਰ ਰਹਾਓ, ਸੁਨ ਸਮਾਧ ਰਹਿ ਲਿਵ ਲਾਗੇ, ਏਕਾ ਏਕੀ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ, ਜਲ ਥਲ ਧਰਨ ਗਗਨ ਤਹਿ ਨਾਹੀ, ਆਪੇ ਆਪ ਕੀਆ ਕਰਤਾਰ, ਨਾ ਤਦ ਮਾਇਆ ਮਗ ਨਾ ਛਾਇਆ, ਨਾ ਸੂਰਜ ਚੰਦ ਨਾ ਜੋਤਿਆ ਪਾਰ, ਸਰਬ ਲੋਚਨ ਸ਼ਬਦ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲੋਚਨ ਅਭਿਅੰਤਰ, ਏਕਾ ਨਜ਼ਰ

रंग लाया। नानक गुरमुख ज्ञान प्राप्त होवै तिमर अज्ञाना देर चुकाया। जिसनो कर्म होवै तुरपूरा तिन गुरमुख हर नाम ते आया। महला तीजा सतगुर जिन्ना ना सेवियो शब्द ना लगो प्यार। सहजे नाम ना त्याया किते आया संसार। फिर जूनी पाई है विष्टा सदा खुआर। कूड़े लालच लगिया ना रवार ना पार। नानक गुरमुखी उबरे जे आमे ले करतार पौड़ी। भगत सच्चे दर सोहंदे सच्चे शब्द रहाए। हर की प्रीत तेन उपजी हर प्रेम कसाए। हर रंग रहे सदा रंग राते रसना हर रस पियाए। सफल जन्म जिन्नी गुरमुख जाता।

कलयुग में नाम निदान भक्ति खटिया, हरि उत्तम पद पाया, सतगुर सेव हर नाम मन वसाया, अंदर नाम पियाया, विचे ग्रह गुरबचन उदासी, हम मैं मोह जलाया, आप तरिया कुल जगत तराया, तन जने दी माया, ऐसा सतगुर सोई पाए, जिस तुर मस्तक हर लिख पाया, जन नानक बलिहारी गुरे अपने विटा, जिन भ्रम पुला मार्ग पाया, महला तीजा, त्रै गुण माया वेख पुले, जो देख दीपक पतंग पजाया, पंडित पुल पुल माया वेख, दिखा के नै केहो आन चढ़ाया, दूजे पाए पड़े नित बिखया, नाम दईए खुआया, जोगी जंगम सन्यासी पुले, ओना अहंकार बहु गर्भ वधाया, शादन भोजन ना लही सत पिखया, मन अठ जन्म गवाया, एतड़िया विचों सो जन समदा, जिन गुरमुख नाम ते आया, जन नानक किसनों आख सुनाई है जा

तो तुरे बिसम भय बिसमाद देह कुदर तेरिया शरण परे तेरी दास करगत होए मेरिया तेरे हथ निदान पावे तिस देहे जिसन होए दयालु हर नाम से लेहे आगम्या गोचर बेअंत अंत ना पाई है जिसनो होहे कृपाल सो नाम त्याई है। सरुक महला पंजवा कड़शिया फिर अन्न स्वाव न जान सुनिया सेई मुख दिसानो नानक रते प्रेम रस। महला पंजवा खोजी लदम खोज छड़िया उजाड़ तै सह दित्ती वाड़ नानक खेतना छिजई पौड़ी आराध्य हो सच्चा सो ए सब केशो जिस पास दुहां सरिया खसम आप खिन मै करे रास त्यागो सगलियो पाप तिसकी ओट गहो पौ सरनाई भज सुखी हूं सुख लहो कर्म धर्म तत् ज्ञान संता संग होए जपिया अमृत नाम बिघन लगे कोए जिसनो आप दयालु तिस मन उठिया पाईयन सब निधान साहेब तुठिया। श्लोक महला पंजवा लदम लबन हार कर्म करंदो मां पिरी इको सृजनहार नानक ब्याह ना पसीऐ। महला पंजवा पापड़िया पाशाड़ बाण सजावा सन कै गुरमंत्रा चितार नानक दुख ना थी वई पौड़ी वाह वाह सृजनहार पाईयन ठांड आप जी जंत मेहरवान तिसनो सदा जाप दया तारी समरथ चुके बिल बिलाप नठे ताप दुख रोग पूरे गुर प्रताप कीतियां ने अपनी रख गरीब निवाई थाप आपे लयन छड़ाए बंधन सगल काप तिसन बुझी आस पुनी मन संतोख त्राप वड्डी हूं वड्डा पार खसम जिसले अपना पुन पाप। श्लोक महला पंजवा जा कौ पय कृपाल प्रभ हर हर सही जपात नानक प्रीत लगी तन राम सियों पेटत साध संगात। महला पंजवा राम रमो वडभागी हो जल थल मैयल सोए नानक नाम आराध्य बिघन ना लागे कोए पौड़ी भगतां का बोलिया प्रवान है दरगे पवे थाए भगतां तेरी टेक रते सच नाए जिसनो होए कृपाल जिसका दुख जाए भगत तेरे दयाल ओना मेहर पाए दुख दर्द वड रोग ना पोहे तिस माए भगता एहो आधार गुण गोविंद गाए सदा सदा दिन रहन इको एक ते आए पीवत अमृत नाम जन नामे रहे अगाए। सलोक महला पंजवा कोट बिघन तिस लागते।

पौड़ी सो सतगुर तन तन जिन परमगढ़ तोड़िया, सो सतगुर वाहो वाहो जिन हरस्यों जोड़िया, नाम निदान्या खुट गुर दे दारुओ, महारोग बिकराल उतने बिदारुओ।

बन महिया अजहो ना पेट अगई है। जन भगतन को कहो ना मानो कियो अपनो पई है। दुख सुख करत महाप्रम बूडो अनक जोन परमई है। रतन जन्म खोयो प्रभ विसरियो एहो अवसर कत पई है। प्रमत फिरत तेलक के कप ज्यो गत बिन रहन बिहई है। कहत कबीर राम नाम बिन मूंड तुने पछतई है। गुजरी करती जा।

कहत कबीर सुनो मेरी माई, हमरा इनका दाता एक रग राई। गुजरी श्री नामदेव जी के पदे, कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जौ राज देहे ता कमन वडाई, जो भीख मंगावै ता क्या कट जाई। तू हर भज मन मेरे पद निर्वाण, बहुर ना होए तेरा आवन जान। रहाओ सब तैं उपाई भरम भुलाई, जिस तू देवै तसै बुझाई। सतगुर मिलै तां से सजाई, किसहु पूजो दूजा नजर न आई। एकै पाथर की जय पाओ, दूजे पाथर धरियै पाओ। जे ओह देओ तां ओह पी देवा, कहे नाम देओ हम हर की सेवा। गुजरी कर पहला, मलै ना लाछै पार मलो, परमली

अंतकाल जो स्त्री सिमरै ऐसी चिंता मह जे मरै बेसवा जोन वल वल अवतरै। अंतकाल जो लड़के सिमरै ऐसी चिंता मह जे मरै सूकर जोन वल वल अवतरै। अंतकाल जो मंदिर सिमरै ऐसी चिंता मह जे मरै प्रेत जोन वल वल अवतरै। अंतकाल नारायण सिमरै ऐसी चिंता मह जे मरै बदत त्रिलोचन ते नर मुक्ता पीतंबर वां केरदा बसै। गुजरी श्री जयदेव जियो का पदा घर चौथा एक ओवंकार सतगुर प्रसाद। परमाद पुरख मनोपमं सत आद भाव रतं परमद पुतं परकृत परं जद चिंत सर्वगतं केवल राम नाम मनोरमं बद अमृत तत्मयं ना दनोत जा स्मरणेन जन्म जराद मरण भयं। रहाओ इच्छ सजमाद परा भयं जस स्वस्थ सुकृत कीर्तं पाव भूत भाव समग्यं परमं प्रसन्न मिदं लोभाद दृष्ट पर गिरहं जद विद आचरणं तज सकल दोहकृत दुर्मति पज चक्कर तार सरणं। हर भगत निज नेह केवला रिद कर्मणा बचसा जोगेन किं जगेन किं दानेन किं तपसा। गोविंद गोविंद देत जप नर सकल सिद्ध पदं जय देव आयो तस सफटं पवभूत सर्वगतं। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भउ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सहपं गुरप्रसाद। राग देव गंधारी महला चौथा कर पहला सेवक जन बने ठाकर लिव लागे जो तुमरा जस कहते गुरमत तिन मुख भाग सभागे। रहाओ टूटे माया के बंधन फाहे हर राम नाम लिव लागे हमरा मन मोहयो गुरमोहन हम बिस्म भई मुख लागे सगली रहन सोई अंधारी गुर किंचित कृपा जागे। जन नानक के प्रभ सुंदर स्वामी मोहे तुम सारे अवर ना लागे। देव गंधारी मेरो सुंदर कहो मिले कित गली हर के संत बतावो मार्ग हम पीछे लाग चली। रहाओ प्रे के बचन सुखाने ही अर एह चाल बनी है भली लटरी मदरी ठाकर पाई ओह सुंदर हर टोल मिली। एको प्रेयो सखिया सब प्रे की जो पावे पिरसा भली नानक गरीब क्या करे बिचारा हर पावे तितराहे चली। देव गंधारी मेरे मन मुख हर हर हर बोली है गुरमुख रंग चलू लै राती हर प्रेम पीनी चोली है। रहाओ हाँ फिरों दीवानी आवल बावल तिस कारण हर ढोली है कोई मेले मेरा प्रीतम प्यारा हम तिसकी गुलगोली है। सतगुर पुरख मनावो अपना हर अमृत पी झोली है गुर प्रसाद जन नानक पाया हर लादा देह टोली है। देव गंधारी अब हम चली ठाकर पै हार जब हम शरण प्रभु की आई राख प्रभु पावे मार।

पयो अनुग्रहो मिट्यो मोर्चा, अमोल पदार्थ ला देओ, बलिहार है नानक लख बेरा, मेरे ठाकर अगम्यागा देओ। देव गंधारी पंजवा, माई जो प्रभ के गुण गावे, सफल आया जीवन फलता को, पार ब्रह्म लिवलावे। रहाओ सुंदर सुगड़ सूर सो बेता, जो साधु संग पावे, नाम उचार करे हर रसना, बहुन न जो नीत आवे, पूर्ण ब्रह्म रव्या मन तन मह, आन दृष्टि आवे। नरक रोग नहीं होवत जन संग, नानक जिस लड़ लावे, देव गंधारी पंजमा, चंचल सुपने ही उर जायो। इतनी ना बुझे कबहू, चलना बिगल पयो संग मायो। रहाओ कुसम रंग संग रस रचिया, बिखिया एक यो पायो, लोभ सुने मन सो कर माने, बेग तहां उठतायो। फिरत फिरत बहुत श्रम पायो, संत द्वारे आयो, करी कृपा पार ब्रह्म स्वामी, नानक लियो समायो। देव गंधारी पंजवा, सर्व सुखा गुर चरना, कालमल डारन मने सुधारन, ए आसर मोए तरना। रहाओ पूजा अर्चा सेवा बंदन, एह टहल मोहे करना, बिकसै मन होवे परगासा, बहुर ना गर्भ परना, सफल मूर्त परसव संतन की, एह त्याना तरना। पयो कृपाल ठाकर नानक, पर्यो साध की सरना। देव गंधारी महला पंजवा, अपने हर पै बिनती कहिऐ, चार पदार्थ अनंद मंगल निध, सुख सहज सिद्ध लहिऐ। रहाओ मान त्याग, हर चरणी लागो, तिस प्रभ अंचल गही है, आंच ना लागे अग्न सागर ते, शरण स्वामी की अही है। कोट प्राद महा अकिरत कान, बहुर बहुर प्रभ सही है, करना मैं पूर्ण परमेश्वर, नानक ते शरण ही है। देव गंधारी पंजवा, गुर के चरण हृदय प्रवेशा, रोग सोग सब दुख बिनासे, उतरे सगल कलेसा। रहाओ जन्म जन्म के किल बिखनासे, कोट मजन इशनाना, नाम निधान गावत गुण गोबिंद, लागो सहित आना। कर कृपा अपना दास कीनो, बंधन तोर निरारे, जप जप नाम जीवा तेरी बाणी, नानक दास बलिहारे। शके तेनो, देव गंधारी महला पंजवा।

साधु तूर लाई मुख मस्तक काम क्रोध बिख जारो सब ते नीच आत्म कर्मानो मन में ओ सुखता रहो। गुण गावे ठाकरे अबनासी कलमल सगले चारो नाम निधान नानक दान पावो कंठ लाए और तारो देवगदारी महला पंजवा प्रभ जीओ पेखो दर्श तुम्हारा सुंदर ध्यान तादर रहनी जी प्राण ते प्यारा रहाओ। शास्त्र वेद पुराण अवलोके सिमरत तत् विचारा दीना नाथ प्राण पत पूर्ण पावजल उदर नहारा आद जुगाद भगत जन सेवक ताकि बिखै आधारा तिन जन की तूर बांछ नित नानक परमेश्वर देव नहारा।

प्रेम रसाने जा को उपजी छोड़ न कतहु जाता रहाओ। बैठत हर हर सोबत हर हर हर रस भोजन खाता अठसठ तीर्थ मज्जन कीनो साधु तूरी नाता सफल जन्म हर जन का उपजया जन कीनो सौत बेदाता सगर समूल है उदरे नानक पूर्ण ब्रह्म पछाता। देव गंधारी महला पंजवा माई गुरबिन ज्ञान ना पाई है अनक प्रकार फिलत बिललाते मिलत नहीं गोसाई है रहाओ। मोह रोग सोग तन बांधो बोझो नी परमाई है टिकन ना पावे बिन सतसंगत किसी आगे जाई रुआई है। करे अनुग्रह स्वामी मेरा साध चरण चित लाई है संकट घोर कटे खिन पीतर नानक हर दर्स समाई है। देव गंधारी महला पंजवा ठाकर होए आप दयाल पई कल्याण।

भी हमरा ओ गोने अवगुण सब सहया कर मस्तक धार साज निवाजे मोए दुष्ट जो खया पार उपकारी सर्व सुधारी सफल दर्शन सहजया कहो नानक निर्गुण कहो दाता चरण कमल उर धरिया देव गंधारी महला पंजवा अनाथ नाथ प्रभ हमारे सरने आयो रख नहारे रहाओ सर्व पाप राख मुरारे आगे पाछै अंति वारे जब चितवाओ तब तुहारे उन समार मेरा मन साधारे सुन गावो गुर बचनारे बल बल जाओ साध दरसारे मन में राखो एक या सारे नानक प्रभ मेरे करण हारे देव गंधारी महला पंजवा प्रभ एह मनोरथ मेरा किरपा निधान दयाल मोह दीजै कर संतन का चेरा रहाओ प्रातः काल लागो जन चरणी निस्बासर दर्श पावो तन मन अर्प करो जन सेवा रसना हर गुण गावो सास सास सिमरो प्रभ अपना संत संग नित रहिया एक आधार नाम तन मोरा अनद नानक एहो लइया राग देव गंधारी महला पंजवा कर तीजा एको अंकार सतगुर प्रसाद मीता ऐसे हर जियो पाए छोड़ ना जाए सदी संगे अंदन गुर मिल गाए रहाओ मिलियो मनोहर सर्व सुखैना त्याग न कत हूं जाए अनक अनक भांत बहु पेखे प्रे रोम ना समसर लाए मंदर भाग शोभ द्वारे अनहद रोण चुन लाए कहो नानक सदा रंग माने गृह प्रे थीते सद थाए देव गंधारी पंजवा दर्शन नाम कौ मन याचै प्रम आयो है सगल थान रे आहे परयो संत पाछै रहाओ किस हों सेवी किस आराधी जो दिष्टै सो गाचै साध संगत की सरणी परियै चरण रेन मन बांचै जुगत ना जाना गुण नहीं कोई महादुत्र माया छै आए पयो नानक गुर चरणी तो उतरी सगल दुराछै देव गंधारी पंजवा अमृता प्रे बचन तुहारे अत सुंदर मन मोहन प्यारे सबहु मद निरारे रहाओ राज ना चाहो मुक्त ना चाहो मन प्रीत चरण कमलारे ब्रह्म महेश सिद्ध मुनि इंदिरा मोहे ठाकर ही दरसारे दीन द्वारे आयो ठाकर शरण परयो संत हारे कहो नानक प्रभ मिले मनोहर मन सीतर बिगसारे देव गंधारी महला पंजवा हर जप सेवक पारे उतारियो दीन दयाल पय प्रभ अपने बहुड़ जन्म नहीं मारियो रहाओ साध संगम गुण गावै हर के रत्न जन्म नहीं हारियो प्रभ गुण गाय बिखै बंतरिया कुलै समूह उदारियो चरण कमल बस्यारिद पीतर सास ग्रास उचारियो नानक उठ गही जगदीशर पुनः पुनः बलिहारियो राग देव गंधारी महला पंजवा कर चौथा एको अंकार सतगुर प्रसाद करत फिरे बन पेख मोहन रहत निरार रहाओ कथन सुनावन गीत नीके गावन मन में तरते गार अत सुंदर बहुचतर सियाने विद्या रसनाचार मान मोह मेर तेर बिबरजत एहो मार्ग खंडे तार कहो नानक तिन पव जल तरियले प्रभ कृपा संत संगार राग देव गंधारी महला पंजवा कर पंजवा एको अंकार सतगुर प्रसाद मैं पेख्योरी उचा मोहन सबते उचा आना

जो हर प्रभाव है सो थिया, सब करन तेरा कराया, सालाहे हो हर सब नाते वड्डा, जो संत जना की पैज रखदा आया। श्लोक महला तीजा। नानक ज्ञानी जगजीता, जगजीता सब कोए, नामे कार्ज सिद्ध है, सहजे होए सो होए, गुरमत

आकाशन बंद। नानक सच्चे नाम बिन वर्तन वर्तै अंध, महला चौथा। अंधे चानन तां थीऐ जां सतगुर मिलै रजाए, बंधन तोड़ै सच वसै अज्ञाना दे राजाए। सब किश देखै तिसै का जिनकी आतन साज, नानक सरण करतार की करता राखै लाज। पौड़ी जदों आपे थाट किया बै करतै, तदों पुछना सेवक बिया, तदो क्या को लेवै क्या को देवै, जा अवरना दूजा किया। फिर आपे जगतो पाया करतै, दान सबना को दिया। आपे से बनाईयन गुरमुख, आपे अमृत पिया, आप निरंकार आकार है आपे, आपे करै सोथिया। सलोक महला तीजा, गुरमुख प्रभ सेवै सद साचा, अंदन सहज प्यार, सदा आनंद गावै गुण साचे, अर्ध उर्ध उरतार। अंतर प्रीतम वसिया, तुर कर्म लिखिया करतार, नानकिया मिलाया नू आपे कृपा तार। महला तीजा, कहया कथया ना पाईऐ, अंदर रह सदा गुण गाए, विण कर मैं कने ना पायो, भौक मोए बिललाए। गुर कै शब्द मन तन भिजै, आप वसै मन आए, नानक नदरी पाईऐ आपे ले मिलाए। पौड़ी आपे वेद प्राण सब शास्त्र, आप कथा आप भिजै, आपे ही बै पूजे करता, आप पर पंच करी जै। आप निर्विरत आप निर्विरति, आपे कथ कथिजै, आपे पुन सब आप कराए, आप अलिप्त वर्तिजै, आपे दुख सुख देवै करता, आपे बख्श करी जै। सलोक महला तीजा, सेखा अंदरों जोर छड़ तू, पाओ कर चल गवाए। गुर कै पै केते निस्तरे, पै विच निरपौ पाए, मन कठोर शब्द भे तू, सांत वसै मन आए। शांति विचकार कमावणी, सा खसम पाए थाए, नानक काम क्रोध किनै ना पायो, पुछो ज्ञानी जाए। महला तीजा, मन मुख माया मोह है, नाम ना लगो प्यार, कूड़ कमावै कूड संग्रह, कूड़ करे आहार। बिख माया तन संच मरे, अंते होए सब शार, कर्म धर्म सुच संयम करे, अंतर लो विकार। नानक जे मनमुख कमावै, सो थाए ना पवै, दरगह होए खुआर। पौड़ी आपे खानी आपे बाणी, आपे खंडवर भंड करे, आप समुंद आप है सागर, आपे ही विचरतन तरे। आप लहाए करे जिस कृपा, जिसनो गुरमुख करे हरे, आपे पवजल आप है बोए था, आपे खेवट आप तरे। आपे करे कराए करता, अवरना दूजा तुझे सरे। सलोक महला तीजा, सदगुर की सेवा सफल है, जे को करे चित लाए, नाम पदार्थ पाई है, अचिंत वसै मन आए। जन्म मरण दुख कटिया, हमे ममता जाए, उत्तम पदवी पाई है, सच्चे रहे समाए। नानक पूर्व जिन कौ लिखिया, तिन्ना सदगुर मिलिया आए। महला तीजा, नाम रत्ता सदगुरु है, कलयुग बोध होए, गुरमुख होवै सो पार परै, जिन्ना अंदर सच्चा सोए। नाम संभाले नाम संग्रह, नामे ही पत होए, नानक सदगुर पाया कर्म प्राप्त होए। पौड़ी आपे पारस आप तात है, आप

आपे सब कट भोग वै स्वामी, आपे ही सब अंजन, आप बेक आप सब बेता, आपे गुरमुख भंजन, जन नानक।

आपे चाटड़े पण कौवाने आपे मिता आपे पिता माता है आपे आपे बालक करे सियाने। एक थै पड़ बुझे सब आपे एक थै आपे करे आने। एक ना अंदर महल बुलाए जा आप तेरे मन सच्चे पाने। जिन्ना आपे गुरमुख दे वड़ियाई से जन सच्ची दरगे जाने। सलोक मरदा नाम पहला कल कल वाली काम मद मनुआ पीवन हार क्रोध कटोरी।

पहला काया लाहने आप मद मजलस तृष्णा तात मनसा कटोरी कूड़ परी पी लाए जमकाल हित मद पीते नानका बहुते खटिए बिकार ज्ञान गुड़ सलाह मंडे पौ मास आहार नानक हो भोजन सच है सच नाम आधार काया लाहन आप मद अमृत तिसकी तार सतसंग स्यो मेलाप होए लिव कटोरी अमृत परी पीपी कटे बेकार पौड़ी आपे सुर नर गण गंधर्वा आपे खड़ दर्शन की बाणी आपे शिव शंकरा महेशा आपे गुरमुख अकथ कहानी आपे जोगी आपे भोगी आपे सन्यासी फिरै बिबाणी आपे नाल गोष्ट आप उपदेसै आपे सुर स्वरूप सियाणी अपना चोज कर वेखै आपे आपे सबना जिया कह है जानी श्लोक महला तीजा एहा संध्या प्रवान है जित हर प्रभ मेरा चित आवै हर स्यों प्रीत उपजै।

संध्या नानक संध्या करै मनमुखी जियो ना टिकै मर जमै होए खुवार महला तीजा प्रयो प्रयो करती सब जग फिरी मेरी प्यास ना जाए नानक सतगुर मिलया मेरी प्यास गई फिर पाया कर आए पौड़ी आपे तंत परम तंत सब आपे आपे ठाकर दास पाया आपे दास अठ वर्ण उपायां नू आप ब्रह्म आप राज लया आपे मारे आपे छोड़ आपे बक्से करे दया आपा भुल ना भुले कभी सब सच तपावस सच थया आपे जिन्ना बुझाए गुरमुख तिन अंदरों दूजा भ्रम गया श्लोक महला पंजवा हर नाम ना सिमरै साध संग तै तन उड़ै खेहे जिन कीती तसै ना जानी नानक फेटा लूनी देहे महला पंजवा घट वसै चरणार बिंद रसना जपै गोपाल नानक सो प्रभ सिमरिया तिस देही कौपाल पौड़ी आपे आपे अड़सठ तीर्थ करता आप करे इशनान आपे संयम वरतै स्वामी आप जपाए नाम आप दयाल हुए पौखंड नो आप करै सबदान जिसनो गुरमुख आप बुझाए सो सदही दरगै पाए मान जिस दी पैज रखै हर स्वामी सो सच्चा हर जान श्लोक महला तीजा नानक बिन सतगुर भेटे जग अंध है अंधे कर्म कमाए शब्द स्यों चेतना लावई जित सुख वसै मन आए तामस लगा सदा फिराए एहनिस जलत बिहाए जो तिस भावै सो थीऐ कहना किछु ना जाए महला तीजा सतगुरु फरमाया कारिए करे हो गुरु द्वारा होए कै सब संभाले हो साहिब सदा हजूर है भरमे के छौड़।

युनि स पंगुर प्रसाद राग वढ़ंस महला पहला कर पहला अमली अमल ना अंबड़ै मच्छी नीर ना होए जो रते सह अपने तिन भावे सब कोए हाँ वारी वन्या खनिए वन्या तो साहेब के नामै रहाओ साहेब सफलियो रुखड़ा अमृत जा का नाओ जिन पिया ते तृप्त पए हों तिन बरहार जाओ मैं की नजर ना आवही वसै हबियां नाल तिखा तिहाया क्यों लह जा सर पी तरपाल नानक तेरा बाणिया तू साहेब मैं रास मन ते तोखा ताल है जा सिफत करी अरदास वडंस महला पहला गुणवंती सहोरावया निर्गुण कूके काए जे गुणवंती थी रहे ता भी सहोरावन जाए मेरा कंत रिसालू की तन्यवरा रावे जी रहाओ करनी कामन जे थी है जे मन तागा होए मानक मुल ना पाई है लीजे चित परोए राहो दसाई ना जुलाया खामड़ी आस तैं सह

तेरी माया हाँ कर कर थाका उपाप बहुतेरे नानक गरीब राखो हर मेरे वढ़ंस महला चौथा मेरा हर प्रभ सुंदर मैं सार ना जानी हाँ हर प्रभ छोड़ दूजे लोभानी हाँ क्यों कर पिर कौ मिलो एयानी जो पिर पावे सा सुहागण साई पिर कौ मिले सियाणी रहाओ मैं विच दोस हाँ क्यों कर पिर पावा तेरे अनेक प्यारे हाँ पिर चित ना आवा जिन पिर रावे आ सा भली सुहागण से मैं गुण नाही हाँ क्या करी दुहागण नित सुहागण।

जल थल महियल रहया भरपूरे, निकट वसै नाही प्रभ दूरे। जिसनो नजर करे सो त्याए, आठ पैर हर के गुण गाए। जी जंत सगले प्रतपारे, शरण परयो नानक हर द्वारे। वढ़ंस महला पंजवा, तू वड़दाता अंतरजामी। सब मैं रावया पूर्ण प्रभ स्वामी। मेरे प्रभ प्रीतम नाम आधारा, हाँ सुन सुन जीवा नाम तुम्हारा रहाओ। तेरी शरण सतगुर मेरे पूरे, मन निर्मल होए संता तूरे। चरण कमल हृदय उतारे, तेरे दर्शन को जाई बलिहारे। कर कृपा तेरे गुण गावा, नानक नाम जपत सुख पावा। वढ़ंस महला पंजवा, साध संग हर अमृत पीजै ना।

रतन जवाहर हर मन क लाला, सिमर सिमर प्रपय निहाला। जत कत पेखो साधु सरना, हर गुण गाए निर्मल मन करना। घट घट अंतर मेरा स्वामी उठा, नानक नाम पाया प्रभु।

है तू अचरज कुदरत तेरी बिस्मा रहाओ तुझे आपे कारण आपे करना हुक्मे जमण हुक्मे मरना नाम तेरा मंत्र आधारी नानक दास बख्शीश तुम्हारी वढ़ांस।

सच कमाई है, जब साच अंदर होए साचा ताम साचा पाई है, लिखे बाजो सुरत नाही बोल बोल गवाई है। जिथे जाए बहिया भला कहिए, सुरत शब्द लिखाई है, काया कूड़ विगाड़ काहे नाई है। ता मैं कहया कहण जा तुझे कहाया, अमृत हर का नाम मेरे मन पाया।

नदर तुद अरदास मेरी जिन आप्यो पाया ता मैं कहया कहण जा तुझै कहाया वारी खसम कढ़ाए किरत कमावना मंदा किसै ना आख झगड़ा पावना नह पाए झगड़ा स्वाम सेती आप आवना जिस नाल संगत कर श्री की जाए क्या रूवावना जो दे सहना मने कहना आख या आख नाही वावना वारी खसम कढ़ाए किरत कमावना साबियो पाईया ने आप आपे नजर करे कौड़ा कोई ना मांगे मीठा सब मांगे सब कोई मीठा मांग देखे खसम पावे सो करे किश पुन दान अनेक करनी नाम

तरला जवानी आप पानी इच मन की पूरीए, सारंग ज्यों पग तरै ठिम ठिम आप संदूरे, श्री रंग राती फिरै माती उद गंगा वाणी, बिरवंत नानक दास हरका तेरी चाल सुहावी मदराड़ी बाणी। वडहंस महला तीजा, शंत एक ओंकार सतगुर प्रसाद, अपने पिर कै रंग रती मुइये सोभावंती नारे, सच्चा शब्द मिल रहीए मुइये पिर रावे पाए प्यारे, सच्चा पाए प्यारी कंत सवारी हर हर स्यो न्यो रिचाया, आप गवाया ता पिर पाया गुर कै शब्द समाया, सा तन शब्द सुहावी प्रेम कसाई अंतर प्रीत प्यारी, नानक सा तन मिल लई पिर आपे साचा साहे सवारी, निर्गुण मंत्रिये पिर देख दूरे राम, गुरमुख जिनी रावया मुइये पिर रव रया पर पूरे राम, पिर रव रया पर पूरे वेख जूरे जुजुए को जाता, तन बाली भोली पिर सहज रावे मिलिया करम विधाता, जिन हरा चाखिया शब्द सुपाखिया हर सर रही परपूरे, नानक कामण सा पिर भावै सबदे रह हदूरे, सुहागणी जाए।

जिन्नी आप गवाया तिन्नी फिर पाया रंग सिउ रलिया माणै सदा रंग राती सहजे माती अंधन नाम वखाणै कामण वडभागी अंतर लिव लागी हर का प्रेम सुभाया नानक कामण सहजे राती जिना सच सिंगार बनाया हमें मार मुइये तू चल गुर कै पाए हर वर रावै सदा मुइये निकर वासा पाए निकर वासा पाए शब्द बजाए सदा सुहागण नारी परली आला जुबन बाला अंधन कंध सवारी हर वर सुहागो मस्तक भागो सच्चा शब्द सुहाए नानक कामण हर रंग राती जा चलै सतगुर पाए वडांस महला तीजा गुरमुख सब वापार पला जे सहजे की जय राम अंधन नाम वखाणिए लाहा हर रस पी जय राम लाहा हर रस लीजै हर रा बीजै अंधन नाम वखाणै गुण संग्रह अवगुण विकणै आपै आप पछाणै गुरमत पाई वड्डी वड्याई सच्चा शब्द रस पी जय नानक हर की भगत निराली गुरमुख विरलै की जय गुरमुख खेती हर अंतर बीजी हर लीजै शरीर जमाए राम अपने घर अंदर रस पुंच तू लाहा लै परथाए राम लाहा परथाए हर मन वसाए तन खेती वापारा हर नाम ते आए मन वसाए बूझै गुर बिचारा मनमुख खेती वणज कर थाके तृष्णा भुख न जाए नानक नाम बीज मन अंतर सच्चा शब्द सुवाए हर वापार से जन लागे जिन्ना मस्तक मणि वडभागो राम गुरमती मन निकर वसिया सच्चा शब्द बैरागो राम मुख मस्तक पागो सच बैरागो साच रते विचारी नाम बिना सब जग बौराना शब्दे हमें मारी साचै शब्द लाग मत उपजै गुरमुख नाम सुहागो नानक शब्द मिलै पौ पंजन हर रावै मस्तक भागो खेती वणज सब हुक्म है हुक्मे मन वड्याई राम गुरमती हुक्म बुझियै हुक्मे मिल मिलाई राम हुक्म मिलाई सहज समाई गुर का शब्द अपारा सच्ची वड्याई गुरते पाई सच सवरन हारा पौ पंजन पाया आप गवाया गुरमुख मेल मिलाई कहो नानक नाम निरंजन अगम्या गोचर हुक्मे रहा समाई वढांस महला तीजा मन मेरिया तू सदा सच संभाल जियो अपने घर तू सुख वसै पोहे ना सकै जम काल जियो काल जाल जम जोहे ना सकै सचै शब्द लिव लाए सदा सच रता मन निर्मल आवन जान रहाए दूजे पाए परम विगुती मनमुख जोही जम काल कह नानक सुन मन मेरे तू सदा सच संभाल मन मेरे आय अंतर तेरा निदान है बाहर वस्त ना पाल जो पावे सो पुंच तू गुरमुख नदर निहाल मन मेरे अंतर हर नाम सिखाई।

मन मेरिया जन्म पदार्थ पाए कै एक सच लगे वापारा सतगुर सेव ने अपना अंतर शब्द अपारा अंतर शब्द अपारा हर नाम प्यारा नामे नौनद पाई मनमुख माया।

हम चात्रक दीन हर पास बेनंती। वढ़हंस महल्ला चौथा, हर कृपा कर सतगुर मेल सुदाता राम। हम पूछे सतगुर पास हर बाता राम। सतगुर पास हर बास पूछे जिन नाम पदार्थ पाया, पाए लगे नित करे बिनंती गुर सतगुर पंथ बताया। सोई भगत दुख सुख समत कर जाने, हर हर नाम हर राता हर कृपा कर।

तू दुख भंजन सर्व सुख दाता, हम पाथर तरे तराया। सतगुर पेट राम रस पाया, जन नानक नाम उदारे। हर तारो कृपा कर, कृपा लिहो उबारे राम। वडहंस महला।

बेखम पयंगा अंत तरंगा गुरमुख पार लंघाए हर बोहित चाड़ बड़ पागी लंगा गुर खेवट शब्द दराए आन देनो हर रंग हर गुण गावे हर रंगी हर रंगा जन नानक निर्वाण पद पाया हर उत्तम हर पद चंगा कड़ियाल मुखे गुर ज्ञान दृढ़ाया राम तन प्रेम हर चाबक लाया राम तन प्रेम हर हर लाए चाबक मन जिने गुरमुख जीतिया अगड़ो गड़ावे शब्द पावे अप्यो हर रस पीतिया सुन सरवण बाणी गुर बखाणी हर रंग तुरी चढ़ाया महा मार्ग पंथ बिखड़ा जन नानक पार लंघाया कोड़ी ते जिन दे हे राम हो पाइया राम जित हर प्रभ जापै सा तन तन तुखाइया राम जित हर प्रभ जापै सा तन सा बासै तुर पाया किरत जुड़ंदा चढ़ देहड़ कोड़ी बिखमन गाए मिल गुरमुख परमानंदा हर हर काज रचाया पूरा मिल संत जना जाने आई जन नानक हर वर पाया मंगल मिल संत जना वादाई वडहंस महला चौथा देहे तेज नड़ी हर नवरंगिया राम गुर ज्ञान गुरु हर मंगिया राम ज्ञान मंगी हर कथा चंगी हर नाम गत मित जानिया सब जन्म सफलियो किया करतै हर राम नाम खानिया हर राम नाम सलाहे हर जप हर भगत हर जन मंगिया जन कहे नानक सुनो संतो हर भगत गोविंद चंगिया देहे कंचन जीन सुमिन आराम जड़ हर हर नाम रतन आराम जड़ नाम रतन गोविंद पाया हर मिले हर गुण सोकने गुर शब्द पाया हर नाम ते आया वडभागी हर रंग हर बने हर मिले सुमामी अंतर जामी हर नव तन हर नवरंगिया नानक बखाण नाम जाने हर नाम हर प्रमंगिया कड़ियाल मुखे गुर अंकस पाया राम मन मैंगल गुर शब्द वस आया राम मन वसगत आया परम पद पाया सातन कंत प्यारी अंतर प्रेम लगा हर सेती कर सोह हर प्रभ नारी हर रंग राती सहजे माती हर प्रभ हर हर पाया नानक जन हरदास कहत है वडभागी हर हर त्याया देह कोड़ी जी जित हर पाया राम मिल सतगुर जी मंगल गाया राम हर गाए मंगल राम नामा हर सेव सेवक सेवकी प्रभ जाए पावे रंग महली हर रंग माने रंग की गुण राम गाए मन सुभाए हर गुरमति मन त्याया जन नानक हर कृपा तारी देह कोड़ी चढ़ हर पाया राग वडहंस महला पंजवा शंत कर चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद

है। मरण मुनसासु रिया हक है, जो होए मरण परवानो, सूरे से ही आज्ञा आखी है, दरगह पावे साची मानो, दरगह मान पावे पत स्यों जावे, आगे दुख न लागे, कर एक ते आवे ता फल पावे, जित सेवे पहु भागे, ऊंचा नहीं कहना मन में रहना, आपे जाने जानो, मरण मुनसा सूर्या हक है, जो होए मरे परवानो, नानक किसनो बाबा रोई है, बाजी है ओ संसारो, कीता वेख साहब अपना, कुदरत करे बिचारो, कुदरत बिचारे तारण तारे, जिन किया सो जाने, आपे वेख आपे बूझे, आपे हुक्म पछाणे, जिन किश किया सोई जाने, ताका रूपया पारो, नानक किसनो बाबा रोई है, बाजी है एहो संसारो, वडहंस महला पहला दखनी, सच सरंदा सच्चा जानिए, सचड़ा पर्वत गारो, जिन आपी ने आप साजिया, सचड़ा लाखिया पारो, दोए पुड़ जोड़ विछोड़ियान, गुरबिन कोरिया दारो, सूरज चंद सिरजियान, अहनिस चलत विचारो, सचड़ा साहेब सच तू, सचड़ा देह प्यारो रहाओ, तुद सिरजनी मेदनी, तुद सिरजी मेदनी, दुख सुख देव नहारो, नारी पुरख सिरजिया, बिख माया मोह प्यारो, खानी बाणी तेरिया, देह जिया आधारो, कुदरत तख्त रचाया, सच नवेण नहारो, आवागमन सिरजिया, तू थिर करना हारो, जमन मरना आए गया, बदक जियो बिकारो, पूंडड़ै नाम विसारिया, बूढ़ड़ै क्या तिस्चारो, गुण छोड़ बिखलदया, अवगुण कावण जारो, सदड़े आए तना जानिया, हुक्म सचे करतारो, नारी पुरख विछुनिया, विछड़िया मिलन हारो, रूप ना जाने सोहनिया, हुक्म बदी सरकारो, बालक बिरत ना जाननी, तोन हेत प्यारो, नौदर ठाके हुक्म सचै, हंस गया गैनारे, सा तन छुट्टी मुठी झूठ विदनिया, मृत कड़ा अंगनड़े बारे, सुरत मुई मरमाइए, महल रुनी दरबारे, रवो कंत में लियो, सच्चे के गुण सारे, जल मल जाली ना वालिया, कपड़ पटिया बारे, वाजे वजे सच्ची बाणिया, पंच मोए मन मारे, जानी विछुनड़े मेरा मरण भया, त्रिग जीवन संसारे, जीवत मरे सो जानी है, फिर सचड़ा हित प्यारे, तुसी रोवो रोवन आई हो, झूठ मुठी संसारे, हाँ मुठड़ी तंदे तावनिया, फिर छोड़ियाड़ी विदन कारे, कार कार कंत महेलिया, रूड़े हित प्यारे, मैं फिर सच सलाहना, हौरे सियाड़िए नाम पतारे, गुर मिलिया वेस पलटिया, सा तन सच सिंगारो, आवो मिलो सहेलियो, सिमरो सिरजन हारो, बैयर नाम सुहागणी, सच सवारन हारो, गावो गीत ना बिरहड़ा, नानक ब्रह्म विचारो, वडहंस महला पहला, जिन जग सिरज समाया, सो साहिब कुदरत जानो वा, सचड़ा दूर ना पाली है, कटकट शब्द पछाणो वा, सच शब्द पछाणो, दूर ना जानो, जिन एह रचना राची, नाम ते आए ता सुख पाए, बिन नामे बिड़काची, जिन थापी बिद जाने सोई, क्या को कह वखाणो, जिन जग थाप वताया जालो, सो साहिब परवानो, बाबा आया है उठ चलना, अद पंद है संसारो वा, सिर सिर सचड़े लिखिया, दुख सुख प्रभ विचारो वा, दुख सुख दिया जेहा किया, सो निबह जी नाले, जेहे कर्म कराए करता, दूजी कार ना पाले, आप निरालम तंदे बांधी, कर हुक्म छडावन हारो, अजकल करदिया काल ब्या पै, दूजे पाए विकारो, जम मार्ग पंथ ना सुजई, उजड़े अंध गवारो वा, ना जल लेप तो लाइया, ना भोजन प्रकारो वा,
ਭੋਜਨ ਭਾਉ ਨਾ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਕਾਪੜ ਸਿੰਗਾਰੋ ਗਲ ਸੰਗਲ ਸਿਰ ਮਾਰੇ ਉਬੋ ਨਾ ਦਿਸੈ ਘਰ ਬਾਰੋ ਇਬਕੇ ਰਾਹੇ ਜਮਨ ਨਾਹੀ ਪਛਤਾਣੇ ਸਿਰ ਪਾਰੋ ਬਿਨ ਸਾਚੇ ਖੋ

सेवा तंदा रोवे मैल ना तोवे सुपनंत संसारो ज्यो बाजीगर परमे पूले झूठ मुठी अंकारो आपे मार्ग पावन हारा आपे कर्म कमाए नाम रते गुर पूरे राखे नानक सहिज सुभाए। वड़हंस महला पहला बाबा आया है उठ चलना एहो जग झूठ पसारो वा सच्चा कर सचड़ै सेवी है सच खरा सचियारो वा कूड़ लब जा थाए ना पासी अगै लह ना ठाओ अंतर आओ ना बैसो कहिए ज्यों सुनिए कर काओ जम्मण मरण वड्डा वे छोड़ा बिनसै जग सवाए लब तंदे माया जगत भुलाया काल खड़ा रुआए। बाबा आवो पाई हो गल मिले मिल मिल देह आसीसा हे बाबा सचड़ा मेल न चुकई प्रीतम किया देह आसीसा हे आसीसा दे वो भगत करे वो मिलिया का क्या मिलो एक भूले नाव थे वो थावो गुर शब्दी सच खेलो जब मार्ग नहीं जाना शब्द समाना जुग जुग साचे वेसे साजन सैन मिलो संजोगी गुर मिल खोले फासे बाबा नांगड़ा आया जग में दुख सुख लेख लिखाया लिखियाड़ा सहा ना टले जेहड़ा पुरब कमाया बैसाचे लिखिया अमृत बिखिया जित लाया तित लागा कामने आरी कामन पाए बहुरंगी गलतागा होछी मत पया मन होचा गुड़सा मक्खी खाया ना मर जाद आया कल पीतर नांगो बंद चलाया बाबा रोवो जे किसे रोवना जानी अड़ा बंद पठाया है लिखियाड़ा लेखना मेटी है दर हाकार आया है हाकारा आया जात पाया रुन्ने रोवन हारे पुत पाई पाती जे रोवे प्रीतम अत प्यारे पैरो वै गुणसार समाले को मरे न मोया नाले नानक जुग जुग जान से जाना रोवे सच समाले। वडहंस महला तीजा महला तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद प्रभ सचड़ा हर साला ही है कार्ज सब किश करने योग सात अन्न रंड ना कभू बैसई ना कदे होवै सोग ना कदे होवै सोग अंदन रस भोग सातन महल समाणी जिन प्रयो जाता कर्म विदाता बोले अमृत बाणी गुणवंतियां गुणसार है अपने कंत संभालै ना कदे लगे विजोगो सचड़ा पिरसा लाही है सब किश करना है जोगो सचड़ा साहेब शब्द पछाणी है आपे ले मिलाए सात अन प्रे कै रंगरती विचों वाप गवाए विचों वाप गवाए फिर काल ना खाए गुरमुखी एको जाता कामनेश पुन्नी अंतर पिन्नी मिलिया जग जीवन दाता शब्द रंग राती जो बन माती फिर कै अंक समाए सचड़ा साहेब शब्द पछाणी है आपे ले मिलाए जिनी अपना कंत पछाणिया हां तिन पूछो संतां जाए आप छोड़ सेवा करी पर सचड़ा मिले सही सुवाए पर सच्चा मिले आए साच कमाए साच शब्द तन राती कदे नारांड सदा सुहागण अंतर सही समाधि पर रहया पर पूरे वेखा दूरे रंग माने सही सुवाए जिनी अपना कंत पछाणिया हां तन पूछो संतां जाए फिरो विशुनिया भी मिल है जे सतगुर लागै साचे पाए सतगुर सदा दयाल है अवगुण शब्द जलाए अवगुण शब्द जलाए दूजा भाव गवाए सच्चे ही सच राती सच्चे शब्द सदा सुख पाया हों मैं गई पराती पिर निरमायल सदा सुखदाता नानक शब्द मिलाए पिरो विशुनिया भी मिल है जे सतगुर लागै साचे पाए। वडहंस महल

ज्ञान में होनी मुठी, बिन शब्द पिर ना पायो जन्म गवायो, रो वै उगणियारी झूठी, पिर जग जीवन किसनो रोई, रो वै कंत विसारे, सब जग आपो पायो न आमन जान संसारे। सो पिर सच्चा सद ही साचा है, ना यो मरे ना जाए, भूली फिरे तन एणिया, रंड बैठी दूजे पाए, रंड बैठी दूजे पाए, माया मोहे दुख पाए, आव कट तन शीजे। जो किश आया सब किश जासी, दुख लागा पाए दूजे, जमकाल ना सूजे, माया जग लूजे, लब लोभ चित लाए। सो पर साचा सद ही साचा, ना एहो मरे ना जाए, एक रोवे पिरे विशुनिया, अंधी ना जाने पिर नाले, गुर प्रसादी साचा पिर मिले, अंतर सदा समाले, पिर अंतर समाले सदा है नाले, मनमुख जाता दूरे। एहो तन रुले रुलाया, काम ना आया, जिन खसम ना जाता हदूरे, नानक सातन मिले मिलाई, पिर अंतर सदा समाले, एक रोवे पिरे विशुनिया, अंधी ना जाने पिर है नाले। वडहंस महला तीजा। रोवे पिरे विशुनिया, मैं पिर सचड़ा है सदा नाले, जिन्नी चलन सही जानिया, सतगुर सेवै नाम समाले, सदा नाम समाले, सतगुर है नाले, सतगुर सेव सुख पाया, सबदे काल मार साची वरतार, फिर आवन जान ना होया। सच्चा साहेब सच्ची नाई, वेखै नजर निहाले, रोवै पिरो विशुनिया, मैं पिर सचड़ा है सदा नाले, प्रभ मेरा साहेब शब्द ऊंचा है, के मिला प्रीतम प्यारे, सतगुर मिली ता सहज मिली, पिर राखिया उरतारे, सदा उरतारे नेहो नाल प्यारे, सतगुर ते पिर दिसै। माया मोह का कच्चा चोला, तिद पैदै पग खिसै, पिर रंग नहीं पिर रंग राता, सो सच्चा चोला, तित पैदै तिखा निवारे, पर मेरा साहेब शब्द ऊंचा है, क्यों मिला प्रीतम प्यारे। मैं प्रभ सच पछाणिया, होर भूली अवगणियारे, मैं सदा रावे पिर अपना, सचड़ै शब्द

अपने गुर कहो तन मन दीजै ता मन भीजै तृष्णा दुख निवारे मैं फिर सच पछाणिया होर भूली अवगण यारे सचड़ा आप जगत्यो पाया गुर बिन कोर अंधारो आप मिलाए आप मिलाए आपे दे प्यारो आपे दे प्यारो।

ससरै चित्र जवाई, बाल कन्या कहो बा प्यारा, भाई कहो अत भाई। हुक्म भया बाहर घर छोड़िया, खिर मैं पई पराई। नाम दान इशनान ना मनमुख, तित तन तूड़ तुम्हाई। मन मानिया नाम सिखाई, पाए परो गुर कै बलिहार, जिन साची बूझ बुझाई रहाओ। जग स्यों झूठ प्रीत मन बेदया, जन स्यों वाद रिचाई। माया मगन अहनस मग जो है, नाम ना लेवै मरै बिख खाई। गंदन वैन रता हितकारी, शब्द सुरत ना आई। रंग ना राता रस नहीं बेदया, मनमुख पत गवाई। साध सवा मैं सहज ना चाखिया, जेबा रस नहीं राई। मन तन तन अपना कर जानिया, दर की खबर ना पाई। अखी मीट चलिया अंधियारा, घर दर दिसै ना पाई। जमदर बाधा ठौर ना पावै, अपना किया कमाई। नजर करे ता अखी वेखा, कहना कथन न जाई। कन्नी सुन सुन शब्द सलाही, अमृत हृदय वसाई। निरपौ निरंकार निरवैर, पूर्ण जो समाई। नानक गुरविन परम ना भागै, सच नाम वडियाई। सोरठ महला पहला, दो तुके पुड़ धरती पुड़ पानी आसन। चार कुंड चौबारा, सगल पवन की मूर्त एका। मुख तेरे टकसाला, मेरे साहेबा तेरे चोज विडाणा। जल थल महियल पर पुर लीना, आपे सर्ब समाणा रहाओ। जह जह देखा तै जो तुम्हारी, तेरा रूप कनेहा। एक त्रूप फिर प्रसन्ना, कोई न किसी जेहा। अंडज जेरज उत्पुज सेतज, तेरे कीते जनता। एक पुरु मैं तेरा देखिया, तू सबना माहे रवंता। तेरे गुण बहुते मैं एक न जानिया, मैं मूर्ख किश दीजै। प्रणवत नानक सुन मेरे साहिबा, डुबदा पत्थर लीजै। सोरठ महला पहला, हाँ पापी पतत परम पाखंडी। तू निर्मल निरंकारी, अमृत चाख परम रसराते। ठाकर शरण तुम्हारी, करता तू मैं मान निमाने। मान महत नाम तन पल्ले, साचे शब्द समाने रहाओ। तू पूरा हम ऊरे ओछे, तू गौरा हम हौरे। तुझ ही मन राते अहनस प्रभाते, हर रसना जाप मन रे। तुम साचे हम तुम ही रचे, शब्द भेद फुन साचे। अहनस नाम रते से सूचे, मर जन्मे से काचे। अवर ना दिसे किसा लाही, तिसे शरीक ना कोई। प्रणवत नानक दासन दासा, गुरमत जानिया सोई। सोरठ महला पहला, अलाखिया पारिया गाम्या गोचर। ना तिस काल ना करमा, जातया जाता जोनी संपो। ना तिस पाओ ना परमा, साचे सचियार विटों कुर्बान। ना तिस रूप वर्ण नहीं रेखिया, साचा शब्द निशान रहाओ। ना तिस मात पिता सुध बंधप, ना तिस कामना नारी। अकुल निरंजन अपर अपंप्र, सगली जो तुम्हारी। घट घट अंतर ब्रह्म लुकाया, घट घट ज्योत सबाई। बजर कपाट मुक्ते गुरमती, निरपै ताड़ी लाई। जंतो पाए काल सिर जनता, वसगत जुगत सबाई। सतगुर से पदार्थ पावै, छूटे शब्द कमाई। सोचे पांडे ऐसा समावै, विरला सूचे चारी। तंतै कौ परम तंत मिलाया, नानक शरण तुम्हारी। सोरठ महला पहला, ज्यो मीना बिन पानी है, त्यों सागत मरै प्यास। त्यों हर बिन मरिया रे मना, जो बिरथा जावै सास। मन रे राम नाम जस ले, बिन गुर एहो रस क्यों लहो। गुर मिले हर दे रहाओ, संत जना मिल संगति। गुरमुख तीर्थ होए, आठ सठ तीर्थ मजना, गुरदर्श प्राप्त होए।
ज्यों जोगी जत बाहरा तप नाही सत संतोख त्यों नामै बिन देहुरी जम मारै अंतर दोख सागत प्रेम न पाईऐ हर पाईऐ सतगुर पाए सुख दुख दाता गुर मिलै कहो नानक सिफत समाए सोरठ महला पहला तू प्रभ दाता दान मत पूरा हम थारे पेखारी जियो मैं क्या मांगा किश थिर न रहाई हर दीजै नाम प्यारी जियो घट घट रवर या बनवारी जल थल महियल गुप्तो वरतै गुरसबदी देख निहारी जियो रहाओ मर्त पयाल आकाश दिखायो गुर सतगुर कृपा धारी जियो सो ब्रह्मा जोनी है पी होनी घट पीतर देख मुरारी जियो जन्म मरण को एहो जग बपड़ो इन दूजे भगत विसारी जियो सतगुर मिलै ता गुरमत पाई है सागत बाजी हारी जियो सतगुर बंधन तोड़ निरारे बहुड़ ना गर्भ मजारी जियो नानक ज्ञान रतन प्रगासिया हर मन वसिया निरंकारी जियो सोरठ महला पहला जिस जल निद कारण तुम जग आए सो अमृत गुर पाही जियो छोडो वेस पेख चतराई दुबदा एहो फल नाही जियो मन रे थिर रहो मत कत जाही जियो बाहर ढूंढत बहुत दुख पावै कारे अमृत कट माही जियो रहाओ अवगुण छोड़ गुणा को धावो कर अवगुण पछताही जियो सर अफसर की सार न जाने फिर की चबुड़ाही जियो अंतर मैल लोभ बहु झूठे बाहर नामो काही जियो निर्मल नाम जपो सद गुरमुख अंतर की गत ताही जियो पर हर लोभ निंदा कूड त्यागो सच गुर बचनी फल पाही जियो ज्यों पावै त्यों राखो हर जियो जन नानक शब्द सलाही जियो सोरठ महला पहला पंच पदे अपना घर मुस्त राख ना सके की पर कर जोहन लागा घर दर राखै जे रस चाखै जो गुरमुख सेवक लागा मन रे समझ कवन मत लागा नाम विसार अनरस लोभाने फिर पछता है अभागा रहाओ आवत कहो हरख जात कहो रोवै एहो दुख सुख नाले लागा आपे दुख सुख भोग भोगावै गुरमुख सो अनुरागा हर रस उपर अवर क्या कहीऐ जिन पिया सो तृप्तागा माया मोहत जिन एहो रस खोया जा साकत दुरमत लागा मन का जियो पवन पत देही देही मैं देव समागा जे तू देहे ता हर रस गाई मन तृप्तै हर लिव लागा साध संगत मैं हर रस पाईऐ गुर मिलै जम पौ भागा नानक राम नाम जप गुरमुख हर पाए मस्तक भागा सोरठ महला पहला सर्ब जियां सर लेख तो राहू बिन लेखै नहीं कोई जियो आप अलेख कुदरत कर देखै हुक्म चलाए सोई जियो मन रे राम जपो सुख होई अहनिस गुर कै बचन सरेवो हर दाता भुगता सोई रहाओ जो अंतर सो बाहर देखो अवरना दूजा कोई जियो गुरमुख एक दृष्ट कर देखो घट घट जोत समोई जियो चल तो ठाक रखो कर अपने गुर मिलिया अहमत होई जियो देख दृष्ट रहो बिस्मादी दुख बिसर सुख होई जियो पीवो अपियो परम सुख पाईए निज कर वासा होई जियो जन्म मरण

नानक नाम रताय करंगी शब्द सवारण हारा सोरठ महला तीजा। हर जियो तुदनो सदा सलाही प्यारे जिचर घट अंतर है सासा एक पालो खिन विसरै तू स्वामी जानो बरस पचासा। हम मूड मुगद सदा से भाई गुर कै शब्द परगासा। हर जियो तुम्हें आपे देहो बुझाई हर जियो तुद विटों वारिया सद ही तेरे नाम विटों बल जाई रहाओ। हम शब्द मोए शब्द मार जी वाले पाई शब्दे ही मुक्त पाई शब्दे मन तन निर्मल होवा। हर वसिया मन आई शब्द गुरदाता जित मन राता हर स्यो रहया समाई शब्द ना जाने से अन्ने बोले से किते आए संसारा। हर रस ना पाया बिरथा जन्म गवाया जम्मै वारो वारा बिष्टा के कीड़े बिष्टा माहे समाने मनमुख मुग्ध गुबारा। आपे कर वेखै मार्ग लाए भाई तिस बिन अवर ना कोई जो तुर लिखिया सो कोई न मिटै भाई करता करे सो होई। नानक नाम वसिया मने अंतर भाई अवर ना दूजा कोई सोरठ महला तीजा। गुरमुख भगत करे प्रभु पावै अंदर नाम वखाणे भगतां की सार करे आप राखै जो तेरे मन भाणे। तू गुणदाता शब्द पछाता गुण कै गुणी समाणे मन मेरे हर जियो सदा समाल अंत काल तेरा बेली होवै सदा निभै तेरे नाल रहाओ। दुष्ट चौकड़ी सदा कूड़ कमावै ना बूझै विचारे निंदा दुष्टी ते किन फल पाया हर नाक्स नखै बिदारे। प्रहलाद जन सद हर गुण गावै हर जियो ले उबारे आप सकाओ बहु भला कर जाणै मन मुख मत ना काई साधु जन की निंदा व्यापे जासन जन्म गवाई। राम नाम कदे चेतै नाही अंत गए पछताई सफल जन्म भगता का कीता गुर सेवा आप लाए। सबदे राते सहजे माते अंदन हर गुण गाए नानक दास कह बेनंती हौ लागा तिन कह पाए। सोरठ महला तीजा सो सिख सखा बंद पह पाई जे गुर के पाणी विच आवै अपने पाणे जो चलै पाई विछड़ चोटां खावै। बिन सतगुर सो कदे ना पावै पाई फिर पछोतावै हर के दास सुहेले पाई जन्म जन्म के किल बिख दुख काटे आपे मेल मिलाई रहाओ। एहो कुटुंब सब जी के बंधन पाई परम पुला संसारा बिन गुर बंधन टूटै नाही गुरमुख मुख द्वारा। कर्म करै गुर शब्द ना पछाणै मर जन्मै वारो वारा। हौ मेरा जग पलच रहया पाई कोई न किसी केरा गुरमुख महल पायन गुण गावन निज कर होए बसेरा। ऐथै बूझै सो आप पछाणै हर प्रभ है तिसकेरा। सतगुर सदा दयाल है पाई विण पागा क्या पाई है एक नदर कर वेखै सब उपर जेहा पाओ तेहा फल पाई है। नानक नाम वसै मने अंतर विचों आप गवाई है सोरठ महला तीजा चौथके। सच्ची भगत सतगुर ते होवै सच्ची हिरदय बाणी सतगुर सेवे सदा सुख पाए हम मैं शब्द समाणी। बिन गुर साचे भगत ना होवी होर भूली फिरै आणी मनमुख फिरै सदा दुख पावै डूब मोए विण पाणी। पाई रे सदा रहो सरनाई अपनी नजर करे पत राखै हर नामो दे वडियाई रहाओ। पूरे गुर ते आप पछाता
ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੈ ਵਿਚਾਰਾ, ਹਿਰਦੈ ਜਗ ਜੀਵਨ ਸਦ ਵਸਿਆ, ਤਜ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਹੰਕਾਰਾ। ਸਦਾ ਹਜੂਰ ਰਵਿਆ ਸਭ ਠਾਈ, ਹਿਰਦੈ ਨਾਮ ਅਪਾਰਾ। ਜੋ ਜੁਗ ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣੀ, ਨਾਉ ਮੀਠਾ ਮਨੈ ਪਿਆਰਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਜਿਨ ਨਾਮ ਪਛਾਤਾ, ਸਫਲ ਜਨਮ ਜਗ ਆਇਆ। ਹਰ ਰਸ ਚਾਖ ਸਦਾ ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤਿਆ, ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਗੁਣੀ ਗਾਇਆ। ਕਮਲ ਪ੍ਰਗਾਸ ਸਦਾ ਰੰਗ ਰਾਤਾ, ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਵਜਾਇਆ। ਤਨ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਮਲ ਬਾਣੀ, ਸੱਚੇ ਸੱਚ ਸਮਾਇਆ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਕੀ ਗਤ ਕੋਈ ਨਾ ਬੂਝੈ, ਗੁਰਮਤਿ ਹਿਰਦੈ ਸਮਾਈ। ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੈ ਸੋ ਮਗ ਪਛਾਣੈ, ਹਰ ਰਸ ਰਸਨ ਰਸਾਈ। ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਸਭ ਗੁਰ ਤੇ ਹੋਵੈ, ਹਿਰਦੈ ਨਾਮ ਵਸਾਈ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸਮਾਲੈ, ਸੇ ਜਨ ਸੋਹਨ ਦਰ ਸਾਚੈ ਪਤ ਪਾਈ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਦੋ ਤੁਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਉਲਟੀ ਪਈ ਭਾਈ, ਜੀਵਤ ਮਰੈ ਤਾਂ ਬੂਝ ਪਾਏ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸੋ

बिन गुर प्रीत ना उपजै पाई, मनमुख दूजै पाए। तोह कुटै मनमुख कर्म करै पाई, पल्लै किछु ना पाए। गुर मिलै ना मन रव्या पाई, साची प्रीत प्यार। सदा हर के गुण रवै पाई, गुर कहे ते अपार। आया सो प्रमाण है पाई, जे गुर सेवा चित लाए। नानक नाम हर पाई पाई, गुर सबदी मेलाए। सोरठ महला तीजा कर पहला, तिही गुणी त्रिपवन व्यापिया पाई। गुरमुख बूझ बुझाए, राम नाम लग छुटिया पाई। पूछो ज्ञानियां जाए, मन रे त्रै गुण छोड़ चौथे चित लाए। हर जियो तेरे मन वसै पाई, सदा हर के गुण गाए रहाओ। नामै ते सब उपजै पाई, नाए विसरिया मर जाए। अज्ञानी जगत अंध है पाई, सूते गए मुहाए। गुरमुख जागे से उबरे पाई, पवजल पार उतार। जग में लाहा हर नाम है पाई, हृदय रखिया उरतार। गुर सरनाई उबरे पाई, राम नाम लिव लाए। नानक नाव बेड़ा नाव तुलहड़ा पाई, जित लग पार जन पाए। सोरठ महला तीजा कर पहला, सतगुर सुख सागर जग अंतर। होर थै सुख नाही, हौ मैं जगत दुख रोग व्यापिया। मरजन मैं रोवै ताही, प्राणी सतगुर सेव सुख पाए। सतगुर सेवै ता सुख पावै, नाहे ता जाहेगा जन्म गवाए रहाओ। त्रै गुण तात बहु कर्म कमावै, हर रा साधना आया। संध्या तर्पण करै गायत्री, बिन बूझे दुख पाया। सतगुर सेवे सोवट भागी, जिसनो वाह मिलाए। हर रस पी जन सदा तृप्ता से, विचों आप गवाए। एहो जग अंधा सब अंध कमावै, बिन गुर मग न पाए। नानक सतगुर मिलै ता अखी वेखै, करै अंदर सच पाए। सोरठ महला तीजा बिन सतगुर सेवे।

हर नाम देवहो आधारे रहाओ। मनसा मार दुबदा सै सुमानी पाया नाम अपारा। हर रस चाख मन निर्मल होवा के बिख कटनु हारा। शब्द मराओ फिर जीवो सद ही ता फिर मरण ना होई। अमृत नाम सदा मन मीठा शब्दे पावै कोई। दात है दात रखी हथ अपने जिस पावै तिस देई। नानक ना वरते सुख पाया दरगह जा पैसे ही। सोरठ महला तीजा सतगुर सेवे ता सहज तुन उपजे। गात्मा तो तद ही पाए हर का नाम सच्चा मन वसिया नामे नाम समाए। बिन सतगुर सब जग बौराना मन मुखियन दा शब्द ना जाने। झूठे परम भुलाना रहाओ त्रै गुण माया परम भुलाया। हौमै बंधन कमाए जमन मरन सिर उपर उबो।

बीच बिखाई, माधवे ऐसी देह बुझाई, सेवो साध गहो उठ चरना, न बिसरै मुहत छसाई रहाओ। अरे मन मुगद्या चेत चंचल चित, तुम ऐसी हृदय ना आई, प्राण पत त्याग अंतु रचिया, उर्ज्यो संग बैराई। सोग ना व्यापै आप ना थापै, साध संगत बुध पाई, सागत का बकना इउ जानौ, जैसे पवन चुलाई। कोट परादा शादे ओहे मनो, कहना कछु ना जाई, जन नानक दीन सरण आयो प्रभ, सब लेखा रखो उठाई। सोरठ महला पंजवा, पुत्र कलतर लोक ग्रह बनता, माया संबंधे ही अंत की बार को खरा ना होसी, सब मिथ्या असनेही, रे नर काहे पपोरो देही। उड़ जाए गो तुम बादरो, एक पाजो राम स्नेही रहाओ, तीन संगियां कर देही कीनी, जल कूकर पस मेही, होए आमरो ग्रे मैं बैठा, करण कारण बिसरोही। अनक पांत कर मणिये साजे, काचे ताग परोही, टूट जाए गो सूत पापरे, फिर पाछे पछतोही। जिन तुम सिरजे सिरज सवारे, तिस ध्यावो दिन रह नेही, जन नानक प्रभ कृपा धारी, मैं सतगुर ओट गहे ही। सोरठ महला पंजवा, गुर पूरा पेटियो वट भागी, मने भया परगासा, कोई ना पहुंचन हारा दूजा, अपने साहिब का परवासा, अपने सतगुर कै बलिहार, आगे सुख पाछे सुख सहजा, कर आनंद हमारे रहाओ। अंतर जामी करण हारा, सोई खसम हमारा, निरपो पै गुर चरणी लागे, एक राम नाम आधारा। सफल दर्शन अकाल मूर्त, प्रभ है पी हो बनहारा, कंठ लगाए अपने जन राखे, अपनी प्रीत प्यारा। वड्डी वड्याई अचरज शोभा, कारज आया रासे, नानक कौ गुर पूरा भेटियो, सगले दुख बिनासे। सोरठ महला पंजवा, सुखिए कौ पेखे सब सुखिया, रोगी कै भाण सब रोगी, करण करावन हार स्वामी, अपना हाथ संजोगी।

संत संग जाका मन शीतल ओह जाने सगली ठंडी। हाँ मैं रोग जाका मन व्यापत ओह जन्म मरै बिललाती। ज्ञान अंजन जाकी नेत्री पढ़िया ता कौ सर्व परगासा। अज्ञान अंधेरै सूझस नाही बहुड़ बहुड़ परमाता। सुन बेनंती स्वामी अपने नानक एहो सुख मांगै। जह कीर्तन तेरा साधु गावै तह मेरा मन लागै। सोरठ महला पंजवा। तन संतन का धन संतन का मन संतन का किया। संत प्रसाद हर नाम ते आया सर्ब कुशल तब थिया। संतन बिनो अवर ना दाता बिया। जो जो शरण परे साधु की सो पार गरामी किया रहाओ। कोट प्राद मिटे जन सेवा हर कीर्तन रस गाई है। इहा सुखिया गै मुख उजल जन का संगवट भागी पाई है। रसना एक अनेक गुण पूर्ण जन की केतक उपमा कही है। अगमा गोचर सद अविनाशी शरण संतन की लही है। निर्गुण नीच अनाथ अपराधी।

जरा मरा ताप सब नाठा गुण गोबिंद नित गावो सुनी अरदास स्वामी मेरा सर्व कला बन आई प्रगट पई सगले जुग अंतर गुरु नानक की वडियाई। सोरठ महला पंजवा घर दूजा चौपदे एको अंकार सतगुर प्रसाद एक पिता एक सके हम बारक तू मेरा गुरहाई सुन मीता जियो हमारा बल बल जासी हर दर्शन देहो दिखाई सुन मीता तूरी कौ बल जाई एह मन तेरा पाई रहाओ पाव मिलोवा मल मल तोवा एह मन तैकू देसा सुन मीता हाँ तेरी सरनाई आया प्रभ मिलो देहो उपदेसा मान ना कीजै शरण परिजै करै सो पला मनाइय सुन मीता जियो पिंड सब तन अर्पीजै इउं दर्शन हर जियो पाइय भयो अनुग्रहो प्रसाद संतन कै हर नामा है मीठा जन नानक कौ गुर कृपा धारी सब अकुल निरंजन डीठा सोरठ महला पंजवां कोट ब्रह्मांड को ठाकर स्वामी सर्व जिया का दाता रे प्रतपाले नित सार संभाले एक गुण नहीं मूर्ख जाता रे हरे आराधना।

एक बूंद गुर अमृत दीनो ता अटल अमर नाम हुआ, भगत भंडार गुरु नानक कौ सौपे फिर लेखा मूल नान लया। सोरठ महला पंजवा, चरण कमल स्यों जाका मन लीना, से जन तृप्त अगाई गुणिया मोल जिस हृदय ना वसया, ते नर तृष्ण त्रखाई। हरिया राधे अरोग अनदाई, जिसनो विसरै मेरा राम स्नेही, तिस लाख बेदन जन आई रहाओ। जिह जन ओट गही प्रभ तेरी, से सुखिए प्रभ सरने, जिह नर बिसरिया पुरख विधाता, ते दुखिया मैं गरने। जिह गुरमान प्रभु लिव लाई, ते महा आनंद रस करया, जिह प्रभु बिसार गुर ते बेमुखाई, ते नरक कोर मैं परया। जित को लाया तित ही लागा, तैसो ही वरतारा, नानक सह पकरी संतन की, हृदय पय मगन चरनारा। सोरठ महला।

हर जन को ही सुहावे पेख निकट कर सेवा सतगुरु हर कीर्तन ही तृप्तावै रहाओ अमलन स्यो अमली लपटायो पूमन पूम प्यारी खीर संग बार कह लीना प्रभ संत ऐसे हितकारी विद्या मैं विद्यंसी रचिया नैन देख सुख पावे जैसे रसना साध लुभानी त्यों हर जन हर गुण गावे जैसी पूख तैसी का पूरक सगल कटा का स्वामी नानक प्यास लगी दर्शन की प्रभ मिलिया अंतर जामी सोरठ महला पंजवां हम मैले तुम यूजल करते हम निर्गुण तू दाता हम मूर्ख तुम चतर सियाने तू सर्व कला का ज्ञाता माधो हम ऐसे तू ऐसा हम पापी तुम पाप खंडन नीको ठाकर दे सारा हो तुम सब साजे साज निवाजे जियो पिंड दे प्राणा निर्गुणी आरे गुण नहीं कोई तुम दान दे हो मेरवाना तुम करो भला हम पलो ना जाने तुम सदा सदा दयाला तुम सुखदाई पुरख विदाते तुम रखो अपने बाला तुम निधान अटल सुल्तान जी जंत सब जाचे कहो नानक हम एह हवाला राख संतन कै पाछे सोरठ महला पंजवां कर दूजा मात गर्भ मैं अपन सिमरन दे तह तुम रखन हारे पावक सागर।

कीते कहो मेरा सम्मान करनहार तरन जाने तू दाता मांगन कहो सगली दान दे प्रभ पान है खिन मैं अवर खिन मैं अवरा अचरज चलत तुम्हारे रूढ़ो गूढ़ो गहर गंभीर ऊंचो अगमे अपारे साध संग जो तुम्हें मिलायो तो सुनी तुम्हारी बाणी आनंद भया पेखत ही नानक प्रताप पुरख निर्वाणी सोरठ महला पंजवां हम संतन की रेन प्यारे हम संतन की सर...